आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे। ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं, क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स It just takes over.
1: And what happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: The whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of people.
1: Then the past becomes my present. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past न रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इन टू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माई प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट। ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहां हम ढूंढते, वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे, तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हियर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहां से हिलकर यहां पहुंच गई, और यहां आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना, सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01 past 10, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था।
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03, एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: ऐसी, अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया
1: है. इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. It is automatically going to get disturbed. लेकिन this requires deep awareness कि हम कैसे उस पल में रहें. And उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका sign है stability. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम backwards जा रहे हैं, क्योंकि हम aware नहीं हैं कि क्या thoughts create हो रहे हैं, तो let's go backwards. जैसे ही मन disturb हो,
0: look at
1: check हो जाए. किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी past की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना. पास्ट को याद
0: से हम सीखते
1: हैं. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वी विल टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family, so it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से, या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: एक्चुअली वो हमेशा ही हमारा प्रेजेंट बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: एब्सोल्युटली. बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही आई एम टॉकिंग टू यू, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट समथिंग विच हैज हैपेंड विद मी, फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. दिस इज माई बिलीफ सिस्टम. दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूं कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है. अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम. यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू. यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी कहीं
1: बहुत वो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से Why are we so depleted? अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया. अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ. व्हाट एम आई डूइंग? द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. फ्यूटाइल. अब कई बार हम कहते, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. इफ आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? दैट ऑल्सो वी नीड. सीखने को जरूर मिलता, बट प्रोवाइडेड हमने उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया है. अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो, अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं. यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग मायसेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I under, you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है. एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या, कि मैं हर्ट नहीं हूं. वो ठीक से अगली बार बात करे, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूं, ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है कि कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करते, इनसे तो दूर है, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी। तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट। नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट, सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ। आने वाली हैं बहुत सारी बातें आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स। अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का। आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड। सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवन्ट लर्नड एनीथिंग। वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई। अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स। अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं। इन अदर वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती। तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता। तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी, एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा। यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट, तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका। जैसे आपने शुरू में ही कहा, पास्ट की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो रिपीट हो गया ना, तो पास्ट हैज रिपीटेड इटसेल्फ। अगर सपोज मैं हर्ट हुई थी तभी या डिजेक्टेड फील किया, अब मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ, आई अगेन एक्सपीरियंस हर्ट, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न वो और भी ज्यादा कड़क, और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया। तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माय थॉट्स, सो विल बी माय डेस्टिनी। तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूंगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूंगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूंगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, वो एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई विल से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजे।
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब।
1: आई री अफर्म माय बिलीफ सिस्टर।
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते। हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं, ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी। अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन।
1: नहीं,
0: हम तो
1: but you know it, ना? आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ

0: करती हूँ, इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
1: तो
0: वो
1: मेरा
0: थॉट
1: कलर
0: वाइट
1: भी तो
0: वाला
1: उसमें ऐड होता जाएगा,
0: ऐड
1: मेरा
0: होता
1: अपना
0: जाएगा.
1: इमेजिनेशन.
0: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट एक्चुअली हैपेंड,
1: ओरिजिनल.
0: इट्स
1: यस
0: डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. सो इफ वी लुक एट इट दिस वे, तो फिर पास्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो बीता, जब उसको दूसरी बार वर्णन किया, वो एग्जैक्ट नहीं होता है. तो एक्चुअली दिस इज अ न्यू प्रेजेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट.
1: एक्चुअली
0: तो लेट्स बी इन
1: आई
0: द
1: मेड
0: प्रेजेंट.
1: इट प्रेजेंट, यू नो, सो व्हाई शुड वी मेक आवर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द पास्ट. यू नो वी कैन एक्चुअली, हाँ, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
0: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे, तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे
1: हर्ट
0: तो
1: उतना
0: वो
1: होगा.
0: हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते हैं फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सोल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते,
1: नहीं
0: वो
1: भूल
0: नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है, वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलू, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दू. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माई पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके, अपने हाथ में लेकर जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स
1: और
0: बैक.
1: एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
0: बट
1: होता
0: देन
1: है.
0: दैट मीन्स इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहां भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ, वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच, या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते, मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
1: अपने
0: हूँ,
1: आप को भी फॉरगिव नहीं
0: मैं
1: करूंगा.
0: जीवन भर दर्द में रहने वाला. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें. जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते, वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का, वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
1: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता. यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके, ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, डबल

0: 9994666 9873666555 हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अब एक दिन में ब्रह्मा कुमारी में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है। और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है। सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है।
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली। बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था। और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती। आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे। मेरे अंदर वो शक्ति है, आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड। दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तो मैं खुद ही क्रिएट करती। जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया। आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है। एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था, उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया। आई कैन लेट देम गो। ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट space of my mind. Let them go so that I can be free and powerful. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. जैसा कि हमने ये रियलाइज किया कि खुशी का जो थॉट है, खुशी की जो फीलिंग है, वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ। तो लेट गो करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे डिलीट करना है। अगेन ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है, तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है। एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें। आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। शांति जब शब्द बोलते हैं तो एक अच्छा सा एहसास होता है, फिर ऐसा क्यों है कि अभी भी हम शांति से दूर रहते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और जब हम शांति की बात करते हैं तो कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि शांति क्या है। पिछली बार जब हमने बात की थी तब ये एहसास हुआ था कि शांत तो हम जनरली रहते ही हैं, जब एजिटेटेड स्टेट में हो जाते हैं तब हम एंग्री होते हैं या गुस्से में होते हैं। शांति या पीस से जुड़ी हुई कुछ और बातों का खुलासा आज करते हैं अपने इस सफर में। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से हमने एंगर की जो इमोशन है उसके एंटीडोट के रूप में पीस के बारे में बात की थी पिछली बार, और ये एहसास हुआ था कि ये भी हमारे अपने ही अंदर है। यूजुअली हम पीसफुल होते हैं, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आती है तब हम पीस क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, इतनी जल्दी हम पीस लूज क्यों कर जाते हैं?
1: नॉर्मली हर एक अपने जीवन में शांति चाहता है, यू नो, जस्ट इवन लाइक वी डू सो मेनी प्रोग्राम्स, लोगों को इतने बड़े बड़े संगठन में लोगों से मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू आस्क वन कॉमन क्वेश्चन कि आपको जीवन में क्या चाहिए, एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी वन टूगेदर विल आंसर शांति। शांति चाहिए, मतलब इतना अभाव उसका फील कर रहे हैं, जैसे कि उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यू नो, वो है ही नहीं जीवन में। तो जैसे कोई पूछेगा क्या चाहिए, शांति चाहिए, एंड फिर आप नेक्स्ट से पूछो आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए, आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए, एवरीवन इज सेइंग शांति चाहिए, एंड प्रोबेबली वी डोंट नो कि हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली शांति कोई चाहिए वाली चीज है ही नहीं। क्योंकि चाहिए तो उसको बोलेंगे ना जो हमें कहीं से मिल सकता है। तो आई कैन लीड माय होल लाइफ सेइंग शांति चाहिए, शांति चाहिए, व्हाट इज इट, कहां से मिलेगी, फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कैसे मिलेगी वो। तो शांति है ही क्या चीज? शांति मेरे मन की स्थिति है जब मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। एक इनर स्टेबिलिटी है, और वो इनर स्टेबिलिटी तब आती है जब मैं सिचुएशंस और लोगों के ऊपर अपनी जजमेंट्स देना बंद कर देती हूँ बस, और वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। तो अब अगर मुझे ये समझ में आ जाए, और एक दिन उसको करके देख लीजिए, एक दिन क्या, एक घंटा करके देख लीजिए कि एक घंटा मैं कोई जजमेंट नहीं पास करूँ किसी पे भी, किसी सिचुएशन पे भी, जो हुआ ओके, जो हुआ ओके, जस्ट डू इट फॉर वन आवर, एंड उस एक घंटे के बाद देखिए आपको कैसा फील कर रहा। दैट इज शांति, वही पीस है, जब अंदर आवाज नहीं है, टर्मोइल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम ये क्रिटिसाइज करते हैं या जज करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, बाहर एक सेंटेंस होता है लेकिन अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, बिकॉज अंदर जो वॉइस एक चलती है वो तो बहुत कुछ बोल जाती है। बाहर से आई विल से वन सेंटेंस कि आपने ऐसा क्यों बोला, दैट्स वन सेंटेंस, लेकिन अंदर से तो मैं पूरा पेज सुना दूंगी आपको। तो इसलिए वो फिर फील होता है कि बहुत टर्मोइल है, बहुत डिस्टर्बेंस है। बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा होगा, उसको लगेगा ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन अंदर वो एक सेंटेंस बोलने के लिए अंदर, और फिर मेरे को बहुत देर लगती है उसके बाद वापस उसको स्टेबलाइज करने में। क्योंकि एक बार मैंने वो आपकी तरफ वो एरो फेंक दिया, फिर आपकी तरफ से भी
0: बहुत कुछ
1: आता है, तो फिर इसको स्टेबलाइज करने में लेट्स से डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन आधा घंटा एक घंटा लग सकता है, लेकिन उस आधे एक घंटे में मुझे चार लोग और मिल जाते हैं,
0: उन तक भी वही चीजें पहुंच रही हैं
1: नहीं, और फिर मैं उनको भी तो उनके ऊपर भी तो कमेंट करती हूँ ना, उनके ऊपर भी तो मेरे पास जजमेंट पास करने के लिए। तो वो सारा दिन करने से ये कॉन्स्टेंटली आवाज में है अब, कॉन्स्टेंटली, एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग कि मुझे शांति चाहिए, बिकॉज वो मोमेंट्स कि जब मैं बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहूं वो बहुत रेयर है। तो एक्चुअली अब चाहिए नहीं, एवरीवन वांट्स अ पीसफुल वर्ल्ड, आई वांट पीस इन द वर्ल्ड, बट इट्स मोर अबाउट पीस इन माय सेल्फ एंड इट्स इन माय हैंड्स।
0: दैट्स एक्चुअली वंडरफुल, यू नो, दैट एम्पावर्स अस एवरी टाइम व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, आई एम द वन हु कैन एक्चुअली व्हाटएवर आई वांट, आई एम कैपेबल ऑफ गेटिंग इट विद इन मी,
1: बट इफ आई डोंट वांट टू वर्क ऑन इट देन आई कैन नॉट गेट इट। अगर मुझे एक बीमारी है और डॉक्टर ने मुझे उस बीमारी को ठीक होने के लिए परहेज बताया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, परहेज परहेज नहीं मेरे से होता, तो फिर ठीक कैसे होंगे? सो हाउ कैन आई डू बोथ द थिंग्स, कि मुझे यू नो परहेज भी नहीं करना लेकिन मुझे ठीक भी होना। तो दिस इज वॉट वी आर डूइंग, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा भी करना, तो यू नो दोनों चीजें इकट्ठे नहीं रह सकती हैं, दिस आई विल अंडरस्टैंड. तो डीप डाउन सब कॉन्शियसली एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, लेकिन फिर चलते चलते वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम फिर निकल आता है, गुस्सा करना ठीक है, शांति में तो कमजोरी की निशानी है, गुस्सा करना ये शक्ति की निशानी है, ये पावर है. तो यू नो पावर, एवरीबडी वॉन्ट्स पावर, तो एंगर इज पावर फॉर पीपल एंड पीस इज वीकनेस. ये क्या है, इनको तो कुछ भी बोल सकते हैं. तो वो सब ओल्ड बिलीफ सिस्टम जब आते हैं तो हम खुद अपनी शांति को गवा देते हैं.
0: वेरी ट्रू एक्चुअली.
1: खुद, नोबडी एल्स, ना शांति बाहर से मिलेगी, ना मेरी शांति को कोई गवा सकता है. मी एंड ओनली मी रिस्पॉन्सिबल. इसलिए नाउ आई हैव अ चॉइस कि कितनी देर पीसफुल रहना, कितनी देर डिस्टर्ब्ड रहना. नोबडी एल्स कैन ओवर पावर मी, इट्स टोटली इन माई हैंड्स. सारा दिन में भी चलते हुए हम देखें तो बीच बीच में बहुत काम करते करते करते हम कहते हैं 2 मिनट बैठने दो आराम से. व्हाई? क्योंकि अगर हम आराम नहीं करेंगे बीच में, फिनिश्ड, इट विल ड्रेन आउट. सिमिलरली इसको भी आराम चाहिए, तो बीच बीच में हम बैठ जाते हैं, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, नो पीसफुली बैठ जाए. क्योंकि पीस की तरफ बार बार जाना ये हमारी स्वाभाविक नेचर है. जिस दिन पूरा दिन अगर आपका बहुत अंदर किसी टर्मोइल में गुजरेगा, सी हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द डे,
0: यू वेरी टायर्ड. और जहाँ एक पीसफुल गुजरे, तभी तो जब हम बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं जहाँ इन सब टेंशन से दूर होते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पीस हो रहा होता है ये
1: अंदर. भले बाहर हम बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मली सी इट्स अ कॉन्ट्रास्ट. हो सकता है सारा दिन में हम एक जगह ऑफिस पर बैठे लेकिन अंदर बहुत टर्मोइल है, लेकिन हम हॉलिडे पे जाते हैं, बाहर इतनी एक्टिविटी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर टर्मोइल से फ्री है, तो देन दैट्स लाइक रिलैक्सेशन.
0: इनफैक्ट उसमें ये भी जवाब उसका मिल जाता है कि जब हम कहते हैं कि अगर मैं पीस में हूँ तो मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है.
1: सी नोट एट ऑल,
0: यहाँ वो उसका जवाब भी मिलता है, उस पे भी.
1: जब मैं पीस में हूँ तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है. लुक एट द बिलीफ कि एक्चुअली जब हम पीसलेस हो जाते हैं तब हम कैसा फील करते हैं,
0: तब हम कंटिन्यूस
1: एब्सोल्युटली ड्रेन्ड आउट, जैसे कि हम एकदम हताश होकर बैठ जाते हैं, अब मेरे से नहीं होना. शरीर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर ताकत ही नहीं बची ना, वो इतना गुस्सा करके इतनी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है. वेयर इज इफ आई एम पीसफुल, आई हैव पावर. पीस इज पावर डायरेक्टली, इट्स डायरेक्टली पीस इज पावर, बिकॉज पावर इज नथिंग एल्स. जब मेरे अंदर शक्ति है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इससे बड़ी पावर, इफ आई कैन से टू द वर्ल्ड कम, जो कहना है वो कहो, जो करना है वो करो, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, इससे बड़ी पावर. There's no other
0: and I'll
1: power.
0: Not get disturbed internally.
1: Yeah, internally. You know, nothing like, outside. Haan. It's all about internally. So that's power. And that is amazing power. Agar mere andar wo power aa jati hai, I can achieve whatever I want.
0: I can win the world.
1: क्योंकि फिर वो यात्रा मेरी होगी ना अपनी. अभी क्या होगा, हम कहेंगे हम यहाँ से यहाँ पहुँचना तो चाहते हैं लेकिन रास्ते में इतनी सारी रुकावटें आती हैं. तो रुकावटें कौन है, ये सब लोग और परिस्थितियां. बट इफ आई कैन रीच दैट स्टेज वेयर आई से कि किसी का भी मेरे ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, विघ्न नहीं आएगा, देन आई कैन गो वेरी स्मूथली.
0: विघ्न वही है, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स वही है, जो सिचुएशंस और पीपल जिनको हमने माना हुआ है कि बिकॉज ऑफ देम हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही.
1: एब्सोल्युटली. और फिर हम उसको ऑब्स्टिकल बनाकर रहने देते हैं अपने जीवन में और अपनी प्रोग्रेस को रोक लेते हैं. क्योंकि सब कुछ पीसफुल है अगर देखा जाए, प्रकृति very peaceful. Look at just, you know, look out of the window and see the trees, the flower, the grass, everything so natural. और अपने तरह से सब चल रहा है, उगता है, grow होता है, finish होता है, खत्म हो जाता है. Same with the human life. अगर हम एक human being को भी देखें, इंसान को, अपने आप के साथ जब वो बैठा है, very peaceful. You know, भले ऐसे समय पे भी जहाँ इतने सारा तनाव और टेंशन है, लेकिन अगर आप किसी को अकेला बैठा हुआ देखो कभी, you will see that they are mostly at peace. But when they come in contact with people, जब वो इंटरेक्शन में आ जाते हैं, तब वो सही गलत सच झूठ राइट रॉन्ग ये सब के जब टर्मोइल में आ जाते हैं, तब वो डिस्टर्बेंस शुरू होना शुरू होता है.
0: स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में
1: कन्वर्ट हो जाती है.
0: यू नो समवेयर वो जो एक क्योस शुरू हो जाता है, और वो अगर पॉजिटिव रहे तो फिर हो सकता है, लेकिन जहाँ नेगेटिव होना शुरू होता है,
1: जब तक वो आंतरिक शांति नहीं है तो मेरे जीवन में खुशी और संतुष्टता ये हो ही नहीं सकती. ये सिर्फ वर्ड्स रहेंगे नहीं तो, क्योंकि मैं अंदर टर्मोइल में है और मैं कहूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हर आत्मा वो चाहती है और हर दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये भी एक एक रॉन्ग बिलीफ है कि शांति तो है ही नहीं मेरे जीवन में।
0: अच्छा, अनदर थिंग यू जस्ट सेड, एक बात और बहुत से लोगों की ये बात होती है कि आपने कहा कि संतुष्ट नहीं है लेकिन तो खुश नहीं हो सकते, बिकॉज डिससैटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस कांट को एग्जिस्ट। बट लॉट ऑफ पीपल ये बहुत लोग करते हैं जब उनसे बात की जाए, या कि खुश नहीं है, मतलब सैटिस्फाइड नहीं है अपने किसी चीज से, लेकिन इट्स ओके, आई एक्सेप्ट कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ। ये मैं जानना चाहती हूँ, जब लोग ये बोल रहे हैं,
1: व्हेन यू से आई एक्सेप्ट मींस आई एम सैटिस्फाइड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सी, सैटिस्फाइड डजंट मीन कि मुझे सब कुछ जो चाहिए था वो सारा कुछ मिल गया है, नहीं, लेकिन मुझे जो जितना जो कुछ मिला है आई एम हैप्पी विद दैट। सो वी, बिकॉज वी डोंट नो द मीनिंग really of what we are asking, we don't come to know when we experience it also, and because we don't know what to experience, we are looking for it outside, we are continuously looking and we don't even come to know.
0: जैसे कि आपने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम पीस में हैं, वो अनुभव ही हम भूल चुके हैं, मतलब उस एहसास को हम जान ही नहीं रहे हैं, तभी पता चलता है जब एजिटेशन शुरू होती है। और एक बात कि मेडिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस अनुभव को एक्टिवेट कर देती है, उस अनुभव का जो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, और स्पीड अप कर देती है, वो अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब मेडिटेशन में बैठते हैं, जब पीस की बात करते हैं, तो वो थॉट के साथ ही ताम झाम एक इतने सारे थॉट्स का आता है, इवन मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कई बार, तो वो फिर हम पीस का थॉट छोड़ के हम उन थॉट्स के साथ चलने लगते हैं।
1: एक्चुअली उसकी सिंपल एक, जब हम बैठे या मेडिटेशन करने बैठे या अपने आप को देखने के लिए भी बैठे, आई एम जस्ट टेकिंग अ थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई वॉन्ट टू टेक दिस थॉट, एंड अब इस थॉट को मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इस थॉट को एक्सपीरियंस करने का अर्थ क्या, कि ये थॉट रहे और बाकी सारे थॉट से मैं इस टाइम थोड़ी देर के लिए किनारा हो जाऊं। लेकिन जब मैं इस प्रोसेस को करना शुरू करती हूँ तो बहुत सारे और थॉट्स आ जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि मेरा फोकस क्लियर नहीं है कि मुझे किस चीज के लिए मैं बैठी हूँ, तो क्या होगा, जब वो सारे थॉट्स दूसरे वाले आएंगे, मैं उन्हीं थॉट्स के अंदर,
0: क्योंकि वो आसान लगते हैं ना, क्योंकि उनके बारे में मैं जानती हूँ।
1: हाँ, और मेरे को लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स से कि ऑफिस का कोई थॉट आ गया, तो मैं सेल्फ रियलाइजेशन को छोड़ के उस ऑफिस की बात के बारे में, हाँ तो क्या करना है, कैसे, आई गो ऑन टू दैट। अगर कोई और थॉट आ गया किसी संबंध के बारे में, देन आई मूव ऑन टू दैट, गेट ऑक्यूपाइड इन दैट। तो इसको हम बोलते हैं कि वी गेट एंगेज्ड विद दोस थॉट्स, उन्हीं में फिर मग्न हो जाते हैं, और मेडिटेशन या सेल्फ रियलाइजेशन वो तो दूर रह जाता, और फिर थोड़ी देर के बाद उठ के बोलते हैं हमसे नहीं होता, मैं बैठा तो था लेकिन दूसरे थॉट्स आते रहे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बैठे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं विशेष इस समय 10 मिनट्स, लेट्स से अगर मैंने निकाले, मैं इस चीज का अनुभव करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ये 10 मिनट अगर मैं पुरुषार्थ कर अनुभव करूंगी तो वो अनुभव फिर मेरे साथ सारा दिन चलेगा। वंस आई डू इट नाउ, आई विल बी एबल टू डू इट मेनी टाइम्स इन द डे, but if I'm not able to do it now when I'm sitting peacefully, I will not be able to do it when I'm in activity.
0: I lose heart, I'll not do it.
1: I will not be able to do it. तो इसलिए जब वो थोड़ा सा समय निकाल कर बैठे, तो हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसी को अनुभव अभी करना है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं स्टेशन पर, एंड आई रीच द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तो भरा है लोगों से, और हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक लोग ऐसे हों जिनको हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हम इस एंड पर खड़े हैं प्लेटफॉर्म के, और हो सकता है हमारा कंपार्टमेंट बिल्कुल दूसरे कोने पर है, ट्रेन छूटने वाली है। माय प्रायोरिटी इज वेरी क्लियर कि अभी विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई हैव टू रीच फ्रॉम हियर टू दैट एंड,
0: तो मुझे कुछ और नहीं दिखाई देगा।
1: एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि 5 मिनट के अंदर मुझे इस एंड से उस एंड पर पहुंचना है, चाहे रास्ते में प्लेटफॉर्म शुड गेट क्लियर ऑन इट्स ओन, सारे लोग हट जाए, मुझे चलकर जाना है, तो ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे उन्हीं के बीच में से गुजरना होगा, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ ना जाए, ये मेरा फोकस बहुत क्लियर है। अगर कोई कहे मुझे जाना तो था वहां 5 मिनट में, लेकिन क्या करूं, रास्ते में ये मिल गए तो 2 मिनट उनसे बात की, रास्ते में वो मिल गए तो I engaged with the people on the way. Obviously, I did not catch the train. Similarly, I sit here. This is my consciousness is like the platform. बहुत सारी थॉट्स हैं, वो जो सारी थॉट्स हैं उस प्लेटफॉर्म पे, दे आर लाइक ऑल द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड जब मैं शुरू करती हूँ एंड आई कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड आई सी इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी थॉट्स हैं, अब माई फोकस हैज टू बी वेरी क्लियर. मुझे 5 मिनट में उस एंड तक पहुंचना है, मतलब मुझे उस अनुभव पर पहुंचना है. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे नहीं रुकना है, नहीं देखना है उनकी तरफ. अगर मैं रुक जाती हूँ,
0: मैं स्ट्रेंज हो जाएगी.
1: जस्ट ट्राई इट आउट, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड देन यू विल सी बिकॉज वी अंडरस्टैंड वन थिंग, कि वो थॉट्स मेरी क्रिएशन है, वो थॉट्स मैं नहीं हूं कि मैं उसी के अंदर मग्न हो जाऊं. मैं सेपरेट, ये थॉट्स मेरी क्रिएशन. तो इन थॉट्स के बीच में से मुझे गुजर के जाना, इट्स पॉसिबल. लेकिन मैं ही रुक जाऊं, हाँ ऑफिस में ऐसा, अच्छा बच्चों का ऐसे करना, तो व्हाट हैपन, मैं रुक गई उन सब लोगों से बात करने के लिए जो मुझे रास्ते में मिले थे, 10-15 मिनट पूरे हो गए, ना ऐसे अब मुझको लेट हो रहा, अब तो मुझे जाना है. एंड देन 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर ऐसा होता रहा, एंड देन आई से मेरे से नहीं होता, एंड देन आई गिव अप. मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं अभी, और ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पहुंचना है उस स्थिति तक. थॉट्स आएंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी ऑब्वियस. इफ यू एक्सपेक्ट सारे थॉट्स चले जाए, नॉट पॉसिबल. थॉट्स आएंगे, लुक एट देम, लेट देम गो. अगेन इफ यू जस्ट लुक एट देम,
0: वॉचिंग, यू नो, द
1: मोमेंट दे विल डिसॉल्व. लेकिन इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, देन दे विल सिट. इट इज एनर्जी उनसे हटा लो या एनर्जी उनको देते जाओ. एंड फिर क्या होगा, थोड़े थोड़े थॉट्स ऐसे आएंगे, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उनको एक मैसेज मिल जाता है माइंड को कि इनका डेस्टिनेशन अभी बहुत क्लियर है. एंड वेरी सून विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ एक क्षणों की बात है सिर्फ, आप उस एक थॉट पर आकर टिक जाएंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अब शांति है क्या जब कोई भी टर्मोइल वाली थॉट्स नहीं है? सम पीपल से, हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या अनुभव करना है, व्हाट टू एक्सपीरियंस, यू नो, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपीरियंस एट दैट टाइम. व्हेन यू आर एबल टू फिनिश ऑफ ऑल योर अननेसेसरी वेस्ट नेगेटिव थॉट्स, दैट्स पीस. व्हेन यू आर एबल टू फिनिश ऑफ ऑल योर इनस्टेबिलिटी, दैट्स पीस. पीस इज नथिंग
0: दैट यू हैव टू, यू नो, लाइक इट्स कुछ आपके
1: कुछ भी नहीं है. एंड उसको आप अनुभव कर सकेंगे उस टाइम, क्योंकि जब सब हेवीनेस खत्म हो जाएगा, यू विल फील दैट लाइटनेस.
0: एंड इन फैक्ट द वे यू सेड कि व्हेनेवर वी आर अलोन यूजुअली वी डू एक्सपीरियंस पीस, वी आर एट पीस विद
1: एब्सोल्युटली. तो इसको अगर हम रोज सुबह कर सकते हैं, यू नो, 10 मिनट्स इसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर उस अवेयरनेस में आ जाते हैं और फिर उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जब मेरे मन में सिर्फ ये थॉट होती है और बाकी सारी थॉट्स खत्म हो जाती है, हाउ डज इट फील, इट फील्स वेरी पावरफुल. उस समय से लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नो टर्मोइल. फिर इस अनुभव को हम सारा दिन में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू रन फ्रॉम दिस एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म टू दैट एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म. लेकिन उसको सुबह ही करना पड़ेगा. अब क्या होगा, सारा दिन में लेट्स से बहुत कुछ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, डिस्टर्बेंस है, केओस है, एंड माई 1 मिनट ब्रेक कम्स, क्योंकि मेरा 1 मिनट इन 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1 मिनट में अब मुझे इस एंड से उस एंड पर पहुंचना, अगर मुझे ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो 1 मिनट तो सारी थॉट्स में बीत जाएंगे, जो उस 1 घंटे में हुआ था उसी में बीत जाएंगे. सो आई हैव टू गेट इन टू दिस प्रैक्टिस कि जो थॉट्स बीच में आएंगे उनके साथ उलझना नहीं है, उनके साथ बातें करने नहीं बैठ जाना, मूव अहेड. अब क्या होगा, ये भी हो सकता है कि एक बार आप अपनी ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में बैठ गए, आपको अपनी सीट मिल गई, यू रीच्ड देयर. तो आई रीच्ड दैट स्टेज कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अब स्टेशन पे और भी बहुत सारे थॉट्स थे, उन्होंने देखा कि ये कहाँ चले गए, तो वो भी सारे आ गए मेरे पास. एंड इट इज पॉसिबल कि दोस थॉट्स विल नाउ अगेन कम बैक टू मी इवन आई हैव After I have reached that stage, अब मुझे क्या करना है? Some people feel कि suppress कर दो, उसको ignore कर दो, वो नहीं होगा. अगर वो thought आती है अब फिर से, अभी I'm in a very powerful position.
0: You start taking.
1: Yes, absolutely. Let it come. तो लोग आते हैं और लोग चढ़ रहे हैं, आप उनको पीछे नहीं धकेलेंगे, आप उनको आने दो. लेकिन अब क्योंकि हम उस powerful position में हैं, I just give it energy. बिकॉज अब मैं इनग्रोस्ड नहीं हूँ, इंगेज्ड नहीं हूँ, अटैच्ड नहीं हूँ, आई एम डिटैच्ड. तो नाउ इज द टेस्ट कि क्या जो मेरी शांति की स्थिति थी वो राइट सच थी, असली वाली थी या नहीं थी. अगर वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा दैट पीसफुल स्टेज, तो जैसे ही वो थॉट्स आएंगे एंड आई विल जस्ट लुक एट देम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो लाइक अ स्टर्न लुक एट देम, एंड जैसे ही उस दृष्टिकोण से उस थॉट को देखेंगे वो थॉट खत्म हो जाएगी. और अगर मेरी एक्चुअल स्थिति वो नहीं थी, वो थॉट मुझे
0: हावी हो जाएगी,
1: मुझे खींचकर वापस स्टेशन पर ले जाएगी, मुझे अपने कंपार्टमेंट से उतार के वापस उस टर्मोइल में ले जाएगी जो सारा स्टेशन के ऊपर था. तो दोनों चीजें होंगी, कभी हो सकेगा कि हम अपनी स्थिति को मेंटेन कर सकेंगे और कभी होगा कि हम खींच कर वापस उतर जाएंगे. अगर उतर भी गए नो प्रॉब्लम, फिर से चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं. यू नो गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दृढ़ता के साथ. क्या होता है, दो दिन चार दिन छह दिन करके हम बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, तो वो प्रैक्टिस को करते रहेंगे. और दूसरी बात, कई बार होता कि जब हम वो शांति की स्थिति को अनुभव कर लेते हैं तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. यू नो इट्स लाइक ये एक स्थिति है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं. तो हमें लगता है अब ये बनी रहे, अब ये बहुत देर में इसी स्थिति में रहो. इट्स अ नेचुरल स्टेज, इट विल कम इट विल गो. उसको अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये थॉट आया कि मैं इसको पकड़ लूं, इसका मतलब उस टाइम मेरी शांति फिनिश हो गई क्योंकि मैंने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की. तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेट इट बी वेरी नेचुरल. और तीसरा, कई बार आ जाता है कि अच्छा अब तो मैंने ये अनुभव कर लिया,
0: नाउ आई हैव रीच्ड दैट,
1: तो वो भी मेरी स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज फिर वो ईगो की फीलिंग आ गई. तो वो ईगो जब आ जाए तो अगेन वो स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी. सो आई हैव टू मेंटेन द जर्नी बट बी वेरी केयरफुल. बट इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इसमें दोनों चीजों का इफेक्ट है. मॉर्निंग में अभ्यास करेंगे तो सारा दिन अच्छा बीतेगा, सारा दिन अटेंशन रखेंगे तो अगले दिन मॉर्निंग पर उसका असर पड़ेगा. एक होता है कि हमने मॉर्निंग में कर लिया लेकिन सारा दिन वापस वी गेव इट द परमिशन, कुछ भी आता गया कुछ भी आता गया. तो फिर क्या होगा, अगले दिन मॉर्निंग में जब बैठेंगे तो वो सारा दिन का जो टर्मोइल था वो फिर अगले दिन मॉर्निंग डिस्टर्ब करेगा और फिर उस स्थिति को बनाने में और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए मॉर्निंग डेफिनेटली करना और फिर सारा दिन में भी थोड़ा सा अटेंशन रखना कि कम कम कम हर एक के ऊपर इतना ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है जजमेंट है वो कम. यहाँ
0: अवेयरनेस, एक्चुअली अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम याद रखें, वो याद अगर अपने साथ मेंटेन रखें. सिस्टर शिवानी, बहुत सी और बातें भी जुड़ी हैं जब हम पीस की बात करते हैं कि एक कुछ मिथ्स हैं उससे जुड़ी हुई कि अगर पीस का मतलब है आई हैव लॉस्ट, पीस का मतलब है कि मुझ में ऊर्जा नहीं रही, मुझ में वो ऊर्जा नहीं है जो हमने पहले भी बात की थी कि कहीं कि मैं कर पाऊंगा, मतलब बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत लो है. अगर मैं पीसफुल रहूंगा तो पीपल विल कम एंड ट्रैम्पल ओवर मी, मेरे ऊपर मुझे कुचल दिया जाएगा. ऐसी कई सारी बातें और हैं लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है तो हम चाहेंगे कि आगे उस पर बात करें. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए कुछ एक बात ऐसे कहना चाहेंगे जो आज याद रखें.
1: आज याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा. आई एम अ पीसफुल सोल. दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन दैट आई कैन गिव टू माई सेल्फ. एंड जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे जब दूसरों से हम मिलेंगे तब वो भी याद आएगा कि वो कौन,
0: वो भी वही है.
1: हाँ. एंड जब हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन, वही पीस के वाइब्रेशन मुझसे निकल कर वायुमंडल में भी फैलेंगे और दूसरी आत्मा तक भी पहुंचेंगे. तो जो हम कहते हैं वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, तो पीस इन द वर्ल्ड विल बिगिन हियर. एवरी टाइम आई क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस, आई एम क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड. तो यू नो इट्स नॉट कि पॉलिटिशियंस या धर्म नेता या स्पिरिचुअलिस्ट वो लोग विश्व में शांति लाएंगे. विश्व में शांति लाने का कार्य हम सब आत्माएं कर रहे हैं और सारा दिन में हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हर क्षण जब हम एक शांति का विचार करेंगे तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू पीस इन द वर्ल्ड. एंड एवरी टाइम आई क्रिएट एन ऑपोजिट, आई एम क्रिएटिंग टू टर्मोइल, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू टर्मोइल इन द वर्ल्ड. सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि हम घर में बैठकर न्यूज देखकर ये बोलना तो बहुत ईजी है, ये लोग देखो दुनिया का क्या हाल कर रहे हैं, मैं दुनिया का क्या हाल कर रही हूँ. Because every time I create a negative thought, I am contributing to creating negativity in the world. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी.
0: वंडरफुल. दैट्स एक्चुअली दैट्स अ नोट जिसपे हम खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को. लेकिन आपसे बातचीत की, आगे भी सफर को जारी रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. निर्णय हमारे हाथ में है. अभी तक हम ये सोचते थे कि पूरी जिम्मेदारी या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर है. ना सिर्फ जिस पीस को हम तलाश रहे हैं अपने अंदर या विश्व में भी देखते हैं, तो वो थॉट क्रिएट करना मेरे अपने ही हाथ में है. और जहाँ मैंने ये समझा कि ये थॉट जो पीस का मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो दुनिया तक भी जा रहा है और वर्ल्ड पीस की जो बात होती है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हमें एम्पावर करता है. हम में वो ताकत है कि हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में. अगेन आपसे हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण देंगे. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में अभी शांति का जो ये सफर चल रहा है वो जारी रखेंगे. जानेंगे कि कई ऐसी बातें हैं जो गलत मान्यताएं हैं जो शांति से जुड़ी हुई हैं, वो सही परिपेक्ष में पीस या शांति को कैसे देखा जाए. अगली कड़ी में होगी मुलाकात. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, कभी आपने खाली समय में बैठ करके ऐसा सोचा कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, या ये दुनिया कैसे शुरू हुई, या पृथ्वी कैसे आई, सूरज कैसे चमकता है, या ऐसे कई सवाल हैं जो जीवन में हम चाहे तो बैठ करके सोचना शुरू करें तो दिन कब खत्म हो जाए पता भी ना चले। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इनमें से कई सवालों का जवाब विज्ञान हमें दे चुका है, और कई ऐसे सवाल है जिनके तह तक पहुंचने में विज्ञान को अभी भी काफी समय है। लेकिन विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सुखमय बनाया है। कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित किया है, उनके योगदान की वजह से आज हमारा जीवन इतना सुखद है। दोस्त, एक ऐसे ही वैज्ञानिक से आज हम बात करने जा रहे हैं। 107.8 रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी। प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर कर्नाटक के राज्य से आते हैं और एक बहुत ही जाने माने विख्यात वैज्ञानिक है भारत के, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला प्रोफेसर श्री रामकृष्ण हसूर जी के साथ। प्रोफेसर रामकृष्ण हसूर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी लाइफ से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू। या, इट्स माय प्लेजर।
3: तो रामकृष्ण जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे एक लंबी गहरी बातचीत का, लेकिन उस बातचीत से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए, कहां से आपकी जर्नी शुरू हुई, कौन कौन से पड़ाव माइलस्टोन्स आपने कवर किए, एंड हाउ वाज इट लाइक?
4: ओके। मैं कर्नाटका के धारवाड करके एक टाउन है, वहां पैदा हुआ था। सो मेरा सब स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन जो है धारवाड में ही हुआ था, अप टू SSC मेट्रिकुलेशन वहीं पे धारवाड में किया था मैंने। उसके बाद एक साल के लिए मैं मुंबई आया था फर्स्ट ईयर साइंस करने के लिए, क्योंकि उस समय वहां पे मैं थोड़ा सा अंडर एज था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मुंबई में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मेरे मामा थे यहाँ पर मुंबई में, उन्होंने कहा ठीक है, एक स्कॉलरशिप मिला था मुझे, नेशनल स्कॉलरशिप। अगर मैं एजुकेशन कंटिन्यू न करता तो स्कॉलरशिप निकल जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो तुम ठीक है।

0: तुम मुंबई आ जाओ, हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक साल के लिए मुंबई आया था, उसके बाद फिर वापस धारवाड में चला गया, क्योंकि उस समय उन्होंने एज रिसेक्शन निकाल दिया। तो मैं बीएससी धारवाड में किया, बीएससी कर्नाटक कॉलेज में, वहां पे केमिस्ट्री लेके बीएससी केमिस्ट्री किया। वहां पे मुझे यूनिवर्सिटी को रैंक मिला था, तो उससे उसको स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया एमएससी के लिए, एमएससी केमिस्ट्री में आ गया था। वहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो वहां पे हॉस्टल में रहते हुए मैंने एमएससी केमिस्ट्री वहां से खत्म कर दिया। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया। वहां का कोई इंटरव्यू वंटरव्यू सब जगह होते हैं, तो उसको क्लियर करके टीएफआर में मैंने पीएचडी के लिए ज्वाइन किया था। उस समय डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से आता था, रिसर्च कहीं भी करो, टीएफआर में भी करेंगे तो भी डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से ही आता। तो 1978 में मैंने मेरा डिग्री खत्म कर दिया, पीएचडी खत्म कर दिया। पीएचडी के बाद मुझे वहीं पे जॉब मिल गया था, टीएफआर में ही मुझे जॉब मिल गया। तो मैं वो जॉब लेके, उसके बाद दो साल के बाद मैं छुट्टी लेके लीव स्टडी लियो करके वहां एक प्रोविजन होता था, उसको लेके मैं स्विट्जरलैंड गया दो साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। वहां पे ETH ज्यूरिख, ज्यूरिख में प्रोफेसर कुर्ट वित्रिक और प्रोफेसर रिचर्ड अर्नस्ट, ये दो लोग थे, बड़े दिग्गज लोग थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उनके साथ मैं काम करना शुरू कर दिया। वहां पे दो साल में काम करके फिर वापस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आ गया था। तो उस समय दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। तो वहां पे मैंने जो सीखा है तो उसी को लेके मैं पूरा कंटिन्यू करते गया, पूरा मेरी जिंदगी भर उसको एक्सपांड करते करते आगे आके लेते गया। तो उस समय का वो रिसर्च जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, नए नए चीजें निकल आ रहे थे। तो आप सोचिए, वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया। रिचर्ड अर्नस्ट वो जो कर रहे थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर डिस्कवर किया, टू डायमेंशनल एनएमआर डिस्कवर किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का फाउंडेशन किया। तो उनको 1991 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर जो करते थे छोटे छोटे, उस समय तो प्रोटीन स्ट्रक्चर निकल करने के लिए सिर्फ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता था, दूसरा कोई टेक्निक नहीं था, सॉल्यूशन में करने के लिए कोई टेक्निक नहीं होता था। ये प्रोफेसर वित्रिक जो है उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालने के लिए एनएमआर यूज करके उसका मेथड निकाल दिया। तो उस समय उसमें मैंने काम किया था, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। 2002 में उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया था। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस दोनों के साथ मैंने काम किया वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया बाद में। फिर मैं आके टीएफआर में एनएमआर रिसर्च शुरू किया। उसी समय टीएफआर आल्सो अक्वायर्ड ए हाई फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, वो 500 MHz करके एक स्पेक्ट्रोमीटर उन्होंने खरीदा था। उस समय इंडिया में वही एक स्पेक्ट्रोमीटर था, बड़ा हाई फील्ड स्पेक्ट्रोमीटर का वही एक था, तो टीएफआर ने अक्वायर किया था। मैं आके मेरे ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसको लेके बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब चीजों के ऊपर स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन और उसके इंटरैक्शन करना शुरू कर दिया मैंने। तो काफी सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया था उस पर, और ये जो हमने इसको नेशनल फैसिलिटी कर दिया था, ये 500 MHz दुनिया में, तो दुनिया मतलब इंडिया में एक ही था, दुनिया में और भी थे, इंडिया में एक ही था, तो इसलिए उसको हमने नेशनल फैसिलिटी कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, तो इंडिया से कहीं भी लोग रिसर्च करते होंगे लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो यहाँ आके उसको एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। हम उनको मदद करते थे, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मदद करते थे, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी मदद करते थे। इसलिए ये एक बड़ा सर्विस हो गया नेशन के लिए, एक बड़ा सर्विस हो गया। तो हमने उसके बाद 500 MHz के बाद पहला स्पेक्ट्रोमीटर था, उसके बाद कुछ सालों के बाद हमने और भी एक खरीदा, वहां पर 600 MHz स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कन्विंस हो गया कि हम अच्छे सर्विस दे रहे हैं, इंडिया के रिसर्चर्स को अच्छे सर्विस दे रहे हैं। 600 MHz खरीदने के लिए भी उन्होंने पैसे दे दिया था। तो उस समय 600 MHz के लिए 10 करोड़ पैसा लगता था, 10 करोड़ रुपए। तो हमने उसको खरीदा, फिर भी उसी को नेशनल फैसिलिटी को बनाया था। तो ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो दुनिया में और भी बड़े बड़े स्पेक्ट्रोमीटर आने लगे। वो 600 MHz आ गया, उसके बाद 700 MHz आ गया, 800 MHz आ गया, तो हमने 2003 में ये उनको भी हमने अक्वायर किया ये फैसिलिटी में, बिकॉज नेशनल फैसिलिटी था ना उस समय 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए और एक सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए 22 करोड़ का खर्चा करना पड़ता था। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल आसानी से सपोर्ट कर दिया, जैसे रोके यू आर डूइंग सो वेल विथ रिगार्ड टू द नेशन नेशनल सर्विस, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली, दे कैनॉट बी एनीवेयर एल्स, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली। तो उन्होंने पैसे दे दिया, तीन तीन डिपार्टमेंट, डीएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री, तीनों आके मिलके हमें पैसे दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल। तो ये 22 करोड़ का उस समय, देखिए 2003 में ये सब स्पेक्ट्रोमीटर्स आ गए और उसका यूसेज बढ़ता रहा, हमने उसके ऊपर रिसर्च भी करते रहे, अलग अलग नए मेथड्स निकलते गए, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, इंटरैक्शन करते गए। तो ये बड़ा अजीब सा फैसिलिटी बन गया था इंडिया में। और उसके साथ जैसे जैसे इसका महत्व लोगों को समझ आने लगा और हमने भी इसके लिए बहुत कोशिश की कि हम इंडिया के अलग अलग जगह में जाके वर्कशॉप करते थे, एनएमआर वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो दुनिया के, इंडिया के हर कोने में, कभी नॉर्थ में जाओ, कभी साउथ में जाओ, कभी ईस्ट में जाओ, कभी वेस्ट में जाओ, सब जगह जाके हम वर्कशॉप करते थे। हर वर्कशॉप में तो 100-100 लोग, बच्चे आते थे, रिसर्चर्स भी आते थे, उनको सिखाना था ये एनएमआर का वैल्यू क्या है, इसका कितना महत्वपूर्ण रिसर्च कर सकते हैं उसके साथ, ये सब हमने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया था। और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ये अभी चलता रहा, अभी भी चलता था, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता रहता है हम उसको अपडेट करते रहते हैं लोगों को, तो वो फैसिलिटीज का भी बढ़ता जाना है। अभी देखिए नेशनल फैसिलिटी टीएफआर में जो है, अभी पिछले साल में उसके साथ जो लोग उसको यूज करने के लिए आते थे, हम उनको कहते थे देखो भाई इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पैसे देना पड़ेगा। क्यों पैसे देना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो हम उसको इस्तेमाल करना नहीं थे, क्योंकि और लोग भी हैं जिसके लिए उनको जरूरी है, तुम उसके सीरियस हो, कितना सीरियस हो वो हम देखना चाहते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम चार्ज नहीं करेंगे, अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दे सकते हो। और काफी इंडस्ट्रीज भी उसके यूज करने लगे। अभी तो पिछले साल में अभी ऐसा चल रहा है, वो तो हर साल में दे एक्चुअली अर्न एटलीस्ट समथिंग लाइक अबाउट 70-75 लाख। तो लोगों को, लोग इतने उसका यूज करने के लिए आ जाते हैं, उनका मदद मिल जाता है, एनालिसिस में मदद मिल जाता है, सो इसका पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया। तो हम बाहर से भी लोगों को बुलाते थे वर्कशॉप करने के लिए, वहां से भी लेक्चर्स अरेंज करते थे, तो इसलिए इनकम वैल्यू काफी बढ़ गया है। तो सो दैट वाज ए नेशनल सर्विस। तो हमने उसके बाद तो हम कभी बाहर बहुत देर के लिए कभी बाहर गए ही, इंडिया में और कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे, कॉन्फ्रेंस में अपना काम प्रेजेंट करते थे और वहां के लोगों को बुला के यहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते थे, वहां से लोगों को काम करवाते थे। तो इसलिए यहाँ का रेपुटेशन काफी बढ़ गया, नेशनल फैसिलिटी का रेपुटेशन काफी बढ़ गया। तो इसके वजह से हमने एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है एनएमआर के लिए, उसको हमने इंडिया को 2 बार लेके आए। क्यों लेके आए इंडिया में? क्योंकि हमारे बच्चे तो वहां नहीं जा सकते, उसको जाने के लिए पैसे बहुत चाहिए, वहां तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत होता है, ट्रेवल का पैसा बहुत होता है, वहां रहने के लिए काफी महंगा हो जाता है, तो वहां कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमने सोचा था तो वही कॉन्फ्रेंस को ही हम यहां ले आएंगे। तो इसलिए हम तीन बार लेके आए थे, 1980 पे एक बार ले आए थे, 1984 में ले आए थे, 2004 में ले आए थे, और एक बायोफिजिक्स कांग्रेस करके एक कॉन्फ्रेंस होता था, वो उसमें एनएमआर, सिर्फ एनएमआर ही नहीं, क्रिस्टलोग्राफी, बाकी सब बायोफिजिकल रिसर्च जो होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इंटरैक्शन, ये बायोफिजिक्स कांग्रेस का ये इससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस है, हमने उसको भी ले आया, उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था 1999 में। तो इस तरह हमारा मेहनत तो लोगों को सर्विस देने का, अपने रिसर्च को बढ़ाने का, ये हमेशा रहा। सो दैट वाज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दैट वन। एंड उसके साथ साथ हमने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम्स को भी बढ़ावा देना है। तो एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ावा देना है? तो अभी एजुकेशन सिस्टम तो कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से एजुकेशन होता है, समझो कि IITs में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, और आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का भी एक नए इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, तो 4-5 इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, तो इससे इससे बच्चे लोग वहां पे आते हैं, उसका रिसर्च पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन ये लिमिटेड हो जाता है ना, लिमिटेड हो जाता है। कितने बच्चों को ले लेंगे एक नया इंस्टीट्यूशन करने के लिए? वो तो 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 700 यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहीं से आते हैं, उनका एजुकेशन कैसे इंप्रूव करोगे? तो एंड देयर फॉर वॉट वी थॉट, दिस वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड दे सेड ओके लेट अस हैव एन इंस्टीट्यूशन इन द यूनिवर्सिटी कैंपस विच हैज द सेम मैंडेट एज दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आईसर जो बोलते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, वो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए 1000 करोड़ का पैसा लगता है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, तो उसको ही तुम यूज करो, बाकी नियर बाय इंस्टीट्यूशन से टीचर्स को इन्वाइट करो पढ़ाने के लिए। और इसका खर्चा कितना होता है? हमें ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया मुंबई यूनिवर्सिटी में, इट इज कॉल्ड UMDE सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज, इसका 5 साल का खर्चा सिर्फ 50 करोड़। तो और कितने हम कितने बच्चे को पढ़ा देते हैं? ऐसे ही उसी तरह का मैंडेट, उसी तरह का क्वालिटी हम जनरेट करते थे बच्चों का। ये काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था इसका। तो ये हमने सिलेबस तैयार किया उसका पढ़ाने के लिए, लेटेस्ट सिलेबस, सो दैट दे रिमेन अप टू डेट, एंड इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट वन इन द सिलेबस, एंड वी ऑल्सो गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इवन अब्रॉड, दे कम एंड टॉट एट दिस प्लेस, एंड आई हैपन टू बी द डायरेक्टर ऑफ दैट प्लेस, आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ That center for excellence in basic sciences, उसका मैं 8 साल तक director रहा। So 2009 से 2017 तक मैं उसका director रहा। तो उस समय वो autonomous institution बन गया, department of atomic energy से उसको पैसे मिलने लगा, and university से उनको degree मिलता था सब बच्चों को, and university was a participation, enthusiastically participating in this center. So that became a role model for other universities to follow. So there are many universities can establish this under this kind of a center with much less investment. So overall across the country, the education system can improve. That was the idea. It is still growing on. It is going now, developing very well. Many universities are approaching to establish such kind of a centers. So it need not be always the Department of Atomic Energy. Some other department of state and government can also fund it. Raipur University started this after us. And they, we went and taught there how to establish the institution. And they came to the Center for Excellence in Basic Sciences to teach this thing. At the same time, my research was continuing. I was having both the appointments, the director here and also with the senior professor at Tata Institute of Fundamental Research. So I had actually guided about 23 PhD students, and about the same number of postdoctoral students, and we published together nearly 250 research articles, and all this was going parallelly. Use the facilities in TIFR, education system in CBS to improve the quality of education in the university system, higher education system. So all of this was actually received very well, and ultimately it resulted in my Padma Shri from the President of India in 2014. So I continue to do that. Now I retired from TIFR in 2018 as a research as a senior professor, but I continue to be associated with IIT Bombay as distinguished visiting professor, and I interact with the PhD students of one of the departments, and my students have occupied professorial positions in many places in the country, including the IITs and the ISERS and many places. There are at least 8 to 10 students who are now faculty positions, professors in all of these places. And therefore, I have a good rapport with all of these institutions and their facilities, and I can guide those students. And that thing is what I am enjoying now. So recently, a book was published. You may not be aware of this one. Just last month, it has appeared. Somebody has published a book called 100 Great IITians, dedicated to the service of the nation. And it turns out that I am one of those 100 IITians. And this includes names like Narayan Murthy, Nandan Nilekani, Subba Rao, the governor of RBI, governor former, Sri Kumar Banerjee, Atomic Energy Chairman, and there are several others. So therefore, it is a matter of pride that we have served the nation in the best possible manner. And the title of the book says, those who were not lured by the invitations from other countries to go there and dedicated the service to the nation, And that is so they picked up on that basis. So I was very happy to see that. That recognition has come for the services we have delivered, the research we have performed, and educating the various students, the PhD students, and bringing them back to the country. Bringing them back to the country to serve in the nation. So therefore, I think overall it has been a very satisfying experience. Institution building, national service, educating the student, generating manpower, quality manpower in the country. So that has been the story, and I continue to do research with these students and faculty in IIT Bombay. And I continue to teach at the Center for Excellence in Basic Sciences in the University of Mumbai campus. So that is in short my story, Tina.
1: It is definitely one of the most inspiring stories that we have heard. But coming back to your initial part of your story, jab aap ki kahani shuru hui, aapke bachpan mein क्या शुरू से ही आप खोजी प्रवृत्ति के थे या विज्ञान के प्रति आपका रुझाव शुरू से था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमारे श्रोताओं में कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि विज्ञान को बहुत कठिन मानते हैं। कई ऐसे बच्चे या युवा भी सुन रहे होंगे जिनको विज्ञान, गणित इन सबसे थोड़ा सा बुखार आता है क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन आप अगर अपने बचपन की उस रुझान के बारे में हमारे साथ शेयर करें जिससे लगे कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है।
0: हाँ, वही ये दो चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर। पहले तो मेरा बेसिक साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट शुरू से भी था, ओ विज्ञान का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी था इसके अंदर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो मेरे ग्रैंडपा, दे ही वाज एक्चुअली ग्रेट स्कॉलर, and in that family my mother, they were all great scholars in their schools, and so therefore basic interest in pure science was always there. That was number one, that we wanted to excel in that. Even from the school days itself I had this dream that I will contribute being in India in pure science. That was my dream. And second, of course, there was another factor was that I would not dream to go into streams such as engineering and medical fields, other fields, because they were expensive. Our resources did not permit that. So wherever I went with scholarships only. Whether I was doing BSc, and in fact, as I told you, after the 10th standard, I got the national scholarship, and that is given only for pure science. It was not given for anything else. If you go to engineering field, that scholarship will not be available. And so therefore, I chose pure science for financial reasons as well, also my interest. So it matched with my interest. And I got the scholarship from IIT Bombay as well. Then unka bhi merit kam means scholarship tha. Usme freeship mil gaya mujhe aur ek scholarship bhi tha. Therefore it became easier for me to navigate through the courses and pursue my interest.
1: Lekin un logo ka kya jinko maan lijiye scholarship nahi milta, kyunki aap bhi jab scholarship fight kar rahe the to maybe aap wo chune hue 10-15 logo mein honge jinko scholarship mila, baki ke jo log hain jinko nahi mila, unke andar ye jazba pure science ko lekar ke, vigyan ko lekar ke ki usme ruchi bani rahe, uske liye kya basic practices hain, kaise hum hamare ko prepare kare ki vigyan
0: इसके लिए एजुकेशन की महत्व बहुत बढ़ जाता है। एजुकेशन किस तरह तुम आप पढ़ाई पढ़ाओगे बच्चों को, यू हैव टू जनरेट इंटरेस्ट इन देम, यू हैव टू जनरेट इंटरेस्ट इन साइंस इन दो स्टूडेंट्स, द क्रिएटिविटी, सी ये उनको सोचना चाहिए, समझ में आना चाहिए, द विदाउट क्रिएटिविटी विदाउट इन्वेंशंस यू कैनॉट प्रोग्रेस। द टेक्नोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ pure science. Creativity comes from pure science. So therefore, this creativity has to be imbibed into the minds of the students. And for that, teaching is very efficient. Teaching in a way that they get attracted towards that is very important. And that we made it a point, even the CBS, Center for Excellence in Basic Sciences, we got therefore the best of the teachers. With the best of the teachers, and all of them, all the students actually are pursuing PhD. After those, not many have gone into other fields. Everybody is pursuing PhD in pure science, either physics or chemistry or biology. उसमें जा रहे थे। आज तो computer science में भी कभी कभी चले जाते हैं, electrical engineering जो आते हैं computer science में आ जाते हैं, algorithms development करना है तो वहां भी आ जाते हैं। So which is okay, this is also pure science. However, it is also important that only those who are deeply interested in those fields pursue that fields. You should not be forced on somebody who is not interested in it, then he will not perform well. It is very important that they excel. They excel in their activities. तो जबरदस्ती किसी को तो हम उसको बोला के लेके आए तो काम नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा. He will be a failure and it will be a failure for the system as well. So therefore we have to nurture with good education, impress upon them that okay, you have the talent. And of course all students are not the same. There is certainly a gradation. There is a gradation in the intellectual levels of different students. And you have to identify what is their strength. Somebody may be good in painting, somebody may be good in doing science, somebody may be good in music, somebody may be good in something else. So we need to nurture their talents. Intrinsic talents jo hai har ek ko kisi na kisi cheez mein ek acha acha talent ho jata hai. And we have to nurture, we have to identify that and nurture that. To jinko pure science mein interest hai, to unko identify karke you have to nurture that. That only a good teacher can do. A person who is well experienced in teaching, he can do it. He can identify the person. Therefore, it is very important to get good teachers. A teaching profession sirf salary ke liye nahi hona chahiye. It is not just as another job for salary. Filler nahi hona chahiye. It should be the deep interest. And this is why I always follow that whether or not there are enough students to take a course, I would teach. I have taught courses even for two students. Those two students who are deeply interested, I have taken a course for them. Because I know they are very good. And they will excel. And I can also tell you the story of Professor S. Chandrasekhar, who was a well-known astrophysicist. He got the Nobel Prize in physics. And he used to travel few hundred kilometers to teach two students astrophysics. Only two students. And both of these students won Nobel Prizes. Even before he won, for that matter. So, therefore, the good teaching is very important. The teacher has a very important role to play in the society. It is not just another job. It is not just another job like anything else. Okay, it has to inculcate, generate interest in the minds of the students to pursue that matter further and invent new things, create new things. Unless you create new things, you cannot become Atmanirbhar. If you follow somebody else, you will always be a follower. You have to create new things and you have to become the leader. Once you become the leader, then of course others will follow. In fact, thousands of years ago, India was the leader. India was the leader. Rao Raj Jappam kehte the, us samay to Nalanda, Takshashila, these universities, these were the leaders. People used to come from other countries to learn here. And we have to bring that situation back. So we have to have good quality teachers, emphasize on the quality of the teaching and generate interest in the minds of the students, but don't force on them if they are not interested. You identify where they are interested. He can be a great painter also. Okay, why? Yeah. Nothing wrong in that. He can be a great musician. Okay, a great economist. Okay, so he can be a great builder, designer. So all of these are equally important. All of them are important. You nurture the talent where they are good at. And then of course you pursue that, encourage them in doing so. Then you will produce an overall developed society. So society ke liye sab cheeze chahiye. Sab cheeze chahiye. Economics bhi chahiye, financial management chahiye, aur societal development chahiye, social service ka philosophy chahiye. All of these are required, commitment. So therefore, if you give an overall development in that manner, nurture all of this, the country will grow. And that is a kind of a national service. That is a service to the nation.
1: And इसीलिए शायद जो 100 चुने हुए IITians हैं जिनको उस किताब में दर्ज किया गया उनमें से एक आप हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ अ टीचर इज इन नेशन बिल्डिंग. देश को बनाने में, एक व्यक्ति को गढ़ने में एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये तो आपने बताया. लेकिन यहाँ बात आती है कि चाहे शिक्षक कितना भी कोशिश कर ले किसी स्टूडेंट को अच्छा बनाने में, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कई बार बाहर के प्रलोभन में आ जाता है, या जैसे आपने बताया कि दे कैन बी अल्यूरमेंट्स वेयर यू कैन बी शिफ्ट फ्रॉम योर ओन फोकस. आप अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करके कहीं दूर चले जाते हैं just because you want some more money or a different lifestyle.
0: Correct.
1: तो इस प्रकार का जो ब्रेन ड्रेनेज होता है, इसको रोकने के लिए या इससे आपने खुद को कैसे बचाया? बिकॉज मैं समझता हूँ आपको आपके यूथ में जब आप हाँ. नए थे अपने प्रोफेशन में, आपको बहुत इन्विटेशन आए होंगे विदेश से.
0: यस यस यस.
1: गए 2 साल आपने वहां पढ़ाई किया, उस समय भी आपको वहां रुकने के लिए बहुत सारे ऑफर मिले होंगे, लेकिन फिर भी आप ऑफर को छोड़ करके वापस
0: एक्सेप्ट नहीं किया.
1: कैसे कैसे किया आपने? पहला सवाल कैसे किया और दूसरा क्यों किया?
0: पहले तो क्यों किया उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो इंडिया में रह के करना था, जो भी करना यहीं से करना था. दैट इज तो इसके लिए मतलब कोई उसको एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था. वॉट एवर आई हैव टू डू इट फ्रॉम विद इन द कंट्री, दिस वॉज माई कमिटमेंट इन हार्ट. द सेकेंड थिंग इज द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो हैज टू एम्फेसाइज ऑन वैल्यूज. द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड दिस इज वेयर सम अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. मुझे तो ये भी तो शुरू से ही मिला था, spirituality and science, they should not be separated, or spirituality in life. In fact, मैंने एक बार Montauban में lecture भी दिया था, spirituality in life, उसके बारे में lecture दिया था Montauban में. तो spirituality is important because it tells you what are your values, what are your responsibilities, okay, what are your do's and don'ts, कर्तव्य क्या है तुम्हारा, और ये इस भूमि ने तुमको इतना सहारा दे दिया है, उसको छोड़ के कैसे जाओगे, उसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. तो और तुम्हारे कल्चर जो होता है, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग, बड़ों लोग, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रखना है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये भी एजुकेशन देना चाहिए. ये एजुकेशन देने के लिए हमारा कल्चरल टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक्स विच है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी पढ़ाई होना चाहिए. The value system has to be integral part of the education system. इसलिए मैंने अभी एक किताब पब्लिश किया हूं, दूसरा किताब भी पब्लिश कर रहा हूं. The title of the book is When Science Meets Spirituality. अभी एक बुक पब्लिश हो रहा है, अभी एक महीने के अंदर एंड में वो पब्लिश हो जाएगा, और दूसरा भी मैंने एक किताब लिखा है, वो भी पब्लिश हो जाएगा. This book's title is तेन बिना तृणमपि न चलति. इसके लिए संस्कृत के एजुकेशन चाहिए थोड़ा सा. तेन बिना तृणमपि नहीं चलेगी, तो उसके भगवान के सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं चलेगा, उसके अनुग्रह से, उसके आशीर्वाद से ही, ब्लेसिंग से सब चलेगा. तो इसके लिए साइंस लोगों को, बच्चे छोटे छोटे यूथ को क्या होता है, भगवान के क्यों चाहिए, भगवान की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप चलता है, इस तरह का माइंड सेट होता है. उनको समझ में नहीं आता है कि उनके बिना ये नहीं चलता है, वो समझ में नहीं आता, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा. तो यही मैंने ये किताबों में दिखाया. कैसे दिखाया, मतलब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. सिंस आई एम द साइंस बेस्ड स्टूडेंट, आई नो दिस फिलॉसफी इज हाउ इट इज. हमारे साइंस में क्या कहते हैं, दुनिया कैसे शुरू हो गया, एक बिग बैंग से शुरू हो गया. बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग से शुरू हो गया. एंड व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग, कोई नहीं जानता. और बिग बैंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट. हाउ वाज दैट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस point, single point, where did this energy come from? What is the source of this energy? किसी के उसके पास answer नहीं है. And secondly, when the Big Bang occurred, the energy which was there started, the system started cooling, then the materials were formed, the materials
1: and the planets were formed,
0: then the planets and the stars and
1: formed,
0: the galaxies, yeah. Everything formed. Where did this material come from? And then there are laws, a lot of gravitation is there. And the gravitational law says it is always attractive. I say, why should it be attractive? Why is it not repulsive? Planetary motions is dependent on this gravitational law. Along with that, there is gravitational attraction. It is because of that you have the stability system, dynamic stability of the gravitation of the planetary system. Now, where this law come from? To generate an order. This means there is a great order in the universe. Enormous amount of order, which is immaculate, cannot be violated at all. I asked also, why is that the positive and the negative charges attract each other? And why the positive charges repel each other? What is charge in the first place? Why did the electron get the negative charge? Why did the proton get the positive charge?
1: Basically, आपने साइंस के जितने भी मूलभूत सिद्धांत है सबके आगे वाई जोड़ करके सबको चुप करा दिया.
0: हाँ, क्योंकि उसके पास आंसर नहीं है. तो अगर समझो कि हमने काफी कुछ हमने एडवांस किया है, हमने वो इन विट्रो फर्टिलेशन करके टॉली को भी तैयार किया, मून पे गया, मार्स पे गया, ठीक है. कैन साइंस गारंटी दैट एवरीथिंग यू थिंक विल बी परफेक्ट? कैन इट बी परफेक्ट? कैन साइंस गारंटी यू दैट यू विल बी ऑलवेज हैप्पी? कैन साइंस गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू जनरेट अ सिस्टम वेयर यू कैन बी डिसीज फ्री? A human being is distress free. Can we understand all of this? There are limitations of this. Therefore,
1: just
0: this
1: for example, when you are saying this, something comes to my mind. जब आप ये बोल रहे हैं कि लोगों को ये रिसर्च करके लोगों ने पता लगा लिया कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है, when they are happy, तो endorphin ज़्यादा है या फलाना हार्मोन ज्यादा है, फलाना हार्मोन कम है, etc. लेकिन अगर सेम चीज को बैक ट्रैक किया जाए, अगर आप किसी में एंडोर्फिन को बढ़ा दो, यू नो लाइक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, दैट डजंट गारंटी कि वो व्यक्ति खुश हो जाए या उन हार्मोन मिलाने से व्यक्ति खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है. खुशी के वजह से इन हार्मोन्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इन हार्मोन्स की वजह से खुशी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है.
0: तो ये
1: जो ये सोच है, ये सोच मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन में या पास्ट के भी जनरेशन में कई विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों में नहीं रही. उनको ऐसा लगता है विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए विज्ञान में जिन चीजों का जवाब नहीं है उन चीजों को वो सब नहीं मानते. विज्ञान जो है अध्यात्म को लेकर के कुछ कहता नहीं है तो वो अध्यात्म को नहीं मानते. विज्ञान जो है वो मान लीजिए ईश्वर या वैल्यूज, प्रेम, शांति, इन सब चीजों के बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता, तो वो इन चीजों पे भी ध्यान नहीं देते. तो ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स, जो यंग स्टूडेंट्स को आप आज पढ़ा रहे हैं, जिनको की बाहर से बहुत सारा इन्विटेशन आता होगा या जिनके पास बहुत सारा मोटिवेशन होगा चले जाने, उनको आप कौन से वैल्यूज से यहाँ जोड़ के रखने का प्रयास कर सकते हैं?
0: तो वही तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगा जिसमें तुम्हारे मेरे दूसरे बुक में जो है, तो हाउ टू कन्विंस दिस यूथ, यंगर पीपल, दैट द You have to accept the existence of a superpower. Teenavina Trinamapina Chalati. This means there is a superpower. This is exist which without which. I will ask this question. What is the source of the infinite energy at the time of the Big Bang? And how was that condensed in an infinitesimally small space? What caused the Big Bang to occur? What initiated the formation of different particles with the different intrinsic properties? Is there a design? How did the most fundamental particles, namely quarks, get their charge and spin? The different types of quarks have these properties to different extent. How did the electron get a negative charge and a spin? Why do the charges repel each other? Why do like charges repel each other and opposite charges attract each other? Why is the gravitational force always attractive and follows the law as stated above, inverse square law? How did the laws of interaction emerge? So there is a design. This design requires intelligence. The human beings were not there when the planetary system was created. Therefore, intelligence cannot be presumed. It has to be there always. It has to be there before. Therefore, you have to accept. You have to accept that there is an intelligent being behind this. And now you start asking question, how do we understand this intelligent being? To understand the intelligent being, you have to go through the scriptures because he is beyond experimentation. He is beyond the reach of experiments because he is superpower. So he is beyond you. Therefore, you cannot reach him by experimentation. He has to be reached by the scripts which are blemish-free. Are the blemish-free? Therefore, you have to go into this, those scriptures like the Vedas and the Puranas and the Bhagavad Gita. You have to go into such kind of scriptures which are blemish-free.
1: I mean scriptures that are core. Matlab, aise granth ya aise Upanishad ya Ved, jinme kisi dharm ka ya kisi prakar ke religion ka koi sarokar nahi hai, jo apne aap mein purna hai.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सी दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज ऑर्डर. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, इज नथिंग टू डू विद रिलीजन. इट इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग. हाउ डू यू लिव? दो भगवद गीता इज एक्चुअली साइंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. इट इज साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन वन साइड एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टू यू वॉट आर यूर लिमिटेशन. लॉर्ड कृष्ण सेज इन दैट वन, यू अंडरस्टैंड यूर लिमिटेशन, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड यूर ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो ए पर्टिकुलर एक्शन बिकम धर्म अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन बिकम अधर्म अंडर सम अदर सिचुएशन. सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म इज ऑल्सो वेरी डेलिकेट. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन प्रॉपरली एंड सी व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. And that they all this education, that's why I say the value-based education also has to be there. Therefore, I also wrote an article sometime back, which is called as Holistic Education and Research. That is, holistic education must include professional education as well as spiritual education. Both are required. Both have to go hand in hand.
1: This combination that you mentioned, एक सर्वांगीण शिक्षण प्रणाली में आध्यात्मिक भी होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मतलब जी. जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ वो रिसर्च या संशोधन या शोधन से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए. ये जो बैलेंस है, क्या ये बैलेंस आपको आज के हमारे शिक्षण प्रणाली में दिखता है? और अगर नहीं
0: तो नहीं दिखता है, वो लाना है, वो नहीं दिखता है. इनफैक्ट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज अभी उनको ले आने में. अभी पीपल शन टू रीड ऑल ऑफ दिस स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट. अरे क्यों भगवद गीता पढ़ना है, क्या क्या फायदा है उसका? इस तरह के दिमाग में चलता है लोगों के दिमाग में. और क्यों स्क्रिप्ट पढ़ना, लेकिन उनको समझ ही नहीं है, पढ़ाई नहीं कभी भी, तो कैसे पता चलेगा? तो कोई सिखाने वाला चाहिए उसको, वो तो सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, सिर्फ कॉलेज में नहीं, स्कूल में ही शुरू करना चाहिए. जब स्कूल से शुरू करेंगे then it get imprinted deeply on the minds. उसके बाद
1: मुझे याद आता है, मुझे याद आता है जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो हमारे कोर्स में कंपलसरी महाभारत, रामायण, कई काव्य रचनाएं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान या मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, ये सब कंपलसरी होता था. हाँ. और भले इनका रेगुलर डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ये पढ़ना हमको कंपलसरी होता था. मैं कुछ दिन पहले एक और यशस्वी भारत के एपिसोड में बातचीत कर रहा था डॉक्टर शरद काले जी से, जो आप भी जानते होंगे अच्छे,
0: तो
1: उन्होंने भी बोला कि कितनी कहानियां, कितनी किताबें, कितने पोएम्स जो है, कविताएं जो है, आज के बच्चे जानते ही नहीं, क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिया है. डे टू डे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल ऐसा कनेक्शन नहीं.
0: जी.
1: मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपने कौन सा ऐसा किताब पढ़ा या आपके सिलेबस में से कौन सी ऐसी कहानी या कविता थी जो आपको आपके आज के जीवन में खींच करके लेके, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैट स्टोरी और दैट एपिसोड ऑफ योर लाइफ टू योर प्रेजेंट डे.
0: नो, मेरा तो शुरू से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था. शुरू में ही हमारे फैमिली संस्कृत का इंटरेस्ट था, तो संस्कृत का किताब पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी नहीं, तो मैं संस्कृत का आराम से पढ़ सकता हूँ. तो काफी शास्त्र पाठों का मैं शुरू से ही पढ़ा. मेरे ग्रैंडफादर हैज टॉट मी लॉट ऑफ दिस थिंग्स, वहां से हमने शुरू किया था. और वो जब हम ये महाभारत, रामायण, पुराण पढ़ते थे, उसका वैल्यू निकालते थे हमेशा. इसके देर इज ए वैल्यू, वैल्यू सिस्टम इन ऑल, दे आर नॉट जस्ट कहानी, दे आर देर, but there is a value in each one of those.
1: मतलब कहानी पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें क्या गुण है,
0: गुण है, अंडरस्टैंड करना है.
1: ओके.
0: अभी भी मैं उसको, वो गुण को मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ. अपने बच्चों को मैं सिर्फ नॉट ओनली माई डायरेक्ट चिल्ड्रन बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, ऑल्सो द स्टूडेंट. इन फैक्ट दैट हैज हेल्प्ड सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स टू बिकम स्ट्रेस फ्री. वो काफी स्ट्रेस हो जाते थे, कुछ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारा कर्तव्य है काम करना है, तुम्हारा कर्तव्य, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो माते संगोस्त्व कर्माणि. तुम्हारा कर्म, काम करना है तुम्हारा ड्यूटी है, वो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. फल देने वाला पर वाला होता है, भगवान होता है. जब भी तुम्हारा इच्छा उनका इच्छा एक हो जाते तब वो ठीक हो जाता है. तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए संस्कार भी काम होता है. देयर इज अ संस्कार आल्सो, यू विल हैव टू सी व्हाट यू कैरी फ्रॉम योर प्रीवियस जन्म. द संस्कार कम्स एंड एक्चुअली अकॉर्डिंगली यू डू योर कर्म, एंड व्हेन यू डू दैट यू विल गेट रिजल्ट. बट हैव पेशेंस एंड बट यू डू योर ड्यूटी. ऐसा मत बोलो कि वो कुछ नहीं दे रहा है मुझे, उसको उसके ऊपर कुछ विश्वास नहीं है. ऐसा नहीं, वो कहीं नहीं चलेगा. वो तुम, उसको तुम्हारे लिए से क्या लेना देना है. तुम्हारा जो कर्म है उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा. तो उसके वजह से तुम्हें उसको, यू हैव टू कीप ट्राइंग. कहीं कहीं एक ना एक दिन तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा. आई हैव गिवन सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑफ माय ओन लाइफ टू वेरियस स्टूडेंट्स.
1: कैन यू गिव वन एग्जांपल?
0: या आई विल गिव वन एग्जांपल. आई आल्सो सेल दैट ओके, दिस इज बिलीव दैट व्हाटएवर हैपेंस फॉर योर गुड. आई विल गिव दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच आई मेड टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. And therefore, you don't have to get stressed anytime. It always happens for your good because something else may be better coming for you. I'll give you an example of my own. So, in somewhere in 2007, in the year 2007, I was in America, gone for a conference. That time I got an invitation from the Ministry of Human Resource Development for the director's post of ICER Bhopal. तो सब लोग कह रहे थे तुम आ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें मिल जाएगा. लेकिन मैं आ नहीं पाया. तो कभी तभी गया था मैं अमेरिका कॉन्फ्रेंस में गया था. सो देयरफॉर आई कुड नॉट कम बैक. आई सेड आई टोल्ड देम लुक आई विल व्हेन आई कम बैक आई विल कम एंड अटेंड फॉर द इंटरव्यू एंड बट दे सेड ओके नो वी कैन नॉट वेट दे अपॉइंटेड समबडी एल्स. ओके ठीक है. आई सेड ऑल राइट समबडी अपॉइंटेड. सो व्हाट हैपेंड इन देन व्हेन आई केम बैक इन 2007 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इट टर्नड आउट दैट माय वाइफ गॉट कैंसर. ओके जस्ट रिमेंबर जस्ट नो नोटिस डाउन जस्ट इन द 2010 माय वाइफ गॉट कैंसर. If I had gone to Bhopal, I would not have been able to attend to her as well as I could do in being in Bombay. And then what happened in 2009, I became the director of Center for Excellence in Basic Sciences. It is the same as I said. So, wo bhi ho gaya, ye bhi ho gaya. So, inka bhi dekh, us samay to thoda sa dukh ho gaya hoga. Lekin maine kaha, theek hai, to koi aur, kuch aur aane wala hai. Ye mere dimag mein imprint ho gaya. So I did not feel too bad. Okay, ठीक है, something else will happen. उसका ये इच्छा है. तो मुझे directorship भी मिल गया. Then I also could take care of my wife. So therefore, I told them, look, this is a classic example. This such things will happen all the time. And
1: ये जो आपने एक अनुभव सुनाया, ये हमारे सभी श्रोता साथियों को बार-बार याद दिलाता है कि कभी भी हताश नहीं होना, क्योंकि
0: बिल्कुल सही.
1: हमेशा कुछ ना कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण है. और अगर कोई चीज हमारे सामने से हट जाती है या हमें नहीं मिलता है, तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि कोई दूसरी चीज हमारे लिए इंतजार कर रही है.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल.
1: तो आपने एक अनुभव सुनाया, ये वाकई में बहुत ही आंखों को खोलने वाला अनुभव है. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ प्रोफेसर होसुर, कि आपका क्लोनिंग अगर हो सके, अगर हम साइंस में इतना आगे बढ़ जाए कि हम प्रोफेसर रामकृष्ण जी का 100 क्लोन बना ले और उनको हर एक को एक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में भेज सके, ताकि सारे स्टूडेंट्स का जीवन बदल जाए, तो कितना अच्छा होगा. मुझे ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं समझता हूँ कभी आपने ये सोच करके शुरुआत नहीं की थी कि मुझे पद्मश्री सम्मान मिलेगा या
0: नहीं, कभी नहीं.
1: आपने जस्ट शुरू किया. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने जर्नी पे थे, आपके परिवार वालों ने कभी ऐसा आपको कहा कि इंजीनियर बन गए होते तो कम से कम अच्छा था, या डॉक्टर बन गए होते तो थोड़ा इनकम अच्छा होता, या कुछ इस तरीके का कभी आपके तरफ आया प्रॉब्लम?
0: वो एक चीज समझना चाहिए लोगों को. मेरे पास इस तरह का प्रेशर तो कभी नहीं था, क्योंकि हम तो वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड नंबर वन. सेकेंडली तो मेडिकल और इंजीनियरिंग जाने से बहुत महंगे वाली चीज थी, और मेरा प्योर साइंस के लिए स्कॉलरशिप था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे. That is number one. Secondly, that is also important. We had a message in our own family and elsewhere that money is not everything. Money cannot bring you happiness. Money can only bring you miseries. Because if you have more money, you will have to protect it. पता नहीं कौन तुम्हारे के चोरी कर देगा तुम्हारा. You will have to be more careful. You will be more concentrating your energy on protecting it than doing something which is more constructive, which is better. तो ज्ञान को छोड़ के तो हमने हमेशा हमने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं चाहिए. उसके बाद अगर सरस्वती आ गई तो लक्ष्मी भी आ जाएगी. पहले सरस्वती आना चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी भी आ जाए. तो लक्ष्मी बेचे जाओगे, सरस्वती नहीं आएगी. सो देयरफॉर यू मस्ट डू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. व्हेन यू डू दैट, देन ऑटोमेटिकली यू विल सक्सीड इन अदर थिंग्स एज वेल. सो देयरफॉर दिस इज अनदर मैसेज विच हैज टू गो टू द कम्युनिटी एट लार्ज टूडे, दैट डोंट गो आफ्टर मनी अलोन. Because you need money, not that you don't need money. You will need money. Beyond a certain limit, it does not necessarily bring you happiness. It doesn't bring you happiness. It sometimes can bring you more miseries. That is, you will be always worried how to protect it, where should I invest it, which stock is better, which is that, things like that. All your energy will be concentrated on that. You will start forgetting about your values. बाकी सब छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, और कल्चर को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते, उसी के पीछे पड़ जाते. So, इस तरह का कल्चरल रेवोल्यूशन आना चाहिए हमारे यहाँ. तो दिस हैज टू गो इनटू द एजुकेशन सिस्टम. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए. नॉलेज हैज टू बी एम्फेसाइज्ड दैट, एंड द मनी विल फॉलो. वंस यू डू दैट, इन्वेंशंस विल हैपन, नेचुरली अदर थिंग्स विल फॉलो.
1: तो दोस्तों, जो रामकृष्ण जी ने हमें बताया कि अगर आप सच में लक्ष्य एक साधते हैं, और उस लक्ष्य का जो भाव है वो केवल कल्याण है, तो वो लक्ष्य हमेशा आपके पास वापस से कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएगा जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया था. जैसे श्री रामकृष्ण जी के जीवन से अगर हम देखें, तो उन्होंने लक्ष्य रखा था देश की प्रगति विज्ञान के माध्यम से उन्हें करना है. इस लक्ष्य ने उनके पास न केवल वैभव धन संपदा लाया लेकिन साथ में यश भी लेकर के आया। भारत सरकार ने 2014 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये उनके इस जज्बे का सम्मान था जिस जज्बे में केवल और केवल देश था। वो चाहते तो कई बार उनके सामने आए हुए कितने ही ऐसे ऑफर्स, कितने ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे जिनमें वो देश से बाहर जाकर के बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार हर प्रश्न का जवाब केवल एक ही शब्द में दिया, देश पहले। क्या आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है और उसमें आप हर बार यही उत्तर देते हैं, देश पहले? ये केवल कारोबार या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं दोस्तों, ये सवाल हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, मैं रास्ते में चलते हुए कचरा कहाँ फेंकता हूँ, इन हर चीजों में अगर हम केवल इस बात को जोड़े क्या इससे मेरे देश को कुछ भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये केवल एक पैरामीटर जो है हमारे पूरे जीवन के जीने के तरीके को बदल देगा और देश को भी बदल सकता। जाते जाते हम प्रोफेसर हसूर जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर हसूर, आप अगर आज आपके सामने केवल हमारे रेडियो के श्रोता नहीं समझिए पूरा भारत देश है, पूरे भारत देश को आप क्या एक सुझाव, संदेश, मैसेज देना चाहेंगे?
0: फर्स्ट इज कमिटमेंट एंड सेल्फलेस सर्विस। स्वार्थ से कुछ नहीं होगा, अगर स्वार्थ देखोगे कभी भी तुम सर्विस नहीं कर पाओगे। स्वार्थ निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। Always you want to take some return in that one and that will not be the best thing. And that दान कभी नहीं होता है। अगर तुम दान करने चाहते हो तो उसके तुम return सोच के दान करते हो तो दान कभी नहीं होता है। So therefore स्वार्थ निस्वार्थ कर selfless service, selfless action if you do then it is always a good thing for you and it will always bring good for the yourself and also for the nation. And whatever profession you pursue, every profession is important for the country. And in every case, you only have to excel and see what best you can give to the society from there. How to bring in harmony, peace and harmony in the society from your work. What can you give to them? Because your education is dependent on the various people's contributions. The school tayar karne ke liye, baaki sab bahut sare logon ka paisa kharcha ho jata hai. बहुत सारे लोगों की उनको संभालना पड़ता है। सो इट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गिव इट बैक टू द नेशन एंड देन ओनली द होल कंट्री एज ए होल कैन ग्रो। दैट्स व्हाई वी सेड दैट सेल्फलेस सर्विस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली अवर भगवद गीता ऑल्सो से दैट डोंट एक्सपेक्ट, डोंट डू थिंग्स एक्सपेक्टिंग समथिंग। फलापेक्ष नहीं होना चाहिए, फलापेक्ष के बिना तुम कर्म करोगे तुम उसी का तुम्हें फायदा मिलेगा, उसी को भगवान ये करेगा, उससे प्रीत होगा एंड दैट विल ओनली गिव यू गुड रिजल्ट्स एंड दैट इज अ फंडामेंटल रिएक्शन विच वन शुड एवरीबडी शुड गेट प्रिंसिपल वन शुड फॉलो दैट वंस यू हैव दैट वन वॉट एवर यू डू विल ऑलवेज बी अ बेनिफिशियल थिंग ओनली नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी
1: एंड कीपिंग दिस मैसेज इन माइंड कमिटमेंट एंड सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थ सेवा और तत्परता ये दोनों चीज अगर हमारे जीवन में बनी है तो सफलता जरूर हाथ आएगी और केवल खुद के लिए सफलता नहीं बट पूरे अपने समाज के लिए भी एक सफल आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है कि जब आप देश के कोने कोने में जाते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, विदेशों में जाते हैं, कौन सी एक बात आपने नोटिस की है जो भारत को भारत बनाती है?
0: अपना कल्चर जो है एक्चुअली इंट्रिंसिकली अपना कल्चर जो है दिस इज इनवैल्यूएबल। दिस कल्चर हैड गॉट करोडेड बाय मनी पावर एंड दिस कल्चर इज एवरीबडी अप्रिशिएट दिस अवर कल्चर, एवरीबडी अप्रिशिएट्स द वैल्यू सिस्टम इन अवर कल्चर एंड देन ऑफकोर्स व्हेन इट्स गोज आफ्टर द मनी देन दे विल स्टार्ट टू फॉरगेट दैट एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू बी ब्रॉट बैक। वन हैज टू रिमाइंड द पीपल एवरी नाउ एंड देन that okay you follow the culture which is valuable and India is known for our culture. The Sanatana Dharma jo hum jo bolte hain and this is something which is we cannot date it, it is so old and then of course our Ram Raj jo bolte hain it is actually based on the Sanatana Dharma, this principle, that kind of a principle. So this is actually recognized by various countries as well and therefore they actually in order to win over us they try to impose their power and things like that and destroyed our culture. गुरुकुल का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। गुरुकुल में कितने इस तरह का एजुकेशन दिया जाता था कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। मेड पीपल द करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड मनी पावर बिकेम इम्पोर्टेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द होल थिंग गॉट करप्टेड। सी द सिस्टम गॉट करप्टेड। सो while intrinsically they knew, but they wanted to win over us by doing these sort of wrong things. But now we are rising. We are rising. Our country is rising, and it is important to convince the people, the youth, with this. That's why I am writing these books. मैंने कहा तो मैं ये बुक किस लिए लिख रहा हूँ, तो कल्चरल रेवोल्यूशन आना चाहिए हमारे कंट्री में. तो सब जो पढ़ेंगे, तो आई बीइंग अ साइंटिस्ट मायसेल्फ, आई एम शोइंग द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, हाउ फार इट कैन गो एंड व्हाट इज देयर बियॉन्ड इट, एंड यू सी हाउ यू कैन गो बियॉन्ड इट. एंड व्हेन यू डू दैट श्योरली वी विल रिकवर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एंड गो बैक टू आवर एंशिएंट विजडम व्हिच वाज सिग्निफिकेंट, व्हिच वाज वेरी लार्ज.
1: तो भारत को जो भारत बनाती है वो है उसका कल्चर,
0: कल्चर
1: परंपरा,
0: बिल्कुल.
1: जो संस्कृति है वो भारत को भारत बनाती है, लेकिन इस संस्कृति से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, हाँ, तो उस दूरी के वजह से हम हमारे खुद से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी
0: अस्तित्व ही खराब हो
1: गया, हमारा परिचय. हम खेलेंगे छोटा सा रैपिड फायर राउंड अप आपके साथ, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देना है. तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से. सेवा क्या है?
0: Working for benefit of the others.
1: विज्ञान क्या है?
0: Understanding the whole system. अध्यात्म और professional, दोनों चाहिए. अध्यात्म is actually विज्ञान, normal ज्ञान is ज्ञान, तो professional ज्ञान जो है वो ज्ञान होती है, अध्यात्म ज्ञान है तो विज्ञान.
1: कर्तव्य क्या है?
0: कर्तव्य is you have a sense of responsibility towards your society, so therefore you have to perform according to that responsibility.
1: धर्म क्या है?
0: धर्म is a very difficult question. This is to understand dharma is not easy. It is dependent on situations and what is dharma, what according to the situation you have to decide what is in the bigger interest of the society. That is dharma. Temporarily for a particular thing it may not be looking good, but in the bigger interest of the society it is. For example, Arjun itne sare kauravon ka vadh kiya, ye dharma ya dharma? तो अर्जुन उसने उस समय तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो दिस इज धर्म बिकॉज यू आर डूइंग योर ड्यूटी बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग द अधर्म टू ग्रो एट द सेम टाइम यू आर किलिंग सो मेनी पीपल यू कॉल इट इज अधर्म इट इज नॉट अधर्म एट दैट टाइम सो दैट इज व्हाई सो अधर्म धर्म और अधर्म को संभालना समझना बहुत डेलिकेट आइटम है वो सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इन द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी लोक कल्याण
1: से एक सवाल ध्यान में आता है वो ये है कि समाज क्या है?
0: वो समाज इज द ऑल ऑफ अस हैव अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेल बीइंग ऑफ द अदर्स यू हैव टू सी दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर वसुधैव कुटुंबकम दिस इज अ फैमिली सो देयरफॉर यू हैव टू ग्रो टुगेदर सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच वन ऑफ द अदर पर्संस एंड दैट इज बिकॉज नोबडी कैन लिव ऑल बाय हिमसेल्फ सो इट इज यू लिव बिकॉज अदर्स लिव एंड देयरफॉर यू हैव टू लिव अलोंग विद देम.
1: The next few questions only in one words. So, first question. What is peace? Shanti kya hai?
0: Shanti, man ki shanti. Pahla hai man ki shanti. Man ki shanti ho toh sabka shanti aa jayega.
1: Okay. Khushi kya hai?
0: Khushi bhi man ki khushi. Khushi tumhare andar ki khushi jo hai, antardhan. Oh khushi jo, wohi khushi.
1: Laksh kya hai?
0: Laksh, mera laksh hai, toh dusron ko khushi dekh, khush dekhna.
1: Very nice. Santosh kya hai? What is contentment for you?
0: Contentment is whatever you have, be happy.
1: Jo hai usse khush rahe.
0: Jo hai khush. Yes.
1: Bharat kya hai?
0: One nation, one culture.
1: Akhri sawal. Professor Ramakrishna V. Hosur kaun hai?
0: Ek sadharan vyakti hai. Aapke jaise.
1: This is amazing ki aapne apne jeevan mein itna gyan prapt kiya hai. Aap itne logo को ज्ञान देते हैं. आपके कार्य के वजह से भारत ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है. आप भारत का गौरव हैं और आप खुद को कहते हैं कि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ. ये आपकी नम्रता को दर्शाता है.
0: इंसानियत जो है वो सब में एक ही होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल. तो बाकी चीज जो आते हैं आगे पीछे आते जाते रहते हैं बट इंसानियत जो है दैट मेक्स अ मैन ग्रेट और अदरवाइज. तो अहंकारी हो गया तो उसको कुछ फायदा नहीं है. उसको कुछ भी मिले तो कुछ फायदा नहीं है
1: जी. और मैं समझता हूँ अहंकार आपको छू भी नहीं सकता क्योंकि आप वास्तव में बहुत नम्रचित्त हैं. नम्रता आपका गहना है वो हमने शुरू से देखा है आज के एपिसोड में. प्रोफेसर राम कृष्ण वी हसूर जी आप हमारे साथ आए हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों हमारे श्रोताओं के साथ रहे। आपने अपने जीवन की इतने सुंदर सुंदर कहानियों से हमारे इस एपिसोड को सजाया, और केवल सजाया नहीं, हमें प्रेरित भी किया कि जीवन को कैसे जिया जाए। इसके लिए आपका बहुत

0: जो कि भारत सरकार द्वारा 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जाने माने विख्यात वैज्ञानिक है। यशस्वी भारत इस कार्यक्रम में हम न केवल प्रोफेसर हसूर जैसे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन हम कभी कलाकारों से बात करते हैं, कभी लेखकों से बात करते हैं, कभी खिलाड़ियों से बात करते हैं। हर एक ने अपने अपने तरीके से देश के उत्थान में योगदान निभाया है। मैं और आप अपने जीवन में हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दिल से उसे करते हुए देश को अपना योगदान दे सकते हैं, और इसका सबसे पहला कदम आज ही आप शुरू कर सकते हैं, और वो ये है कि आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो देश भी खुश रहेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज रेडियो मधुबन आप सुनते रहेंगे तो मुस्कुराते जरूर रहेंगे, ये हमारा वायदा। अगले एपिसोड में यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भाग दौड़, तनाव और अशांति से भरे आज के जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता का मार्ग दिखाता है। विषय है ध्यान, मन का मौन और आत्मा का संगीत। आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है लेकिन भीतर से उतना ही थका हुआ है और अशांत भी है। सुविधाएं बढ़ी हैं पर शांति घटती जा रही है। कारण साफ है, हम बाहरी दुनिया को संवारने में लगे हैं लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे। ध्यान हमें इसी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान एक ऐसी चेतन अवस्था है जहां मन की निरंतर चलने वाली विचार श्रृंखला धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब विचार थमते हैं तब मन मौन होता है और इस मौन में जो अनुभूति होती है वही आत्मा का संगीत है। यह संगीत शब्दों से परे है लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है। हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है। वर्तमान में रहना ही शांति की पहली शर्त है। जब हम अभी और यहीं को स्वीकार करना सीखते हैं तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। एक सुंदर उदाहरण है, यदि किसी शांत झील में आप पत्थर फेंक दें तो लहरें उठती हैं और पानी अशांत हो जाता है, लेकिन यदि पत्थर ना फेंका जाए तो झील स्वाभाविक रूप से शांत रहती है। हमारे विचार वही पत्थर हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करते बल्कि उन्हें छोड़ देना सीखते हैं। परिणाम स्वरूप मन स्वयं शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। यही आंतरिक मार्गदर्शन हमारे निर्णयों को स्पष्ट, संबंधों को मधुर और व्यवहार को संतुलित बनाता है। ध्यान हमें प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाता है। ध्यान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता। एक शांत व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में भी शांति फैलाता है। जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हों हम उनसे सहजता से निपट सकते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि ध्यान किसी विशेष धर्म संप्रदाय या आयु वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। बच्चा हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या सन्यासी, ध्यान हर किसी के लिए है। दिन में 5 से 10 मिनट का नियमित अभ्यास भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। ध्यान को हम जीवन में सहज रूप से उतार सकते हैं। सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना, गहरी और जागरूक श्वास लेना या दिन में किसी भी समय अपने विचारों को देखना, यही सरल ध्यान है। प्रिय श्रोताओं, आज की दुनिया में हमें और अधिक भागने की नहीं बल्कि भीतर ठहरने की आवश्यकता है। मौन से डरने की नहीं बल्कि उसे मित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है और वहीं से जीवन का वास्तविक संगीत प्रभावित होता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब मन मौन होता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है, और जब यह संगीत जीवन में उतरता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। तो ये था आज का चिंतन, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोयल फड़क के मस्त करे, जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की था
1: शामे फुरका।

0: मित्रांशिवाय आयुष्यपूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांति.
4: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
5: आज मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाई हूँ.
4: श्योर. मुझे मालूम है आप क्या लाए होंगे.
5: मुरली.
4: ऑफ कोर्स. वाक्य
5: परमात्मा के महावाक्य. जिस टॉपिक पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, परखने की शक्ति. और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो रिस्पेक्टफुल इन आर वोकैबुलरी ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारी है कि सम्मानीय नहीं था. तो आपने डिसाइड किया कि उनके घर फिर कभी नहीं जाना.
4: जी.
5: और आपने एंड में कहा मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, अभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, उनके घर नहीं जाऊंगा फिर से. और आपने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था.
4: जी.
5: तो मेरा गुस्सा होना तो नेचुरल था. तो आपने एंड में कहा लेकिन मैं फिर भी उनके घर नहीं जाऊंगा.
4: बिल्कुल.
5: ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं इस बात के ऊपर. एंड आई जस्ट फाउंड अ मुरली.
4: आपने क्या किया मालूम है?
5: वी जस्ट फिटेड इन.
4: नहीं, so आपने क्या किया? सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए.
5: हाँ, सही बात.
4: हम दोनों का डिसीजन तो नहीं हो पाया. नहीं. तो लेट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट.
5: ऐसे भी आप देखो, हम सब कुछ जो शेयर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पर है ना, जो परमात्मा डायरेक्टली सुनाते हैं.
4: फैसले में ही तो छोटे कोर्ट में डिसाइड होता है ना.
5: ठीक है.
4: तो आज सुप्रीम मतलब सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल.
5: परफेक्ट. तो देखते हैं शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें क्या महावाक्य सुनाते हैं. तो परमात्मा कहते हैं ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना. परखना जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे,
4: ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात
5: छोटी बात नहीं समझना. कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य परखने की प्रैक्टिस चाहिए. सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी. जैसे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमें परखना है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना है, उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस सोच के फिर परखना है. क्योंकि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ना. फ्यूचर में आएगा ना कॉन्सिक्वेंस. आज हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन. वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देखकर नहीं परख रहे.
4: जैसे मैंने कहा तो ब्लैक को तो ब्लैक ही बोला, मैंने क्या बोला क्या.
5: हाँ, लेकिन भविष्य का उसका कॉन्सिक्वेंस, हमारी शक्ति कम हुई, बार बार अंदर पर चिंतन करते करते हमारी सेहत खराब हुई और हमारा उस आत्मा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्मिक अकाउंट बन गया. तो ये भविष्य का सोचकर फिर परखना है. यथार्थ रूप से मतलब एक्यूरेटली वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे. उनकी बुद्धि एक ही कार्य में और एकरस स्थिति में रहेगी. मतलब जिसके अंदर ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, उनकी फिर परखने की शक्ति भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी. क्योंकि टर्बुलेंस है ना यहाँ पे, तो पिक्चर सही नहीं दिखाई देगी. अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते हैं. वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है. जनरली ऑल्सो अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो थोड़े टाइम के बाद हम कहेंगे थक गए।
4: बाबा तो बोल रहे हैं कि ज्यादा डाइवर्सिटीज में इधर भी हाथ डाल दिया।
5: वो तो मल्टी टास्किंग, कि ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन व्यर्थ नहीं सोचना। वेस्ट सोचने से भी बुद्धि की शक्ति कम तो हो जाएगी।
4: पिछले एपिसोड में तो वेस्ट ही था।
5: हाँ,
4: मेरी टॉकिंग थी और थिंकिंग थी, दैट वाज ऑल वेस्ट।
5: वेस्ट
4: हो चुका है।
5: नॉट ओनली वेस्ट, नेगेटिव ऑल्सो।
4: या बट उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना।
5: नेगेटिव
4: ऑल गॉन,
5: बट नेगेटिव भी था ना, नेगेटिव भी था ना,
4: अभी तक है।
5: तो इसीलिए उस दिन का कर्मा उस दिन के लिए भी नेगेटिव था, और क्योंकि फिनिश नहीं किया तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसका अभी तक वो नेगेटिव चल रहा है। तो प्रेजेंट भी फ्यूचर भी दोनों देखकर बुद्धि में वीकनेस थकावट महसूस होती है तो यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे।
4: सही बात
5: है ना। अगर मन बुद्धि में बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ना सही परखेंगे और ना सही निर्णय ले सकते
4: हैं। तक जाएंगे कहाँ,
5: क्यों निर्णय लेंगे ना,
4: चलते रहेगा।
5: निर्णय लेंगे ना, आपने निर्णय लिया मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना, तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था। थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा, सी दिस लाइन, कितना भी होशियार होगा तो भी थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा।
4: मैंने कहा था ना, एनीबॉडी हु हर्ट्स फॉर इंटेलिजेंस,
5: इंटेलिजेंस
4: अपने आप को
5: इंटेलिजेंट है।
4: हाँ, लेकिन हाँ,
5: देखो
4: कितना भी इंटेलिजेंट हो,
5: हाँ,
4: अगर इस तरह का पैटर्न करते रहे, इस तरह की हैबिट हो जाए,
5: हाँ,
4: कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा, इसने चाय नहीं पूछी,
5: हाँ,
4: इसने मुझे खुद चांदी के ग्लास में पानी पिया, मुझे स्टील के ग्लास में पिला दिया,
5: तो इतनी व्यर्थ चिंतन अगर चलेगा तो कितनी भी इंटेलिजेंट आत्मा हो, लेकिन थकने के कारण, सी मतलब क्वालिटी है हमारी, लेकिन थकने के कारण हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति नहीं यूज कर पाएंगे। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए विजयी नहीं बन सकते।
4: विजयी ऑन व्हाट?
5: विक्टोरियस ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन माय ओन वीकनेस, थके हुए हैं। हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है। हार खा लिया ना, फिर वो ही नेगेटिव संस्कार हावी हो गए, फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर दूसरी आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई।
4: मैं हार खाया सिचुएशन से,
5: सिचुएशन से ही तो हार खाए, और उस आत्मा से भी हार खाए, उसके संस्कार से भी हार खाए। जब भी हम डिस्टर्ब हुए तो हम किसी न किसी से हार खाए ना।
4: अगर मैं डिसाइड किया आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा तो मैं हार गया?
5: नहीं, आपने डिसाइड किया आज से बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद में और कई सालों तक उसके बारे में अगर थिंकिंग जैसे अभी चल रही थी नेगेटिव वाली, वो अभी भी चल रही है, तो फिर मेरा संस्कार पावरफुल था ना टू डिस्टर्ब यू, तो हार खाई। तो विजय न होने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई की कमी। जैसे उन्हों की कहते हैं हाथ की सफाई होती है, दुनिया में कहते हैं ना हाथ की सफाई है, तो परमात्मा कहते हैं आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते। जब वो हाथ की सफाई से इतना कुछ कर सकते हैं तो आप बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, मतलब नॉलेज तो आ गई क्या सही है क्या गलत है। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, दे ये भी परखने की शक्ति। व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर, इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम। दिस ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रहे हैं। जैसे हम इतनी बार देखते हैं प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट, एक कैटेगरी। एक थॉट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरों तक तो पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलती है?
4: जैसे वो हमें किचन में हम जो भी कुछ पकाते हैं
5: सबसे पहले तो आपको मिलती है,
4: पहले हमको मिलता है, चारों तरफ उसका एरोमा घर में फैलता है।
5: ट्रू। तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करेगी वो वाइब्रेट होगी, बाहर जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को मिलेगी। तो जितनी बार भी हम एक प्योर पावरफुल अच्छे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरे टाइप ऑफ थॉट है जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, चाहे वो दूसरे के बारे में है, चाहे वो अपने बारे में है। जैसे आपने पिछली बार कहा, गिल्ट भी मुझे क्रिएट हुआ, गुस्सा भी मुझे अपने ऊपर भी आया, अपने ऊपर कोसा, तो मतलब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में चला गया। ये जब किया तो अपने आप को भी फील होता, दूसरे तक भी वाइब्रेशन जाता है। ये हुआ थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट, जब हम नेसेसरी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज इनसे मिलना है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, नेसेसरी थॉट। एंड फोर्थ टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ। पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, नेगेटिव नकारात्मक चिंतन, नेसेसरी साधारण चिंतन, एंड वेस्ट व्यर्थ चिंतन। वेस्ट चिंतन हम किसको कहेंगे, जहां हम ज्यादातर या तो जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो अभी होने वाला है।
4: लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता हूँ, अभी का थोड़ा ही कुछ सोचते।
5: तो मेजोरिटी हम यही कर रहे हैं।
4: आप रूम में खाली बैठेंगे अकेले,
5: हाँ?
4: और टीवी भी ऑन नहीं है या किताब भी नहीं पढ़ रहे और कंप्यूटर फोन कुछ नहीं है,
5: हाँ?
4: तो आप बैठ के सोचेंगे कि मैं अकेला खाली इस वक्त बैठा हूँ, आज तारीख ये है और मैं इस वक्त इतने बजे इस घड़ी पे।
5: अच्छा, नहीं तो क्या सोचेंगे?
4: कोई भी थॉट आ जाता है, स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब माँ जिंदा थी तो ऐसा हुआ, शूटिंग में ऐसा हुआ,
5: हाँ, मतलब
4: पता नहीं कल का बच्चे का क्या होगा,
5: हाँ,
4: और उधर वो उसका बच्चे का वो है, उसके बच्चों के आज के जमाने का क्या होगा,
5: हाँ,
4: इनकी 30 साल बाद दुनिया कैसे रहेगी।
5: तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों टाइप ऑफ थॉट्स, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, नॉट इन माई कंट्रोल, पावर वेस्ट, एनर्जी
4: नॉट इन माई कंट्रोल।
5: क्या
4: कि पास्ट और फ्यूचर को सोचना नहीं सोचना?
5: क्यों? जैसे आप पे ही नहीं आता है
4: फिर?
5: अभी ये भी थिंकिंग चेंज करनी है कि थॉट आप पे ही आता है, थॉट अपने आप नहीं आ रहा है।
4: मैं थोड़ी बोलती हूँ 1945 में क्या हुआ।
5: अच्छा, अगर आ भी जाए, चलो आ गया ना कि हम बैठे साइलेंट हैं।
4: 1960 में ऐसा हुआ था,
5: हाँ, इट्स ओके, आ गया। बेसिकली क्या हुआ है, अंदर जो स्टोर करके रखा है मेमोरी बैंक में,
4: सब कुछ स्टोर्ड है, जब से वो संभाला
5: स्टोर्ड है ना,
4: तो एक कोई भी चीज आती है,
5: अब उसको कितनी देर उस बारे में सोचेंगे?
4: जब तक रियलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ खोया हुआ था,
5: तो वो रियलाइजेशन।
4: मैं एक किताब पढ़ता हूँ सिस्टर, तो 3-4 पैराग्राफ के बाद एक वर्ड कुछ ऐसा आता है उसमें, या एक लाइन ऐसी आती है जो कि कोई मेरे साथ रिलेटेड किस्से की बात हुई, कुछ स्कूल आ गया या टीचर का नाम आ गया, तो वहां से कनेक्टेड सीधा थर वहां चला जाता
5: हूँ,
4: और ये आंख वहीं रहती है, किताब हाथ में रहती है, मैं वहां घूमता रहता हूँ, उसके बाद रियलाइज होता है कि मैं अभी तो पेज नंबर लाइन नंबर 7 पे ही हूँ।
5: हाँ, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मन बुद्धि थक जाएगी।
4: बट बिटवीन द रियलाइजेशन कि अभी तक मैं 7 लाइन ही पढ़ा, और बिटवीन 1st एंड 7 के बाद फिर से शुरू करने के बीच का गैप वॉज नॉट इन माई कंट्रोल।
5: इट इज इन माई कंट्रोल वेन आई स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टूडे। Never say it's not in my control. We can only say I was not aware. मैंने ध्यान ही नहीं रखा, आज से मैं ध्यान रखूंगा। सपोज हमने एक वर्ड यहाँ पढ़ा, अभी सपोज बातों में ही देखते हैं, अभी हमने मुरली की एक लाइन पढ़ी, ठीक है, और फिर उस लाइन को लेके हम दूसरी बातों पे आ गए, अभी हम आ गए, बट आई एम अवेयर कि हम ये कर रहे हैं। आई एम अवेयर, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हम ये कर रहे हैं। हम मुरली की लाइन से, जो हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहे थे, हम उस लाइन से हटे, उस लाइन से एक लाइन ली, उस लाइन से हम और लाइनें, मतलब और बातें कर रहे हैं। वी आर अवेयर कि हम ये कर रहे हैं, और हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उसको स्टॉप कर वापस इस पर आ सकते हैं।
4: नहीं, मैं तो आपसे बात करते करते कहीं कहीं चला गया।
5: लेकिन हमें ये तो अवेयर है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कुछ और बात
4: कर रहे हैं ना, कि आपको रोक के मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ।
5: वी आर अवेयर ना,
4: तो
5: ये अवेयरनेस है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है।
4: हाँ, तो मैं आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे,
5: हाँ,
4: इस बात के क्वेश्चन का, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा।
5: लेकिन अगर अभी आपको किसी भी क्षण लगे कि नहीं बस अभी वी हैव टू गो बैक टू दैट, तो आप एक क्षण में क्या कहेंगे?
4: बोले ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
5: दिस इज इट, ये सब कौन चूज करता है? मतलब हम सोच रहे हैं, हमें दिख गया, हम अवेयर हो गए कि नहीं बहुत ज्यादा बाहर आउट ऑफ इस टॉपिक से चले गए, स्टॉप वापस। ये हम ही तो कर रहे हैं, यही चीज हम थिंकिंग के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, इतना लंबा लंबा लंबा चला, फिर सडनली कितनी एनर्जी वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट, स्टॉप वापस हो जाएगा। इसको भी हम थॉट मैनेजमेंट कहते हैं। पहले हम अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं थे।
4: मनी मैनेजमेंट आती है मुझे,
5: मनी मैनेजमेंट आती है ना, उससे बेटर
4: इधर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, कितना फोन पे बाहर करूँ कि इंडिया के बाहर तो इतना लगेगा।
5: अच्छा, जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या मैनेज करते हैं? राइट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा,
4: मिनिमम रुपीज में मैक्सिमम प्रॉफिट,
5: परफेक्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट। कहीं अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जहां से आपको लगे कि उतना रिजल्ट नहीं, इनफैक्ट लॉस हो रहा है,
4: निकाल देते,
5: यही तो करना है, यही तो करना है। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप हटा, दूसरे पे शुरू किया, डिफिकल्ट, स्टॉप शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। सपोज आपके घर में कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस ही होता जा रहा है, वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे?
4: बोलेंगे भाई इसको हटा दे, दूसरी जगह लगा दे।
5: देखो लॉस हो रहा है, आप तो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उसी में डालते जा रहे हैं अपने आप को, लॉस हो रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है, पावर डिप्लीट ही होती जा रही है, फिर भी तुम उसी बारे में सोच रहे हो।
4: फंड मैनेजमेंट का लॉस मालूम है मुझे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है वेस्ट थॉट्स में ये नहीं मालूम था।
5: लॉस नहीं हो रहा था जब हम व्यर्थ इधर उधर इसका, और फिर उसमें उसको गुस्सा भी कर दिया, उसको गलत भी, फिर हर्ट, फिर
4: आई नेवर थॉट फ्रॉम दैट एंगल,
5: वी नेवर थॉट ना, तो वही तो सीखते हैं ना, दैट इज थॉट मैनेजमेंट ना, कि दिस इज माय वेस्टेज।
4: अब हम बात का वेस्ट हो रहे थे, पैसा तो नहीं जा रहा मेरा,
5: उससे भी वैल्यूएबल चीज जा रही है ना,
4: क्या
5: वो एनर्जी जा रही है जो पैसा कमाती है हमारे लिए, आत्मा की शक्ति। अभी क्या सुना, जितना बुद्धि थक जाएगी उतना उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती जाएगी। थकेगी कैसे? साधारण और व्यर्थ चिंतन टू मच करने से।
4: तो इतना थकने से मेरी मनी मैनेजमेंट में भी
5: वही तो मैंने कहा, जो ये वो शक्ति कम हो रही है जो पैसे को भी कमाती है,
4: फिर तो ये रियल लॉस है, तो डबल लॉस है।
5: हम उस लॉस को कितना बड़ा लॉस समझते हैं ना।
4: हाँ, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ,
5: ये लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके कंपैरिजन में। पैसा जाता है, पैसा आता है, शक्ति जाती है वापस कमाने, सेहत जाती है वापस कमाने, रिश्ते जाते हैं वापस कमाने, पैसे के लॉस और प्रॉफिट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये एनर्जी तो उससे कितनी ऊपर है। और ये वो संस्कार है, वो सोच है जो हमारे साथ भी जाएंगे आत्मा की जर्नी पर। वो धन तो जाएगा नहीं साथ में कहीं भी, तो भी इसके प्रॉफिट और लॉस को उतना महत्व नहीं देते ना। यही तो आज सीखने को मिल रहा है कि अपनी थॉट्स की अवेयरनेस, इसको भी हम कहते हैं थॉट मैनेजमेंट, मतलब जैसे SOS कहते हैं ना, तो इसमें भी SOS है, स्टॉप कर देना, उसको ऑब्जर्व करना है कि ये मैं किस बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, और तुरंत स्विच। इवन अगर आ गई, आपने कहा ना थॉट आ जाती है, आ गई, चल रही है, स्टॉप
4: ऑब्जर्व एंड स्विच। शूटिंग में मैं करता हूँ ना,
5: हाँ,
4: जैसे डायरेक्टर बोलता है रोते रोते सीन में, रोना रोक के कट करके बैठ जाता हूँ, उसके बाद बोलता गड़बड़ होगी, सॉरी लाइट गड़बड़ होगी, दोबारा शुरू करो,
5: हाँ,
4: फिर लाइट्स ऑन, फिर रोना शुरू।
5: अच्छा, और अगर सपोज वो बोले रोते रोते सीन वो हुआ स्टॉप, नेक्स्ट मिनट के बाद नेक्स्ट सीन, उसमें आपको बहुत खुश होना
4: है,
5: कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये
4: शुरू में तो घर तक रोता हो जाता था,
5: नहीं नहीं, पर स्टॉप करके दूसरे सीन में चेंज कर सकते हैं,
4: अब कर सकता हूँ,
5: कर सकते हैं।
4: लेकिन अर्लियर स्टेजेस में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर तक रोता हो जाता था,
5: मतलब हम उस रोल में क्या हो गए,
4: खो गए थे,
5: खो गए किसी भी चीज में, इतना नहीं खो जाना।
4: प्रैक्टिस करते करते करते आ गया ना,
5: प्रैक्टिस करते करते आ गया ना,
4: प्रैक्टिस करते करते स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आ गया। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाज डिफिकल्ट इनिशियली,
5: दिस नाउ प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस करते करते ये भी आ जाएगा।
4: स्विच ऑन स्विच ऑफ तो ऐसे होता है मेरा,
5: अब ऐसे होता है ना, यहाँ भी अब ऐसे ही होगा, ऐसे होगा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, सेम करना है, सेम सेम ये थॉट चल रही है, मैं बहता जा रहा हूँ इसके अंदर, मेरी कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है, स्टॉप, चेंज, स्विच, हो गया। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते, अब आप देखो, आपने कहा अब तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इजिली,
4: शूटिंग में मैं चाय पी रहा हूँ, डायरेक्टर बोले शॉट देखे, आधी छोड़ के शॉट दिया, रोया धोया, इमोशनल लड़ा किया, करके कट बोला ओके, सिर्फ आधी बाकी चाय पीने लगे, दोस्तों से बात करने लगे,
5: सिंपल,
4: इमीजिएट हो जाता है,
5: इमीजिएट हो जाता है ना,
4: पहले पहले नहीं होता था।
5: कोई भी चीज पे प्रैक्टिस की, अभी हरेक अभी नहीं कर पाएगा इजिली, जो आप कह रहे हैं कि रोए फिर स्विच किया फिर खुश हो गए, ये हरेक नहीं कर पाएगा, जिसने प्रैक्टिस किया वो कर लेगा।
4: अच्छा एज ए टीचर आप मुझे समझाओ क्या करना, मुझे एक थॉट आ गया,
5: आप सीन के लिए क्या करते हैं कि अभी रो रहे हैं,
4: तो कट बोल दिया डायरेक्टर, हो गया काम खत्म,
5: बस खत्म, फिर
4: काम खत्म, दूसरा करूं,
5: तो उतना ही इजी है ना ये भी, उसमें कुछ करना ही नहीं, हमें लगता है हर चीज के लिए पीछे बहुत बड़ी कोई टेक्निक होगी, कोई उसकी प्रोसेस है, कोई उसकी
4: पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी,
5: कुछ नहीं है ना, अभी इसको बोलो कट। सपोज आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, मैं उनके घर गया था, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी, फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहा है, उस 5 मिनट बीते, 10 मिनट्स बीते, अब क्या करना है इसको चेंज करने के लिए, कितनी पावर जा रही है, स्टॉप, चेंज, किसी और चीज पर सोचते हैं, कुछ करना ही नहीं, कोई टेक्निक थोड़ी है इसके पीछे, कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है, स्टॉप, ऑब्जर्व कि ये राइट नहीं है, स्विच, चेंज करना है, इवन इफ आई हैव टू डू इट रिपीटेडली इन द बिगिनिंग, कि मैंने किया लेकिन 2 मिनट बाद फिर मुझे वही बात याद आई, फिर स्टॉप, फिर मैंने किया 5 मिनट बाद फिर वही बात याद आई, फिर स्टॉप,
4: रिटेक कट,
5: प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कितना इजी, क्योंकि अपनी इकोनॉमी, हम मैनेजमेंट पैसों की इकोनॉमी इतना करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, बहते ही जा रहा है, आज की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मन बुद्धि थक जाएगी उसकी फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति यथार्थ नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, तो परमात्मा कहते व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, मतलब पता तो चल जाता है ना कि कौन सी थॉट वेस्ट है, कौन सी थॉट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उतना पता चल गया, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो समझने के बाद कर्म में तो स्वतः ही आना चाहिए, समझ लिया क्या वेस्ट है क्या पॉजिटिव है, वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अब तो मेरी समझ में आ गया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना रह नहीं सकते हो, तो पहले ये चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है,
4: ओके,
5: मींस अपने थॉट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेस्ट चल रही है और हमें लगा कि ये राइट चल रही है, उतनी अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि उतनी पता चल जाए, इवन अगर चल रही है लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये कौन सी क्वालिटी की है, ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है, एलिवेटेड है, बहुत प्योर है, बहुत ऑर्डिनरी है, वो चेकिंग हो जानी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। कभी भी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो,
4: जैसे मैंने कहा था ये तो नेचुरल है,
5: ये तो नेचुरल है,
4: तो उसको नहीं है,
5: तो उसको श्रेष्ठ समझ लिया, मतलब राइट समझ लिया,
4: तो आई सेड ना मैं व्हाट एवर आई डिड ये सही बात है,
5: सही बात है, तो वो कौन सी स्टेज है हमारी जब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को ही राइट समझ लिया, जस्टिफाई कर लिया, तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, हंस बुद्धि स्वान जो परख सकता है,
4: सच्चे मोती में और नकली मोती,
5: हाँ, मोती में और पत्थर में कंकर में वो परख सकता है, वो कंकर कोई नहीं उठा लेगा मोती समझकर, तो परमात्मा ने कहा आपकी बुद्धि भी होली हंस बुद्धि,
4: हमको तो ऐसे बचपन में सिखाते थे ऐसे ही, पता नहीं सच है कि झूठ, बोले दूध और पानी मिक्स कर दो तो हंस सिर्फ दूध दूध दूध दूध पी लेते, पानी छोड़ देते,
5: मतलब उसकी विशेषता है ना,
4: हाँ,
5: उसका गुण क्या है
4: कि
5: मिक्सचरिटी में से भी,
4: हाँ,
5: जहाँ मिक्स्ड भी है कोई चीज उसमें से भी वो ओरिजिनल प्योरिटी वाली चीज को खींच लेता है, इतनी होली हंस बुद्धि, तो परमात्मा कहते हैं उसमें मतलब हंस में स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है।
4: ब्यूटीफुल।
5: व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम मोस्टली क्यों वेस्ट करते हैं ना एनर्जी और टाइम, क्योंकि हम रॉन्ग को राइट कहते हैं।
4: आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना पावर आ
5: रहा है, पावर आती है ना, है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ। कितनी पावरफुल लाइन है व्यर्थ लेकिन समझते क्या है, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, जो मैंने कहा वो ही राइट है।
4: राइट।
5: इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। मन की शक्ति,
4: समय की शक्ति,
5: वाणी की शक्ति सब चली जाती है। इसका कारण क्या, होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, मतलब श्रेष्ठ और व्यर्थ के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो परमात्मा कहते सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अगर कोई उल्टा है मतलब कुछ रॉन्ग भी है तो उसको और रॉन्ग नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो। लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं ये सोचो। उल्टे को उल्टा है बोलते बोलते हम खुद भी क्या हो जाते हैं,
4: उल्टे
5: ही हो जाते हैं। लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं यही सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, कंपैशन, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, अपनी गुड विशेस, एलिवेटेड फीलिंग से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपनी वेस्टफुल थिंकिंग और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा, पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, ऐसी आत्मा फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगी।
4: महाराज सिंह थैंक यू सो मच बाबा।
5: सी कि हम कभी भी रॉन्ग को ही जब तक राइट बोलेंगे तब हमारी समय, मन की एनर्जी, वाणी की एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। और होली हंस बुद्धि बन, परख कर फिर अपनी शुभ भावना से अपने भी वेस्ट को खत्म किया, सामने वाली आत्मा के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन किया, तो विजयी आत्मा बन जाएंगे।
4: एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग।
5: थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू।
5: ओम शांति।
4: थैंक यू।
6: While discerning our thoughts, behavior, and choosing our response towards situations and people, we should see the present and also the future. Our present karma of thoughts and behaviors will have a consequence in the future. If we create too many waste and negative thoughts, then our power to discern and power to decide will be weak. If the mind and intellect is stable and concentration is high, then discernment and decision will be accurate. Pure and positive thoughts are thoughts radiating from the original sanskars of the soul, thoughts of love, forgiveness, compassion, and empathy. Negative thoughts are thoughts of ego, anger, hatred, hurt. Necessary

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूं, तो और आशा करती हूं आप लोगों से कि आप हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं देने वाला दाता, यानी कि दाता बनो और भरपूरता पाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्ति मार्ग के यादगार हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार दिखाया गया है। वामन का अर्थ होता है छोटा। छोटा इस अवतार में दिखाया गया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए थे, और चूंकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है, इसलिए उनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम छोटा हो जाते हैं, और जब हम कुछ देते हैं तो बड़ा हो जाते हैं। यादगार शास्त्रों का यह कथा हमें क्या संदेश देता है कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी को कुछ दे ले नहीं, बल्कि कुछ देने वाले बने। कहा ही जाता है दाता एक और लेने वाले अनेक। भगवान के अनेक नाम है। कोई उन्हें क्या कहता है, दाता कहता है, कोई वरदाता कहता है, कोई विधाता कहता है, कोई अवघड़दानी भी कहता है। भंडारे भरपूर करने वाले, एक के बदले पदम गुणा देने वाले, उनके लिए ही कहा जाता है कि लेने वाला लेता लेता थक जाए, लेकिन देने वाले के भंडारे कभी खाली नहीं होते। और यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, अर्थात देने वाला केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले हैं। राजा हो संत हो, सब लेते हैं, सब उन्हीं से लेते हैं। भगवान का लेना भी देना ही है, अर्थात भगवान का जो लेना है वो भी देना ही है। भगवान अगर मनुष्य आत्माओं को कहते हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो वह लेना भी देना ही है, क्योंकि भगवान हमसे कखपन लेकर लखपन देते हैं, कौड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरी लेकर हमें क्या देते, शक्ति देते, कमजोरी के बदले हमें शक्ति देते हैं। कहते हैं कि बच्चे, पुरानी जो कीचड़ पट्टी है, पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुराना तन, विकारी मन, काला धन मुझे दान में दे दो, तो मैं बदले में आपको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन, अकूत धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और बदले में उन्हें क्या मिला, हाँ, उन्हें मिला महल। तो इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते हैं तो वह लेना नहीं होता है, कई गुना करके हमें पुराने के बदले नया देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मौके पर काम आना, हाँ, मौके पर काम आना भी दाता बनना है। केवल धन का देना ही दाता बनना नहीं होता है। धन के साथ साथ देने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम गुणों को भी दे सकते हैं। गुणों का दान देना भी देना है, किसी को सहयोग देना भी, उमंग उत्साह देना भी, किसी गिरे को उठाना भी देना है, किसी के बोझ को हल्का कर देना, बीमारी मदद में मदद कर देना भी देना है, पढ़ाई में मदद कर देना भी, मौके पर किसी के भी किसी भी रूप में काम आना, अर्थात दाता बनना है। तो जो खुद सदा भरपूर होगा वही तो देगा, हाँ, और जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से देगा। अगर किसी मटके में पानी नहीं है तो उसमें से पानी आ नहीं सकता, हम उसमें से पानी ले नहीं सकते। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर पानी अगर बाहर निकलता है मटका से, तभी निकलता है जब उसमें पहले से पानी हो और उसमें और भरा जाए, तो पानी अपने आप खुद ब खुद उसमें से बाहर निकलने लगता है। और जब भी हम स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं, तो यही देना, यही भरपूर हो जाने के बाद तभी हम निस्वार्थ भाव से हम सभी को कुछ दे सकते हैं। तो हम लेते हैं इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और गाते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दाता बनो और भरपूरता पाओ। तो दाता बनो और भरपूरता पाओ देना देना नहीं बल्कि लेना होता है। तो हम इसी के संदर्भ में एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक लकड़हारे की कहानी। कहानी है, एक लकड़हारा था जो बहुत ही मेहनत करता था, बहुत मेहनत किया करता था। मेहनत करके बेचारा किसी तरह से अपना गुजारा करता था। बहुत गरीब भी था, भगवान से प्रार्थना करता था लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने सोचा कि एक साधु को देखा, तो साधु को जाकर के अपना संदेश भगवान को देने के लिए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करे। साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु बड़ी छोटी है, केवल 10 साल जिंदगी के बचे हैं और तुम्हारे हिस्से में केवल 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक साथ दे दे। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। हाँ, अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया, उसने गरीबों में बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया, उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा और बाकी बांट दिया। इस प्रकार वह बांटता रहा और रोज रोज बोरियां आती रही। कुछ दिन के बाद उसे साधु जी मिले, फिर उसने सारी बात सुनाई साधु जी को। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से का भी गरीबों में बांट दिया, इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, इस कारण आयु भी बढ़ गई और तुम्हारा भी जो भी कष्ट था वो दूर हो गया और तुमको रोज अनाज भी मिलने लगा। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वही चीज हमारे पास कई गुना होकर आ जाती है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है देना देना नहीं बल्कि लेना है। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कामना रख कर करते हैं। कामना रखकर करना मतलब कि हमने ये किया, हमने ऐसा किया, इसके बदले हमें मान शान हाँ मिलनी चाहिए, अपनी महिमा करवानी चाहते हैं। तो ये देना भी कोई मतलब कामना रखकर अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें प्राप्ति नहीं बल्कि अप्राप्ति होती है। बात है कि जो भी ये अल्पकाल की प्राप्ति के लिए करते हैं वो कामना रखकर ही करते हैं, तो उसमें अल्पकाल की हमें प्राप्ति होती है। अनेक प्राप्तियों से हम क्या होता है, वंचित रह जाते हैं और प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। और एक होता है कि दाता। दाता अर्थात क्या होता है, उदारचित। दाता का मुख्य गुण है उदारचित। उसका देने का द्वार भी कभी भी बंद नहीं होता, एक सेकंड में भी देने के सिवाय वो लेना नहीं, उनको सिर्फ देना रहता है। जैसे कि मंदिर का द्वार दरवाजा सदैव खुला रहता है, ऐसे तो आजकल बंद रहता है पर मंदिर का दरवाजा नियम है खुला रहने का। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे हाँ, तो वो बातें जिनको पार करना मुश्किल लगता है सहज ही पार हो जाएंगे, क्योंकि उदारचित बनने से महान शक्ति भी की भी प्राप्ति हमें होती है। और जितना उदारचित उतना भंडारा भरता जाता है। हर सेकंड हर संकल्प में चेक करना है, हमें कुछ दिया लिया तो नहीं, लेना है भगवान पिता से, देना है सर्व को। फिर है आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या, अखंड गुण दानी। गुण भी हमारे पास होती है तो उसका भी हमें दान करना है। समय प्रमाण अब हमें करना क्या है, हमें धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मों से कर्म का दान, कैसे गुणों का दान कर देना करना है। तो आजकल सभी सुनने के बजाय देखकर करना चाहते हैं, मतलब आजकल सुनने से ज्यादा देखकर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हैं, लेकिन विशेष ध्यान क्या रखना है, हमें हर आत्मा को अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है कि यह करे तो हम करे, नहीं ऐसा नहीं देखना है। नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, हाँ वो नहीं कर रहा तो मैं कैसे करूं, ऐसा नहीं सोचना है। यह भी तो ऐसे ही हुआ ना कि जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर वन अर्जुन हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अर्जुन बनना है, तो हमें स्वयं को निमित्त मात्र होकर चलना है। और अगर हम दूसरे को देखकर करेंगे तो नंबर वन नहीं नंबर वार बन जाएंगे।
एक होता है फ्राक दिल। जो फ्राक दिल के होते हैं मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए, फ्राक दिल जो होते हैं वो मांगते नहीं कि हमें ये मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। एक दो को आगे बढ़ाने के बजाय फ्राक दिल बनो। हाँ, हमें क्या करना है, हमें एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनना है। छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, तो छोटे जब ऐसा कहते हैं तो बड़ों को क्या, हमें रिगार्ड देना ही है, हमें रिगार्ड देना चाहिए। देवी देवता का अर्थ ही है देने वाले, ठीक है। तो दाता जो होते हैं सदा रहमदिल होते हैं। मुझे देना, हाँ मुझे क्या देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन हमें मुझे देते जाना है, ठीक है। मतलब मुझे दाता बनना है, संस्कार में के परवश नहीं होना, संस्कार के भी परवश नहीं होना, आत्मा को सहयोग देना है। दाता सदा क्या होते हैं, रहमदिल होते हैं, किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आते। जो दाता होते हैं वो किसी भी आत्मा के संकल्प मात्र भी उनके रोग में नहीं आते, या ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, ऐसा नहीं बोलना है हमें। हाँ, और आगे देखते हैं, फिर हम जैसे सोचते हैं कि ज्ञान यह कहता है क्या, हम दूसरों के लिए ये सोचते हैं, लेकिन हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाते हैं तो हमें क्या करना, तो दाता का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। हाँ, उसका सहयोगी बनाना, न कि ऐसे संकल्प या बोल बोलना कि क्यों गिरा, गिरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। कर्मों का फल भोग, फल भोग रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं बोलना है, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसा भी हमें नहीं बोलना है। हमें दाता बन करके, उन्हें निमित मात्र बन के उनकी सेवा मन से, वचन से और कर्मों से करते रहनी चाहिए, और ऐसा ही हमें करना है। तो आगे फिर हम अपनी चर्चा जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए हाँ, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है दाता देने वाला। दाता किसी का समय या ऊर्जा अपने पर नहीं लगवाता। यदि लौकिक या अलौकिक जीवन में इस समस्याएं को अगर नियमित करते हैं हम या समस्याओं को बढ़ाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं और फिर नियमित आत्माओं को उसमें या बड़ों को उन समस्याओं का समाधान में समय लेते हैं तो भी लेना हो गया, वो देने वाले नहीं हो सकते क्योंकि दाता किसी का समय भी नहीं लेता, किसी की ऊर्जा भी अपने ऊपर लेना लगवाता है तो वो भी लेना हो गया, देना नहीं हुआ। वह तो केवल देता है, अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा होना चाहिए, हाँ, ना कि लेने की का। किसी का समय भी हमें नहीं लेना है। हम जीवन को इतना सच्चा बनाए, पारदर्शी बनाए कि जीवन से कोई समस्याएं, कोई भी समस्या हमारे सामने अगर आए तो वो समस्या लगे ही नहीं। अगर हम ऐसा भी आ भी जाए ऐसी समस्याएं तो हम क्या करते हैं, इसमें आत्मिक बल, नैतिक बल, आध्यात्मिक बल अपने पास जमा रखें कि उसमें स्वयं से हम निपट ले और बड़ों का समय अपने पर न लगवाए। और फिर हम कहते हैं कि समय का योगदान बड़ों को सहयोग देना है हमें, न कि लेना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान भी अगर हम किसी को देते हैं तो उससे हमें क्या होता है, हमें सम्मान मिलता है, हाँ मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान दो, मिलना चाहिए, हाँ मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता। अगर इसको भी अगर कहते हैं तो ये भी लेना हुआ, ये भी लेने की भावना हो गई, हाँ रॉयल भिखारी कहापन हो गया। ये तो जरा सा भी ये नहीं होना चाहिए, जरा भी किसी भी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वभाव में से गिरा देती है। हाँ कोई मान दे नहीं दे लेकिन मुझे देना है, ठीक है, कोई हमें मान दे ना दे लेकिन हमें क्या करना है, उसे देना है। मन में भावना तो है लेकिन ऐसे विचार नहीं है, मुझे करना ही है, सम्मान देना ही है, सम्मान देना है, सम्मान देना अर्थात किसी को मंगलास में लाकर आगे करना। हाँ अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग सारे कल्प में मान प्राप्ति का आधार है। तो क्या करना है, स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सम्मान देना ही लेना बन जाता है। और इसमें भी एक चीज और है कि राजी रहो और राजी करो। हमें राजी रहने के लिए क्या करना है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से अब क्या करना है, जब खाता भर जाएगा तो क्या होगा, तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, हाँ जमा का बल मिलता है। राजी रहो और हर एक के स्वभाव को का राज भी जान लो और राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो कि यह तो है ही नाराज, आपको कुछ नहीं करना, आप उसकी नब्ज को जान देते जाओ तो मिलता जाएगा, हाँ देने से ही मिलता जाएगा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है, कोई भी खाली न जाए। और अगर ऐसा होता है वह उस दान को संभालते हैं या नहीं वह उनकी तकदीर हुई, आप अपना कर्तव्य करते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, तब तक के लिए गाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और हम अपनी चर्चा को इसी तरह जारी रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, वह पत्थर फेंके हम रत्न दें। तो पत्थर फेंकना मतलब कोई अगर हमें दुख देता है, अर्थात पत्थर फेंके और हम उन्हें क्या दे, सुख दे, यानी कि रत्न दो। सदा हर आत्मा के प्रति हमें क्या करना है, स्नेह की, खुशी के सुनहरी पुष्पों की वर्षा करते रहो। हमें क्या करना है, वर्षा करना है, पुष्पों की वर्षा, यानी कि स्नेह की वर्षा। स्नेह की वर्षा दुश्मनों को भी दोस्त बना देगी, वह माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह पत्थर फेंके और आप रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे, रत्नों की खान के मालिक हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो वह तब मतलब वो दे तब मैं दूं, ऐसा नहीं। बुद्धि से भी यह संकल्प करना भी, यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। हाँ, इसे भी क्या कहते हैं, हाथ फैलाना। इसमें निष्काम योगी बनो, छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, समय और संकल्प के पीछे हमें नहीं, हमें अपने संकल्पों को भी बर्बाद नहीं करना है, इसके पीछे भी हमें नहीं जाना है। दान दो, वरदान दो और स्व का, तो इससे हमारा क्या हुआ, स्व का जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, आत्माओं को वायुमंडल की और क्या करना है, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं को सबकी सेवा करनी है, भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है, सब कुछ सेवा में लगाओ। श्रेष्ठ सेवा श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। हाँ, श्रेष्ठ सेवा से हमें श्रेष्ठ मेवा की प्राप्ति होगी। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता में इमर्ज करो, यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। चाहे दृष्टि से दो, चाहे प्रीति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। भक्ति में नियम होता है ना, कि जिस भी वस्तु का की कमी होती है उसकी दान देते हैं, तो उसका दान देना, दान देने से वो उस चीज की, उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति भक्ति मार्ग में भी होती है। तो उसका दान करते हैं, दान करने से स्वतः लेना ही हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, खुशी का भी ध्यान रखना है, खुशी का दान देना है। जो सदा हर्षित है वह मन वाणी और कर्म से सर्व को सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशन रूहानी जो नजर है, उसका संकल्प, उसका संपर्क, उसकी वाणी सब दुखी आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, वैसे ही आपकी हर्षित आत्मा जो होती है उसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं। देख कैसी भी आत्मा होगी ना, उसको देखकर खुशी होगी और खुशी का क्या करेगी, अनुभव करेगी। तो इसकी प्राप्ति में ही हमारी खुशी है। तो ऐसी प्राप्ति की खुशी में झूमते रहो, हमेशा झूमते रहो। तो स्वागत करते हुए आप सबों का अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ ये साथियों, आज भी हम लोग एम अक्षर वाले गाने सुनेंगे क्योंकि एम अक्षर के बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं 50s एंड 60s के। तो आज के शो में भी हम लोग आनंद उठाएंगे एम अक्षर वाले गानों का। तो जैसे कि पहला ही गाना आपके लिए ये
2: मेरे

तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर है और आपके दिल दिमाग में पहले से है और कुछ लोगों को सुनकर याद आ जाएगा और कुछ लोग सुनकर याद रखेंगे इस गीत को जो हमारे नए दोस्त हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ आराधना। इस एल्बम का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो आपको मैं अभी सुना रहा हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में ये गाना आपके लिए, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

जी हाँ साथियों, आराधना इस एल्बम का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना, मेरे सपनों की रानी कब। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा था, किशोर दा ने इस गाने को गाया था, सचिन देव बर्मन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। ये एक फिल्म बनी थी 1969 में। इस फिल्म का जो स्टोरी है वो बिल्कुल थोड़ा सा नया था उस समय। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार और मदन पुरी पर पिक्चराइज किया गया था। शक्ति सावंत का ये फिल्म था। अरुण और वंदना चुपके से शादी करते हैं। अरुण की विमान हादसे में मौत के बाद बच्चों को अनाथालय भेजने के लिए वंदना को मजबूर किया जाता है, तो ये एक कहानी इसमें बताई गई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। जी हाँ, छलिया नाम का एक फिल्म आया था 1960 में और ये राज कपूर, नूतन प्राण और शोभा समर्थ इन पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म में एक गाना है मेरे टूटे हुए दिल से, कमर जलालाबादी का लिखा, मुकेश का गाया, कल्याण जी आनंद का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। कई बार हम लोग जीवन में आनंद की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। आनंद एक बारिश की तरह है, आनंद की वर्षा भी कहते हैं। तो ये तब पा सकते हैं जब व्यक्ति के जीवन में एक अनोखी बात हो या ज्ञान हो। ऐसा बताया जाता है, एक बार जीसस क्राइस्ट एक झील के किनारे उपदेश दे रहे थे और वो बता रहे थे कि एक बार एक किसान ढेर सारे बीज लेकर अपने खेत में बोने के लिए जा रहा था। जाते समय रास्ते में कुछ बीज गिर गए, उनमें से कुछ बीज पक्षियों ने छुप लिए, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिर गए तो कुछ नमी वाली जमीन पर भी गिरे। पथरीली जमीन पर बीजों की जड़ें अधिक परिपक्व नहीं हो पाई, इसलिए वे जल्दी ही सूख गए। बाकी के बीज उपजाऊ जमीन पर गिरे तो उनकी बालियों में दाने भर आए। इतना कहने के बाद जीसस क्राइस्ट शांत हो गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने रुककर कहा कि प्रभु का संदेश देने वाला गुरु बीज बोने वाले किसान की तरह होता है। वो अपने भक्तों के मन एवं हृदय में परमात्मा का संदेश रूपी बीज बोता है, लेकिन कुछ भक्त पथरीली धरती की तरह होते हैं। ऐसे लोगों को अपने गुरु पर तुरंत विश्वास होता है और तुरंत विश्वास टूट भी जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सांसारिक चिंताओं ने वशीभूत किया होता है। कुछ भक्तों का हृदय उपजाऊ जमीन की तरह होता है। ऐसे भक्त संदेश को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं, वो स्वयं इस आनंद की वर्षा में भीगते हैं और दूसरों को भी भिगोते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। जी हाँ साथियों, ये बात कहने के पीछे रहस्य यही है कि इस दुनिया में ज्ञान चारों तरफ है, जरूरत है तो उसे अमल में लाने की, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को मिटाता है और आनंद की वर्षा करता है। तो आइए, आशा करता हूँ आपको ये मेरी बात दिल को लगी हो, तो जरूर हमें तवज्जो दें और अपना प्यार दिखाएं मैसेज के जरिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ, मेरे तुम्हारे बीच में अब तो। जी हाँ, शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा झुक गया आसमान इस एल्बम का अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ साथियों, आपने सुना झुक गया आसमान 1968 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म की कहानी थोड़ी अलग थी और लेक टंडन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। राजेंद्र कुमार, सायरा भानु, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था। एक देवदूत संजय को गलती से मारने के बाद उसकी आत्मा को उसके हम शक्ल और अपराधी तरुण के शरीर में ढालता है और उसके बाद ये बड़ा मुश्किल होता है उसे पहचानना कि ये संजय है या फिर तरुण है। तो यहाँ ये क्लाइमेक्स बताया गया था इस फिल्म में झुक गया आसमान में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन का संगीत से सजा, पूजा के फूल 1964 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का ये गाना।

0: जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो नींद भी उड़ा ले जाता है। व्यक्ति चिंता में या फिर प्यार में दोनों जगह नींद ठीक से नहीं कर पाता। जी हाँ, जो फिल्म पूजा का फूल 1964 में रिलीज हुई थी, राज नाम का एक युवक की कहानी है जो बड़ी भांति प्रेम में पड़ता है और वो त्रिकोण प्रेम में पड़ जाता है और फिर दो महिलाओं के बीच उसकी क्या हालत होती है। इस फिल्म में बताया गया है, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, अशोक कुमार और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। जी हाँ, ये गीत भी अपने आप में बहुत खास है, जैसे कि
1: मेरी

जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा बरसात 1949 में एक फिल्म आई थी, इस फिल्म का ये गाना है। और ये फिल्म जो है अपने आप में एक अनूठी कहानी को बयां करता है, शहर और गांव की लाइफस्टाइल को बताता है। शहर में लोग किस तरह से रहते हैं, गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, गांव की लड़कियां कैसी होती हैं और शहर की लड़कियां कैसी होती हैं, ये वास्तव में दिखाने की कोशिश रामानंद सागर और राज कपूर साहब ने किया था। और इस फिल्म के कलाकार थे राज कपूर, नरगिस और निम्मी और प्रेम नाथ। तो आइए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ साथियों, जब तक हमारे जीवन में हम जीवन के अंधकार को, संघर्ष को नहीं देखते हैं, तब तक सूर्य की तरह चमक नहीं सकते। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। जो गीत अभी आपने सुना वो बहुत ही प्यारा सा था, बरसात फिल्म का। अब आगे बढ़ते हैं। 1962 में एक फिल्म आई थी, बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही। इसका नाम ही अपने आप में अट्रैक्शन बना था, साहेब बीबी और गुलाम। इस फिल्म की कहानी एक अय्याश आदमी की पत्नी की कहानी बताई गई है। घर के नौकर भूतना से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। आबरा अलवी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। गुरुदत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, सप्रू और दुमाल इस फिल्म में कलाकार थे। तो वही इस फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये।

जी हाँ, हमारे जीवन में उलझन और सुलझन, ये दो चीजें चलती रहती हैं और इस बीच में हमारा नैया जो है जीवन का चलता है। उलझन ना हो तो भी जीवन में मजा नहीं आएगा, और उलझन का सुलझन ना हो तो भी मजा नहीं आता। तो जीवन हमारी जो है उलझन और सुलझन साथ साथ चलते हैं, कभी कभी कभी अलग हो जाते हैं और हम इसमें बीच में रहते हैं। तो शकील बदायी साहब का लिखा ये गाना आशा भोसले ने गाया है और हेमंत कुमार का संगीत है। तो आइए इस फिल्म का एक गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: कही न सके उलझन में।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: हो के मायूस यो शाम में ढलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज सा निकलते रहिए। क्या खूब लिखा है लिखने वालों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। और साहब बीबी और गुलाम का ये गाना आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है और भाव भी अच्छे हैं। जी हाँ, इस फिल्म में एक गरीब आदमी की कहानी बताया गया है और वो एक ऐसे महिला के प्यार में पड़ जाता है। वो महिला इससे हमेशा पैसे की मांग करती है। आर के नैयर साहब का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, सायरा बानो, संजय कुमार और जॉय मुखर्जी पर ये फिल्म बनाई गई थी। तो इसमें एक गाना है जैसे कि ये, जी हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की बात आती है, दुख या फिर मुश्किलें इतनी आ जाती हैं कि हम लोगों को सुना सुना के थक जाते हैं। फिर वो दुख कम नहीं होता है तो हम अपने आप को ही सुना देते हैं। लता मंगेशकर का गाया, उषा खन्ना का संगीत से सजा इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज के गाने बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आइए आखिरी में एक और गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। छरिया इस एल्बम से ही राज कपूर, न्यूटन प्राण और शोभा समर्थ पर पिक्चराइज किया गया था। एक और गाना है छरिया का जैसे कि ये।

तो आइए इस गाने को कमर जलालाबादी ने लिखा है, लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया है, कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत, जाते जाते आपके लिए और चंद लाइने आपके नाम, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
4: भविष्य का खाका वर्तमान में खींच लो, भविष्य का खाका वर्तमान में खींच लो और अपने भूतकाल से थोड़ा सा सीख लो. सफलता पाने का यह मंत्र अनोखा तो जरूर है लेकिन शाश्वत है. जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से केवल अपने को ही नहीं लेकिन अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है, उनको जीविका दी है, एक मार्ग दिखाया है जीवन को सही रीति जीने का. आज ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि 90.4 FM रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे साथ, हमारे बीच है चेतना सिन्हा जी, जो यशस्वी भारत की एक यशस्वी बेटी हैं. चेतना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए.
5: नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया.
4: चेतना जी, आपको जैसे पता होगा कि इस कार्यक्रम का नाम रखा गया यशस्वी भारत, तो मैं पहला सवाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भारत देश की वो नागरिक हैं जिस पे भारत देश को बहुत नाज है. भारत सरकार ने, भारत की आम जनमानस ने आपको अपने दिल में बिठाया है. आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी वो कौन सी खास बात है जो इंडिया रिकॉग्नाइज करती है? व्हाट इज दैट स्पेशल क्वालिटी?
5: सो मुझे जब ये नारी शक्ति पुरस्कार का रिकॉग्निशन मिला तो उस वक्त जिस तरीके से बात गई, यानी हर एक का जो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था उसमें मेरा चेतना काला सिन्हा, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं की, औरतों के लिए घूम घूम कर बैंक की स्थापना, महिलाओं के लिए बैंक और ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंक, ऐसा कहा गया. जब मैं वो पारितोषक ले रही थी तो मुझे ऐसा मन में महसूस हो रहा था, मैं ये अकेली, मेरे लिए पारितोषक या मेरी खासियत और उसलिए मैं नहीं ले रही, मैं ये पारितोषक सही में, मुझे तब मन से भी मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे साथ हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व मैं वहां कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं, मतलब ये बैंक तो कैसे खड़ी हो पाई. महिलाओं को बचत करनी थी और महिलाओं ने कहा कि हमें बचत करनी है, और वो गरीब महिला जो रास्ते पे अपना व्यवसाय करती है, जो अपने परिवार के साथ रास्ते पे जीती है, उसको का घर नहीं, उसको बचत क्यों करनी थी कांताबाई को? क्योंकि उसके जो, मतलब हर भारत में तो सूखे इलाके में या वैसे भी समर में तो इतना टेम्परेचर होता है, और उसको अपने परिवार के साथ वो रास्ते पे रह रही, तो उसका व्यवसाय था कि लोखंड के औजार खेती में जो बनाते हैं वो बनाना, और उसके लिए उसको लगा कि मुझे शेल्टर चाहिए, सावली चाहिए, छाया चाहिए मेरे सर पे, मेरे परिवार के, ताकि मैं अपना व्यवसाय ठीक से कर पाऊं, और इसके लिए मैं बचत करना चाहती. और फिर मुझे लगा कि बैंक अगर, और बैंक उसके खाते नहीं खोल रहे थे क्योंकि वो रोज की, मतलब ये 25 साल पहले की बात है, रोज के 3 रुपये बचाना चाहते. मुझे लगा कि हमें 3 रुपये बैंकों को छोटे लगेंगे लेकिन उसके लिए कितने अहम रखते हैं, और वो अगर इसके लिए बचत करना चाहती तो उसको मौका मिलना चाहिए. और इसलिए फिर हमने सोचा क्यों नहीं ऐसी सब महिलाओं के लिए जो ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय करती हैं उनके लिए बचत चाहिए तो बैंक खोली जाए, और इसलिए हम लोगों ने बैंक के लिए प्रस्ताव दिया। और बैंक का लाइसेंस मिलाना आसान नहीं था क्योंकि पहले रिजेक्ट हुआ, क्योंकि
6: आपसे कि पहली बार तो आपको रिजेक्ट किया रिजर्व बैंक, लेकिन उसके बाद दूसरी बार में आया, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता की लड़ाई है कि जैसे आपने कहा ना कि उसके लिए तीन रुपए नहीं, उसके लिए उस दिन का उसका प्रॉफिट है जो उसने बचाया, और वो उसके दिन का उम्मीद है उसके लिए कि ये 3 रुपए कल मेरे लिए कुछ काम में आएंगे। सो दे आर नॉट जस्ट 3 रुपीज, वो उसके लिए बहुत बड़ी आशा है। लेकिन वहीं पर एक संभ्रांत या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा व्यक्ति जिसके लिए 3 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आपको उनके साथ डील करना पड़ता है तो आप बेसिकली दो मानसिकताओं को, दो लाइवलीहुड की डिफरेंसेस को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। आप वो ब्रिज है जो दोनों जगह पे जिसका कनेक्शन है, मतलब दोनों तरफ है, लेकिन खुद जो हवा में है बेसिकली। तो ऐसे कठिन परिस्थिति को आपने कैसे संभाला? How did you face rejection and how did you bridge that gap between the two mentalities? कैसे इन दो जगत को जहां पर एक एक रुपए की वैल्यू अलग है उसको आपने एक करा है?
5: तो जब ये नकारा गया, तो सब बैंकों ने नकारा कांता भाई का अकाउंट खोलना, तो उस वक्त हमारे मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये कोई कर्जा नहीं मांग रही है
6: जी।
5: ये कोई सरकार की स्कीम का पैसा नहीं मांग रही है। इसके लिए जैसा आपने बताया कि उसकी तो रोज की 3 रुपये की जो कमाई है वो कमाई का नियोजन करना चाहती है कि वो बचा के वो 7-8 शीट खरीदना चाहती है शेल्टर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को, मतलब जैसे वो बैंकर मना कर रहे थे, पर वो बैंकर भी अपने सैलरी में से कुछ तो बचत करते होंगे ना, और वो बचत करके ही वो हाउसिंग लोन लेंगे या कुछ लेंगे, जबकि ये तो सैलरी में से बचत करना चाहती थी और वो फिर बचत करके अपनी जिंदगी जहां है उससे थोड़ा सुधार लाना चाहती। तो ये जो बैंकरों ने मना किया उनको ये नहीं अंदाजा आया कि वो तो कुछ मांग नहीं रही है, पैसा नहीं मांग रही, वो तो सिर्फ एक मौका मांग रही है। अब उसको मौका देने का सही तो वो बैंक का काम है ना। बैंक जब कोई खुलती है तो ये इन लोगों के लिए है और इन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा तो है नहीं। पर हाँ, वो बैंक के लिए अफोर्डेबल क्लाइंट नहीं है। तो मुझे ये भी लगा कि बैंकरों को लगता है कि अफोर्डेबल क्लाइंट नहीं है, हम लोग ये ऐसे लोगों से बैंकिंग करके हमारा बैंकिंग का खर्चा बढ़ेगा मुनाफे के बतौर, पर ऐसा होता नहीं। मतलब आज हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग भी आपके ग्राहक हो लेकिन वो बैंक बहुत मुनाफा इसीलिए कमाती, ऐसा नहीं। हर चीज ढंग से चलाई जाए तो हो। तो ये तो मानसिकता के बारे में जो आपने सवाल किया उस पे मैं एड्रेस कर रही हूँ। पर मुझे दूसरी जगह ये भी लगा कि ठीक है, ये बैंकर ने मना कर दिया, पर एक तो बात जरूर है कि अगर हम दिखाएं बैंक खड़ी करके और ये भी दिखाएं कि गरीब महिलाओं की बैंक फेल होगी, ये जरूरी नहीं है ना। ये दिखाना बहुत जरूरी था उस वक्त के अनुभव के बाद, ताकि ये प्रूफ हो कि गरीब लोग भी बैंकेबल हैं। मतलब मैं उस वक्त हमेशा ये बहुत कहती थी कि ये गलत फहमी है कि गरीब लोग बैंकेबल नहीं है, उनके साथ बैंकिंग करके हमको नुकसान होगा। और ये प्रूव करने का हमें एक अच्छा मौका मिला था कि क्यों नहीं हम ही अपनी महिला बैंक बनाए और वो प्रूव करके दिखाए। तो ये दोनों मानसिकता को समझने के लिए, लाने के लिए कहा, तो ये मॉडल सक्सेसफुल करके दिखाना जरूरी था। और इसलिए फिर हमें आया कि हम क्यों नहीं मानवेशी महिला बैंक, मतलब महिलाओं की बैंक की स्थापना करें, ये आइडिया आया और हमने रिजर्व बैंक पे प्रपोजल।
6: श्रद्धा साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मानदेशी महिला बैंक जो चेतना जी अभी जिक्र कर रही हैं, वो देश का पहला ऐसा बैंक है जो गरीब महिलाओं के द्वारा गरीब महिलाओं के लिए बनाया गया बैंक है ना चेतना?
5: ग्रामीण,
6: ग्रामीण, यस। बेसिकली कि लोग जो ये समझते हैं कि ग्रामीण महिलाएं शायद उतनी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगी जब तक उनको कोई सपोर्ट ना करे, ये गलत फहमी को तोड़ा है चेतना जी ने, और उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। चेतना जी, आपने यहाँ पर एक शब्द यूज किया था, अवसर, राइट? इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी। अवसर क्या है बेसिकली, कैसे पहचाने कि कौन सा अवसर राइट है? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दुख में है या तड़प रहा है उसको हर चीज ही अवसर लगता है, लेकिन कई बार वो गलत भी हो सकता है उसके लिए। तो अवसर को सही तरीके से पहचानना, उसको नापना, हाउ टू मेजर इट, कैसे कर सकता है कोई?
5: तो सबसे मतलब ये जो मैंने अवसर की बात की, ये बचत से रिलेटेड की ना, मतलब आप कैसे रहता है कि ये जो महिलाएं थी वो क्या बोल रही थी कि हमें बचत करनी है, और बचत करने के हमको मौके मिलने चाहिए क्योंकि मिल नहीं रहे हैं गरीबों को। एक है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हो सकती है और सपने भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैं ऐसा भी सपना देख सकती हूँ कि मेरा रास्ते पे बिजनेस है लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए, मैं देखती हूँ दूसरों को गाड़ी में देखते हुए, और वो भी मैं अपने सपने को अवसर में बदलना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरे अवसर जो रहेंगे वो मेरी जो रोजमर्रा की नीड है उससे जुड़े हुए अवसर रहेंगे। मतलब मैं मेरा व्यवसाय करती हूँ सब्जी बेचने का, तो मेरे लिए अवसर की बात ये रहेगी कि ठीक है आज मेरे पास मैं 5 सब्जियां बेचती हूँ, पर इसके साथ और भी कुछ जुड़ जाए 3-4 चीजें बेचने के लिए, वो अवसर हो सकता है। मैं जब जहाँ रहती हूँ वहां मेरे पास मेरी कमाई बहुत नहीं है, पर मुझे अपने बच्चों को सिखाना जरूर है, स्कूल में भेजना है, उनको ढंग के कपड़े खरीदने हैं, तो ये भी एक अवसर मेरे लिए हो सकता है कि जो ये कुछ मूलभूत चीजें रहती हैं, कि जो मूलभूत चीजें पाने के जो अवसर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अवसर बहुत रहते हैं पर जो एक बेसिक फंडामेंटल नीड्स रहती हैं इंसान, यानी मुझे रोटी कपड़ा और मकान मिले और उस तरीके से एक डिग्निटी से जिंदा रहने का मौका मिले, उसको मैं समझूंगी कि वो जो अवसर है वो अवसर। वैसे तो बहुत सारा हम सपने भी देख सकते हैं और अवसरों की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत है कि इंसान को सम्मान के साथ जीने की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो मिलना बहुत जरूरी है, और ऐसे अवसरों के लिए हर कोई को मौका मिलना चाहिए।
6: थैंक यू सो मच चेतना जी, इतना आपने बखूबी ये चीज बताया कि रोटी कपड़ा मकान ये मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन सम्मान भी एक मूलभूत आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति को, आज रोटी कपड़ा मकान कईयों के पास है लेकिन घर घर में झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रिलेशंस में एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्थूल रूप से अगर किसी का जो भी नीड्स है, जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए तो वो सुखी हो सकता है। सम्मान, डिग्निटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और कहीं ना कहीं हमने हमारे भोले भाले गांव के भाई बहनों को वो सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करते हैं, और आपके प्रयास ने उनको विश्व मंच पर लाया। लेकिन आपने एक और शब्द यूज किया था कि सपने बहुत हो सकते हैं, तो जब आप एजुकेशन में थी, जब आप पढ़ रही थी और आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स की स्टडी की, आपने भी इकोनॉमिक्स की स्टडी की, हो सकता है आपने उस समय कई सपने देखे होंगे, तो आपको लगता है कि आपके सपने कुछ और थे और इस मुहिम से जुड़ करके आपके सपने कुछ और हो गए? व्हाट वाज द जर्नी लाइक?
5: जरूर, एक तो ना मैं थोड़ा ये मेरे सपने की बात करूंगी ना, तो कुछ मुझे थोड़ी यादें भी आ रही हैं, वो भी मैं कहना चाहूंगी। कैसा रहता है कि हम लोग चार, मतलब मेरे घर में हम लोग 4 बहने और 2 भाई, और मेरे दादा कच्छ से मुंबई आए और उन्होंने मुंबई में दुकान, और मेरे पिताजी भी मुंबई में, उनकी पढ़ाई हुई 10वीं तक, 10वीं पास, पर उनको अपने पिताजी को दुकान में, दुकान बड़ा था पर बहुत लोग लगते थे तो काम में टाइम देना पड़ रहा था। लेकिन मेरे पिताजी का ये बहुत था कि मेरी बेटियों, मुझे पहले, मतलब पहले हम लोग 3 बहने थी लेकिन मुझे पढ़ाना ही है, और मेरी तो सब बहने डॉक्टर है सही, तो और मेरा पहले से था कि मुझे साइंस नहीं जान लेना है, मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, ये मेरे दिमाग में पहला। और उसके साथ साथ मैंने उस वक्त, सही आपने बताया कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने ये देखा, सोच रही थी मैं कि मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये विषय पहले से ही। उसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक बहुत गहन बात बैठी हुई और वो मैं आज बहुत, मैंने कभी शेयर नहीं की, आज ऐसे मुझे याद आ गई कि मैं जब छोटी थी तो हम लोग कच्छ में जाते थे मुंबई से छुट्टियों, और हम लोग मतलब हर साल छुट्टी में हमारे घर में कल्चर था कि अपने गांव जाना है, जैसे आप कहते हो ना कि आपका अपना देश है। और भाषा में, बोली भाषा में कैसे कहते हैं कि छुट्टी में कहाँ जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, तो क्योंकि अपने गांव जाना है यानी अपना वो देश ही है ना। तो मैं हमारे कच्छ के बहुत छोटे मांडवी तालुका में फरारी करके छोटा गांव है, वहां जा रहा, वहां दिन में एक ही बस आती थी और बहुत ही छोटा रिमोट गांव, पर वहां मैं देखती थी कि मेरी दादी, वो खुद स्कूल में नहीं गई थी लेकिन उसने अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, मेरी दादा की कुछ जमीन होगी थोड़ी तो वहां स्कूल बांधो, इसके लिए उन्होंने जमीन दे दी थी कि वहां बच्चियों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल बांधो, मैं अपनी जमीन दे देती। तो मैं हमेशा गांव में जाती थी तो मुझे बहुत अभिमान लगता था कि मेरी दादी ने ये जमीन दी है, और थोड़ा ओनरशिप भी लगती थी कि जाके देखना चाहिए कि लड़कियां कितनी आ रही हैं। और मैं बहुत छोटी थी, मतलब मुझे लगता है मैं पांचवी छठी कक्षा में रहूंगी, और वहां भी नीचे ही बैठने का रहता है, उस वक्त तो बेंचेस भी नहीं थे, तो फिर मैं दादी को बोलती थी कि हम लोग बेंच नहीं कर सकते, हम चटाई तो कर लगा सकते हैं ना, बच्चियां एकदम जमीन पे बैठ के पढ़ती हैं, वो तो अच्छा नहीं लगता है, स्कूल जैसा थोड़ा तो लगना चाहिए ना, हम लोग तो बॉम्बे से आते थे। तो वो मेरे दिमाग में कहा तो बहुत बैठ गया था मेरी दादी के बारे में। और फिर हम लोग, मेरी दादी को एकदम ऐसे हाथ से चिपकना, गले मिलना कि कितना तुमने उन बच्चियों को देख के कितना अच्छा लगा, तो वो कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बैठ गया होगा। मुझे पढ़ाई करनी थी और मेरा ये भी तय था कि मुझे प्रोफेशनल, मतलब घर में तो कभी नहीं बैठना है, ये मेरे पिताजी ने हम लोगों के मन में पहले से डाला था कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं कि कोई अच्छा लड़का आपको ढूंढे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैर पे खड़े रहे, इसलिए ये हम लोगों के दिमाग में पहले से था। लेकिन मैंने फिर भी बैंक निकालने का नहीं सोचा था, मैं सोच रही थी मैं बॉम्बे में लेक्चररशिप करूंगी, और मैंने की भी एक साल, उसके बाद मैंने छोड़ा सही, तो मैं फिर जेपी आंदोलन से जुड़ी।
6: ना खूबसूरत ये किस्सा आपने हमारे साथ शेयर किया, आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये मेरे लिए वरदान था आपकी ये स्टोरी सुनना, और इससे मुझे एक और चीज ये सीखने को और समझने को मिली कि बचपन जो है वो कई चीजों का डिसीजन बचपन में ही बन जाता है, भले वो पता हमें बाद में चलती है लेकिन दिखने लगता है वो धीरे धीरे बचपन से। और कैसे फरादी जैसे एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बेटी पूरे भारत देश को, पूरे विश्व के नक्शे पे ला सकती है, ये अपने आप में एक बहुत अनोखा स्टोरी है, एक बहुत अच्छा किस्सा है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को ये सुनकर के अपने अंदर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। बाकी इसमें मैं चेतना जी आपसे बोलना चाहूंगा कि आपकी महान दादी का आप नाम जरूर ले ताकि आज हम उनको भी याद करें।
5: हाँ, मेरी दादी का नाम कुरबाई गाला।
6: कुरबाई गाला जी को आज आप पे बहुत नाज है जैसे हम सबको है, और जैसे आपने कहा ना देश, वो वर्ड में एक मिठास है, उस शब्द में एक अपनापन है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने देश के हर कोने में पांव रखा है, दुनिया में आपने ट्रैवल किया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्या लगता है कि भारत में कौन सी वो बात है जो भारत को भारत बनाती है?
5: सही, मतलब ये वैसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सारी बातें मैं कह सकती हूँ, यानी भारत की जो विशिष्टताएं या विविधताएं कितनी सारी जगह पे कही गई है, पर मैं कुछ उदाहरण के साथ कि मैं पूरे भारत में घूमी तब कि जब मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ी, और उसके बाद मतलब इमरजेंसी के खिलाफ वो था, वो जरूरी और जनता सरकार आ भी चुकी थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण और बहुत सारे गांधीयन नेता जैसे दादा धर्माधिकारी, ये सब बोल रहे थे कि भारत के गांव को बदलना जरूरी है और इसके लिए तरुणों को आना चाहिए। और मैं यूनिवर्सिटी में थी तब जेपी जयप्रकाश नारायण से मिली और उन्होंने जब ये बात की तो मैं बहुत प्रेरित हो गई और फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं हम, मैं और ट्रेवल भी करने लगी पूरे भारत और गांव गांव में घूमने लगी और सब जगह, मतलब मेरी उम्र तब करीबन 21-22 की होगी और तब मैं लगभग पूरा भारत घूमी, मतलब उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, नॉर्थ पूरा नॉर्थ और उसी के साथ साथ पूरा साउथ कन्याकुमारी तक, क्योंकि पूरे तरुणों की आंदोलन रहता था ना तो मीटिंग्स हर जगह रहती थी। तो घूमते वक्त ना कुछ कुछ बातें एकदम मुझे अभी भी याद है। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि मैं ऐसे प्रवास करती थी तो हमारी एक बार मीटिंग झारखंड में, अभी झारखंड है उस वक्त तो बिहार में ही था, संथाली इलाके में हम लोगों की मीटिंग। अब ये संथाली इलाके में मैं जब गई तो कितना लंबा सफर, मतलब पहले हम लोग जमशेदपुर उतरे, जमशेदपुर ट्रेन में से उतरने के बाद हम लोग बस में गए और उसके बाद वो गांव जाने के लिए हमको 15 किलोमीटर चलना, वहां गए आदिवासी इलाके और वहां हम लोग गए तो स्वाभाविक है 15 किलोमीटर चढ़ के भूख बहुत डर लगती है, तो उन्होंने हमें चाय दी। मेरे लिए वो चाय भी अलग थी, मतलब बिना दूध की चाय, पहली बार मतलब मैं बिना दूध की चाय और उसमें बड़ा तमालपत्र का पत्ता डाला हुआ था, तो वो जो चाय की जो सुगंध आ रही थी जिसको फ्रेग्रेंस कहते हैं, वो पीते वक्त इतना अच्छा लग रहा था और हमको आंगन में बिठाया था। संथाली आदिवासियों के घर इतने सुंदर रहते हैं, मिट्टी से ही बने हुए, लेकिन लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और काली, वो तीनों के ऐसे पट्टे उन्होंने ऐसे, और इतना महीन काम और इतना सफाई से किया गया काम था और बीच में तुलसी थी, अभी भी मुझे वो याद है। और मुझे मन में लगा कि हम लोगों को लगता है बॉम्बे में जीने वालों को कि हम लोग सीमेंट मतलब अच्छे बंगले भी बनाते हैं, पर वहां जिस तरीके से मुझे आनंद अनुभव हुआ और एक शांति, आनंद और शांति दोनों मिलना इतना आसान नहीं रहता है, कभी कभी आनंद मिलता है अच्छा लगता है पर मन की शांति भी मिलना उसी वक्त ये नहीं होता है, वहां मुझे ये महसूस हुआ। और फिर मैंने कहा कि आप लोग ये कैसे बनाते हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग हाथ से करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब जब आप दूसरी बार ऐसे इसको लिपोगे तो मुझे जरूर कहना, मैं तो 15 दिन रहने वाली थी वहां और उन्होंने मुझे बुलाया भी और उनके साथ लिपने का काम करते वक्त मुझे अंदाजा आया कि ये कला है और वो कला इतनी आसानी से, मतलब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ तो ये लोग तो मुझे ये कला सिखा सकते। तो मैं जब भारत देश की बात करती हूँ तो मैंने ये छोटा सा संथाल परगना का इलाके का आपको उदाहरण दिया ना, ऐसी कितनी सारी जगहें हैं, मतलब आज मैंने जो साड़ी पहनी हुई है ये ऐसे इंसिडेंटली हुआ है कि ये हैंड वीव्ड है और उस पे पाटिक डिजाइन है, हाँ ये कोई कारखाने में बनी हुई साड़ी नहीं, ये हमारे कच्छ की महिलाएं जो पाटिक प्रिंट करती हैं वो है और ये बाटिक की साड़ी, तो ये जो कला है ये मैं पहनी हुई हूँ, इसके लिए कोई महिलाओं ने कोई टेक्सटाइल का कोर्स नहीं किया है फिर भी इतना सुंदर बना सकते हैं। तो ये जब ऐसे अनुभव जब हम लोगों में, इस देश के अलग अलग प्रांत में जाओ, अलग अलग विविध समूहों में जाओ और ये सब जब दिखता है तो लगता है कि ज्ञान है, कला है, एक अलग किस्म का माहौल है जिसमें शांति मिलती है, ये जो सब इस देश की संस्कृति या लोगों से, खास करके मैं लोग बोलूंगी कि लोगों में जो इतनी विविधताएं हैं और इतने मिट्टी से जुड़े हुए हैं कि वो जो मिलता है ना वो मुझे लगता है कि भारत देश की विशेषता, मुझे लगता वो कहां यूनिवर्सिटी में ग्लोबल जगह पे या कोई बहुत बड़े बड़े रहते हैं वहां नहीं मिलती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि ये जो सब कुछ जो कला आती है उसमें एक बहुत बड़ा भाग, मतलब मैंने जहां जहां जिन लोगों के साथ बैठी हूँ ये बाटिक बनाने वाली महिला हो या फिर वो उस

0: लोग जो घर बनाते हो तो एक बड़ी बात रहती है उनके साथ बैठ के, और वो ये रहती है कि मिट्टी से जुड़ा हुआ रहना लेकिन उसी मिट्टी से भी प्यार करना और लोगों से भी प्यार।
1: बिल्कुल,
0: तो ये मुझे विशेषता लगती है अपने देश की।
1: मैं समझता हूँ आज हमारे श्रोता साथियों को भारत एक नए रंग में देखने को मिला, चेतना जी के रंग में।
2: चेतना जी, आपसे बात करते हुए पता ही नहीं चला कब समय निकल गया, और घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम इस प्रोग्राम को आज यहीं पर रोकें, लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को आपसे सुन करके बहुत प्रेरणा मिली है और भी मिलेगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि दोबारा आप हमसे जरूर जुड़े हमारे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यशस्वी भारत प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए।
3: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्ते मनु।
0: पुराना स्तंभ जी, पता है आज ना एक ऐसी घटना हुई जो मुझे बार बार याद आ रही है।
1: ऐसा क्या हुआ आज?
0: आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो रोड पर एक एक्सीडेंट होते देखा। एक कार किनारे पे खड़ी थी, आगे वाली सीट से किसी ने दरवाजा खोला उतरने के लिए, और उतने में एक बाइक तेजी से आ रही थी। वो उस खुले दरवाजे से टकराई और उस बाइक पे सवार जो लड़का था वो बहुत बुरी तरह से गिर गया। हम सब तो बहुत डर गए थे, पर एक बात अच्छी हुई, उसने हेलमेट पहना था, वरना न जाने क्या होता।
1: ओ, हाँ, रोड पे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी गलती न होते हुए भी चोट लगने का डर होता है। सुरक्षा रखना हमेशा ही अच्छा है।
0: वैसे पुराना स्तंभ जी, हेलमेट तो हम लड़कियां भी नहीं पहनते हैं, वो बाल खराब हो जाते हैं ना।
1: अब तो समझ आया ना कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है।
0: हाँ, अब ये गलती कभी नहीं होगी। न स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, जिंदगी जरूरी है स्पीड नहीं।
1: और ध्यान तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति को भी रखना चाहिए। अगर गाड़ी रोड के किनारे खड़ी है तो गेट आगे पीछे देखकर ही फिर खोलना चाहिए।
0: अच्छा, आज आप किसके बारे में बताने वाले हैं मुझे?
1: आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की कहानी।
0: ये डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी कौन है?
1: ठहरो, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे के पास कल्याण में हुआ था।
0: अच्छा।
1: वे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी।
0: अच्छा, यानी पहली महिला डॉक्टर।
1: बिल्कुल, जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, उस दौर में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना उनके लिए एक मिसाल थी।
0: बिल्कुल।
1: आनंदी गोपाल जोशी का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सन 1886 में अपने सपने को साकार रूप दिया। जब उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था तो उनकी समाज में बड़ी आलोचना हुई कि एक विवाहित हिंदू स्त्री विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे। लेकिन आनंदी बाई एक दृढ़ निश्चयी महिला थी और उन्होंने आलोचनाओं की तनिक भी परवाह नहीं की। यही वजह थी कि उन्होंने पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव हासिल किया। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे से कुछ दूरी पर कल्याण में हुआ था।
0: अच्छा।
1: उनके माता पिता ने इनका नाम यमुना रखा। उनका परिवार एक रूढ़िवादी मराठी परिवार था जो केवल संस्कृत पढ़ना जानता था।
0: अच्छा।
1: उनके पिता जमींदार थे। ब्रिटिश शासकों द्वारा महाराष्ट्र में जमींदारी प्रथा समाप्त किए जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई। वे किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे ही परिवार में जन्मी आनंदी गोपाल उर्फ यमुना का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही उनसे 20 वर्ष बड़े एक विधुर से कर दिया गया था। हिंदू समाज के रिवाज के अनुसार विवाह के बाद उनका नाम यमुना से बदलकर आनंदी रख दिया गया।
0: अच्छा।
1: और वे आनंदी गोपाल जोशी नाम से जानी जाने लगी। आनंदी गोपाल जोशी उस वक्त मात्र 14 वर्ष की थी जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अच्छी चिकित्सा के अभाव में 10 दिनों में ही उनके इस बेटे का देहांत हो गया।
0: ओनो।
1: इस घटना से उन्हें बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो भीतर ही भीतर टूट सी गई। उनके पति गोपाल राव एक प्रगतिशील विचारक थे और महिला शिक्षा का समर्थन भी करते थे।
0: अच्छा।
1: आनंदी गोपाल जोशी ने कुछ दिनों बाद अपने आप को संभाला और खुद एक डॉक्टर बनने का निश्चय लिया।
0: अरे वाह।
1: वो चिकित्सा के अभाव में असमय होने वाली मौतों को रोकने का प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त भारत में एलोपैथी डॉक्टरी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ता था।
0: अच्छा, ऐसा होता था।
1: आनंदी गोपाल जोशी द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से परिजन और आस पड़ोस में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई। उनकी काफी आलोचना भी की गई।
0: फिर
1: समाज को यह कतई गवारा नहीं था कि एक विवाहित हिंदू महिला विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वहां जाकर दोनों पति पत्नी अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लेंगे।
0: अच्छा।
1: जब यह बात आनंदी को पता चली तो उन्होंने सिरमपुर कॉलेज के हॉल में लोगों को जमा करके ये ऐलान किया।
0: क्या?
1: कि मैं केवल डॉक्टरी की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मेरा इरादा न तो धर्म बदलने का है और न वहाँ नौकरी करने का। मेरा मकसद भारत में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करने का है, क्योंकि भारत में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके अभाव में असमय ही बहुत सी महिलाओं और बच्चों की मौत हो जाती है। आनंदी गोपाल जोशी के भाषण का रूढ़िवादी लोगों पर व्यापक असर हुआ और पूरे देश से उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मदद देने के लिए पेशकश आने लगी।
0: अरे वाह।
1: आनंदी गोपाल जोशी के इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के बाद पूरे भारत ने उन्हें सहायता प्रदान की। यहाँ तक कि वायसराय ने भी उन्हें 200 रुपए की सहायता राशि भेजी। उन्होंने अपने सोने के सभी आभूषण बेच दिए और कुछ यूरोपियन महिलाओं के साथ कोलकाता से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई।
0: अच्छा।
1: जहाँ जून 1883 में उनकी मुलाकात मिसेज कारपेंटर से हुई।
0: कमाल है, उस समय महिलाओं की स्थिति विकट थी, परंतु कितनी निर्भीक थी डॉक्टर आनंदी जोशी।

0: लोकांमधील प्रसूती शास्त्र। खरच त्यातूनच जाज्वल्य असा हिंदू धर्माचा, हिंदू संस्कृतीचा अभिमान प्रकटतो, नाही का? माहितीये का, त्यांच्या पदवीदान समारंभाला पंडिता रमाबाई आणि आनंदीचे पती गोपाळराव स्वतः उपस्थित होते। इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष व्हिक्टोरिया राणीकडून आनंदीबाईंचे खास अभिनंदन झाले। अशी ही भारतातील पहिली महिला डॉक्टर, जिनं चिकाटी, जिद्द आणि दृढ निश्चय या त्रिसूत्रीच्या आधारावरच आपलं स्वप्न सत्यात उतरवलं। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आयुष्याची महत्वाची वर्ष काढल्यामुळे दुर्दैवाने क्षयरोगाने त्यांच्या शरीरात घर केलं।
1: एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ मनु और मेरे साथ दोस्तों आप सुन रहे थे कहानी डॉक्टर जोशी जी के बारे में। तो कैसा लगा आपको? उतना ही गर्व महसूस हुआ ना जितना मुझे हुआ। सच में मिसाल हैं डॉक्टर आनंदी जोशी हम सभी के लिए, महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी। आज जो चीज मैंने डॉक्टर आनंदी जोशी की कहानी से सीखी वो ये थी कि समाज अगर हमारे खिलाफ है या कुछ लोग हमारे खिलाफ है तो हमें उनके खिलाफ होने की जरूरत नहीं है अपना कार्य पूरा करने के लिए, बल्कि समझदारी से हर चीज को बैलेंस करना है, जैसा कि उन्होंने किया। पढ़ाई को, अपने घर को, समाज को, हर चीज को बैलेंस किया उन्होंने। ना अपने वैल्यूज और एथिक्स छोड़े, ना अपने सपनों को छोड़ा। कमाल का है ना ये बैलेंस। कई बार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम रिबेलियस हो जाते हैं, किसी की नहीं सुनना, ना समाज भी ऐसा है, मम्मी पापा भी ऐसे हैं, सभी लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, इस प्रकार की थॉट्स हमारे मन में आती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आनंदी जोशी की कहानी से हम कुछ सीखें तो क्या कमाल का बैलेंस रख सकते हैं हम सब भी, कि मम्मी पापा को भी सैटिस्फाई करें, खुश करें, समाज की मर्यादाओं की भी रिस्पेक्ट करें और अपने सपनों को भी बरकरार रखें। बस ये रास्ता हमें निकालना है कि कैसे हम ये कर सकते हैं, किसी का अनादर भी ना हो और अपने सपनों की रिस्पेक्ट भी बनी रहे। ये दोनों का बैलेंस हमें सीखना है दोस्तों। कभी उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन रास्ता निकालना है। क्रिएटिविटी क्यों ना, जो क्रिएटिविटी हम अपनी ड्राइंग में, डांस में, आर्ट में यूज करते हैं वही जिंदगी में यूज की जाए और जिंदगी में भी क्रिएटिव रास्ते निकाले जाए हर चीज को टैकल करने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना लाइफ, क्रिएटिव वेज टू लिव लाइफ। अच्छा दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे विदाई, फिर मिलेंगे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी,
2: लो लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे जो आज हंसे।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: उजाले का सफर, लेखिका सुधा पुरी। पात्र परिचय यश, पंकज, सैंडी, दृष्टि, रवि, विनोद, वेदांत, आकाश, उन्नति। जब से बासु सर ने हमारी आर्ट क्लास लेना शुरू किया है, मेरी तो लिखाई भी सुंदर हो गई है।
2: वो तो होगी ही, लिखाई भी तो एक प्रकार के आर्ट की कला है।
3: कैलीग्राफी का नाम सुना है?
4: हाँ, आर्टिस्टिक तरीके से लिखना।
5: बस तो वही हुआ ना, अगर हम अपने हर एक अक्षर को सुंदर तरीके से लिखें।
6: जैसे मेरी मम्मी कहती है, बना बना के ऐसे लगे पन्ने पे मोती जड़े हो।
7: मेरी मम्मी भी कहती है, बना बना के लिख, ये तो सुलेख नहीं कुलेख कर रहा है।
1: ये कुलेख कोई हिंदी का शब्द है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शानदार लिखाई देखकर कहा है?
8: आज बहुत मस्ती में हो, काम कब शुरू करोगे? आओ बच्चों, इधर आ जाओ, यहाँ पंखे की हवा अच्छे से लगेगी।
9: मैं आ रहा हूँ।
8: शुक्र है, आजकल बिजली जरा कम जा रही है।
4: हाँ, धीरे बोलो सर, कहीं नजर ना लग जाए।
5: नजर से क्या डरना, कल अखबार नहीं पढ़ा था?
1: तुम अखबार पढ़ते हो
5: रोज? हाँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ। हमारे घर हिंदी का आता है, आराम रहता है पढ़ने में।
6: पर कल का ही क्यों पूछ रहे हो, क्या खास बात थी?
5: सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग का एक प्रस्ताव भेजा है उन डिस्कम्स को दंडित करने के लिए जो दिन में कई बार लोड शेडिंग करते हैं।
10: वेरी गुड।
3: अरे यही नहीं, दूरदर्शन के समाचार चैनल पर भी एक कार्यक्रम में बताया गया था, 2019 तक प्रत्येक घर में 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है।
4: सुना है हमारे प्रधानमंत्री तो बिजली की बचत को देश सेवा मानते हैं और फिजूल में बिजली जाया करने के सख्त खिलाफ है।
11: बात सुनो तो, इसमें गलत क्या है? याद नहीं किस तरह हमारे बुजुर्ग जरा सी भी बिना बात पे पंखा या लाइट खुली रह जाए तो कितना गुस्सा करते थे? बल्कि हमें कहा जाता था, सब एक ही जगह बैठकर अपना अपना काम करो ताकि एक ही पंखा चले।
3: दीदी, ऐसे तो साथ साथ काम करने में मजा भी आता है ना?
11: दिल लगा रहता है सबका, प्यार बढ़ता है, हर उम्र का व्यक्ति एक साथ बैठता तो सहिष्णुता बढ़ती है।
1: मेरी मम्मी तो दिन में लाइट भी नहीं चलाने देती, कहती है जब तक सूर्य की प्राकृतिक रोशनी आ रही है तब तक घर की लाइट नहीं चलानी।
12: बिल्कुल ठीक तो कह रही है, सौर शक्ति का सही प्रयोग।
13: हमारे घर में तो सौर्य कुकर भी है।
12: वाह, फिर तो गैस की बहुत बचत हो जाती होगी।
13: सबसे अच्छी उसमें दाल बनती है जो काढ़ काढ़ के बनाई जाती है।
3: तो खीर, साग, गाजर का हलवा सभी कमाल के बनते होंगे।
13: पर कितने ही तरीकों से हम बिजली वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो स्कूल के हॉल में या लाइब्रेरी में भी देखो, जब एक जगह दो बच्चे बैठे हैं तो पूरे हॉल की लाइट जली होती है।
3: मैं तो जाकर बंद कर देता हूँ हमेशा एक्स्ट्रा लाइट या पंखा।
4: मैं तो अपनी क्लास का इस बात का मॉनिटर भी हूँ, पंखे लाइट बंद करने का, ब्लैक बोर्ड हर समय साफ रखने का।
6: मैं भी इंचार्ज हूँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सेल, अलमारियाँ और पंखे लाइट को समय पर बंद करने का।
5: मेरे दादा बड़े स्ट्रिक्ट थे, और आजकल तो कोई कमरे में हो ना हो बस एसी चलता रहता है।
6: अरे कई लोग तो सारा सारा दिन जो यूं ही टीवी, रेडियो और दिन में लाइट भी जलाए रखते हैं।
7: हाँ, ये तो गलत है भाई।
8: हाँ हाँ, तुम्हारी इन बातों से तो मेरा दिल कर रहा है कि सारे घर का चक्कर लगा के देखूं कोई पंखा लाइट फालतू तो नहीं चल रहा।
1: और क्या, अरे छोटी छोटी बातों में कितनी लाइट की बचत हो सकती है।
13: हमारी सामाजिक अध्ययन की किताब में बिजली बचाने के कई तरीके लिखे हुए हैं। बताऊं?
3: हाँ हाँ बताओ।
13: अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पावर एक्सटेंशन कॉर्ड से जुड़कर इस्तेमाल में लाएं।
4: अच्छा ये तो मुझे भी पता है। रात को सोते समय उसे बंद करके ही सोएं, नहीं तो कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर बिजली के बिल को बढ़ा देंगे।
3: हाँ ये मैंने भी पढ़ा था, बिजली बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक सामान्य बल्ब की जगह पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का इस्तेमाल है।
4: पता है CFL बल्ब 80% कम बिजली का इस्तेमाल करता है, 10 से 15 गुना ज्यादा भी चल सकता है।
5: एक तरीका ये भी है कि आप पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने वाटर हीटर या हीटर का तापमान 48 डिग्री पर ही सेट करके रखें।
13: और फ्रिज को खाली न छोड़ें, फ्रिज को नॉर्मल मोड पर ही चलाएं।
3: अगली बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालें तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि वॉशिंग मशीन की क्षमता के हिसाब से ही उसमें कपड़े हों, यानी कम कपड़े धोने के बजाय इकट्ठी धुलाई करें।
4: बत्ती जलती हुई कभी न छोड़ें।
6: या जब कभी कमरे से बाहर जाए तो पंखे और लाइट का स्विच बंद करके ही निकले।
7: कई लोग रात को लाइट जला के सोते हैं। रात को सोते समय ज्यादा लाइट बंद कर दें, इससे काफी बचत होगी।
5: वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बातें हैं ये सब।
11: उस दिन अखबार में आया था ना, यही हाल पानी का है हमारे देश में। आधे से ज्यादा पानी तो टूटी हुई पाइपलाइन से ही जाया हो जाता है और लोग गर्मी से तरसते रहते हैं।
13: कहते हैं अब सरकार बड़ी सख्ती से इन कमियों को दूर करने में जुट गई है।
5: ऐसे तो देखा नहीं, सुबह सुबह दांत को साफ करते समय नल को चालू रखते हैं या अपनी गाड़ियों को पाइप से धोते हैं।
4: हाँ, और एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके गाड़ी साफ हो सकती है, ऐसे तो कितना पानी वेस्ट होता है।
7: तो नहाने के लिए भी तो कहते हैं ना, शावर में दुगना तिगुना पानी लगता है और ऐसे एक बाल्टी में ही स्नान हो सकता है।
6: मेरी मम्मी तो बर्तन साफ करने के समय सिर्फ तभी नल चलाती है जब उन्हें धोना हो, साबुन लगाते समय नहीं चलता रहता नल, और नल धीरे भी चलाती है ताकि वेस्ट न हो पानी।
4: कहते हैं कि हर घर में 24 घंटे बिजली होना अब सरकार का लक्ष्य है।
1: बात तो कितने पते की है।
13: अरे अब तो सीधे ही देश की नब्ज को थामा गया है।
3: वो कैसे?
4: सीधे ही देश के विद्यार्थियों और नवयुवकों को संबोधित किया है।
13: अच्छा? हाँ, और उन्हें संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अपने घरों के मासिक बिजली के बिल को चेक करें और फिर परिवार से इसकी चर्चा करें कि कैसे इस बिल को घटाया जा सकता है।
5: पापा कहते हैं ऐसा करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।
6: मैं भी कहूँ, आजकल पापा और मम्मी मुझे फालतू लाइट जलाने पर क्यों टोकने लगे हैं।
7: हाँ मेरी मम्मी भी कहती है, फ्रिज से जो निकालना है या रखना है एक बार ही सोच लो, बार बार फ्रिज खोलना बंद करना ठीक नहीं है।
6: हाँ हाँ, अब पता चला ये राष्ट्रीय प्रोग्राम घर से ही शुरू हो रहा है।
11: बात कितनी सही है। कहते हैं कि बिजली का और उत्पादन करने से बेहतर और सस्ता तरीका तो है बिजली बचाना।
3: बात तो वही है ना, बचत भी तो एक प्रकार की कमाई ही होती है,
1: और इससे तो देश में बिजली की उपलब्धता में भी काफी फर्क पड़ सकता है।
7: दीदी हम भारतीयों का सब मुसीबतों के बावजूद भी कमाल का हौसला है।
6: और देखो ना, आज जैसे कुछ उम्मीद सी है।
3: हाँ हाँ, हम सब सबको मालूम हो रहे हैं। हाँ हाँ,
8: ठहरो, एक मजेदार बात मैं भी बताता हूँ सबको।
13: क्या?
8: कितने ही गांवों में जहाँ सिर्फ 6 या 8 घंटे की बिजली रहती थी, अब एक पंखा और बल्ब हमेशा जल सकता है। इसे कहते हैं तरक्की।
3: वाह वाह
13: वाह वाह वाह वाह।

0: हमें तो ताली योग और हास्य योग करने के लिए थोड़ा सा ही प्रोत्साहन चाहिए, और यहाँ तो अपने देश की तरक्की की बात हो रही है।
1: बहुत मजा आया, बिजली के मामले में तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो पक्का है।
2: और मुश्किलें कितनी ही हों, पर मन में है विश्वास,
3: पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
4: पूरा तो गाओ, जा कह रहे हो?
5: चलो चलो, सब मिलकर पूरा गाना गाते हैं।
6: ठीक है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे। ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं, क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स It just takes over.
1: What happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: The whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of people.
1: Then the past becomes my present. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past ना रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इन टू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माई प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माई प्रेजेंट। ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहां हम ढूंढते, वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे। तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हियर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहां से हिलकर यहां पहुंच गई, और यहां आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना। सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था।
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03 एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो वो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: ऐसी, अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया
1: है. इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें. एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
0: लुक एट,
1: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना,

0: इंग्रोस्ड नहीं हूँ, इंगेज नहीं हूँ, अटैच्ड नहीं हूँ, आई एम डिटैच्ड. तो नाउ इज द टेस्ट कि क्या जो मेरी शांति की स्थिति थी वो राइट, सच थी, असली वाली थी या नहीं थी. अगर वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा दैट पीसफुल स्टेज, तो जैसे ही वो थॉट्स आएंगे एंड आई विल जस्ट लुक एट देम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो लाइक अ स्टर्न लुक एट देम, एंड जैसे उस दृष्टिकोण से उस थॉट को देखेंगे वो थॉट खत्म हो जाएगी. और अगर मेरी एक्चुअल स्थिति वो नहीं थी, वो थॉट मुझे
1: हावी हो जाएगी,
0: मुझे खींचकर वापस स्टेशन पर ले जाएगी, मुझे अपने कंपार्टमेंट से उतार के वापस उस टर्मोइल में ले जाएगी जो सारा स्टेशन के ऊपर था. तो दोनों चीजें होंगी, कभी हो सकेगा कि हम अपनी स्थिति को मेंटेन कर सकेंगे और कभी होगा कि हम खींचकर वापस उतर जाएंगे. अगर उतर भी गए नो प्रॉब्लम, फिर से चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं. ये ना गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दृढ़ता के साथ. क्या होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन करके हम बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, तो वो प्रैक्टिस को करते रहेंगे. और दूसरी बात, कई बार होता कि जब हम वो शांति की स्थिति को अनुभव कर लेते हैं तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. यू नो इट्स लाइक ये एक स्थिति है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं. तो हमें लगता है अब ये बनी रहे, अब ये बहुत देर में ऐसी स्थिति में रहो. इट्स अ नेचुरल स्टेज, इट विल कम इट विल गो. उसको अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये थॉट आया कि मैं इसको पकड़ लूं, इसका मतलब उस टाइम मेरी शांति फिनिश हो गई क्योंकि मैंने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की. तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेट इट बी वेरी नेचुरल. और तीसरा कई बार आ जाता है कि अच्छा अब तो मैंने ये अनुभव कर लिया,
1: Now I've reached that, you know?
0: तो वो भी मेरी स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज फिर वो ईगो की फीलिंग आ गई. तो वो ईगो जब आ जाए तो अगेन वो स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी. सो आई हैव टू मेंटेन द जर्नी बट बी वेरी केयरफुल. बट इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इसमें दोनों चीजों का इफेक्ट है. मॉर्निंग में अभ्यास करेंगे तो सारा दिन अच्छा बीतेगा, सारा दिन अटेंशन रखेंगे तो अगले दिन मॉर्निंग पर उसका असर पड़ेगा. एक होता है कि हमने मॉर्निंग में कर लिया लेकिन सारा दिन वापस वी गेव इट द परमिशन, कुछ भी आता गया कुछ भी आता गया, तो फिर क्या होगा, अगले दिन मॉर्निंग में जब बैठेंगे तो वो सारा दिन का जो टर्मोइल था वो फिर अगले दिन मॉर्निंग डिस्टर्ब करेगा और फिर उस स्थिति को बनाने में और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए मॉर्निंग डेफिनेटली करना है और फिर सारा दिन में भी थोड़ा सा अटेंशन रखना है कि कम कम कम हर एक के ऊपर इतना ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है, वो कम. यहाँ
1: अवेयरनेस, एक्चुअली अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम याद रखें, वो याद अगर अपने साथ मेंटेन रखें. सिस्टर शिवानी, बहुत सी और बातें भी जुड़ी हैं जब हम पीस की बात करते हैं कि एक कुछ मिथ्स हैं उससे जुड़ी हुई कि अगर पीस का मतलब है आई हैव लॉस्ट, पीस का मतलब है कि मुझ में ऊर्जा नहीं रही, मुझ में वो ऊर्जा नहीं है जो हमने पहले भी बात की थी कि कहीं कि मैं कर पाऊंगा, मतलब बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत लो है. अगर मैं पीसफुल रहूंगा तो पीपल विल कम एंड ट्रैम्पल ओवर मी, मेरे ऊपर मुझे कुचल दिया जाएगा. ऐसी कई सारी बातें और हैं लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है तो हम चाहेंगे कि आगे उस पर बात करें. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए कुछ एक बात ऐसे कहना चाहेंगे जो आज याद रखें.
0: आज याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा. आई एम अ पीसफुल सोल. दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन दैट आई कैन गिव टू माई सेल्फ. एंड जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे जब दूसरों से हम मिलेंगे तब वो भी याद आएगा कि वो कौन,
1: वो भी वही है.
0: हाँ. एंड जब हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन, वही पीस के वाइब्रेशन मुझसे निकल कर वायुमंडल में भी फैलेंगे और दूसरी आत्मा तक भी पहुंचेंगे. तो जो हम कहते हैं वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, तो पीस इन द वर्ल्ड विल बिगिन हियर. एवरी टाइम आई क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस, आई एम क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड. तो यू नो इट्स नॉट कि पॉलिटिशियंस या धर्म नेता या स्पिरिचुअलिस्ट वो लोग विश्व में शांति लाएंगे. विश्व में शांति लाने का कार्य हम सब आत्माएं कर रहे हैं और सारा दिन में हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हर क्षण जब हम एक शांति का विचार करेंगे तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू पीस इन द वर्ल्ड. एंड एवरी टाइम आई क्रिएट एन ऑपोजिट, आई एम क्रिएटिंग टू टर्मोइल, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू टर्मोइल इन द वर्ल्ड. सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि हम घर में बैठकर न्यूज देखकर ये बोलना तो बहुत ईजी है, ये लोग देखो दुनिया का क्या हाल कर रहे हैं, मैं दुनिया का क्या हाल कर रही हूँ. Because every time I create a negative thought, I am contributing to creating negativity in the world.

0: my responsibility.
1: Wonderful. That's a note जिस पे हम खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को, लेकिन आपसे बातचीत की, आगे भी सफर को जारी रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. निर्णय हमारे हाथ में है. अभी तक हम ये सोचते थे कि पूरी जिम्मेदारी या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर है, ना सिर्फ जिस पीस को हम तलाश रहे हैं अपने अंदर या विश्व में भी देखते हैं, तो वो थॉट क्रिएट करना मेरे अपने ही हाथ में है. और जहाँ मैंने ये समझा कि ये थॉट जो पीस का मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो दुनिया तक भी जा रहा है और वर्ल्ड पीस की जो बात होती है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हमें एम्पावर करता है. हम में वो ताकत है कि हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में. अगेन आपसे हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण देंगे. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अभी शांति का जो ये सफर चल रहा है वो जारी रखेंगे. जानेंगे कि कई ऐसी बातें हैं जो गलत मान्यताएं हैं जो शांति से जुड़ी हुई हैं, वो सही परिपेक्ष में पीस या शांति को कैसे देखा जाए. अगली कड़ी में होगी मुलाकात. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में उन्होंने जो योगदान दिया वो अद्वितीय है। सूरदास भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। सूरदास उच्च कोटि के भक्त पहले थे, कवि बाद में। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, उन्होंने तो बस कृष्ण भक्ति की और कविता अपने आप हो गई। सूर का काव्य गहराई का काव्य है, विस्तार का नहीं। उन्होंने आध्यात्म का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन आम जनता को उस मार्ग पर ले गए जो प्रशस्त तो था ही, लेकिन अंध धार्मिकता से परे था।

सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित एक गांव में हुआ था। बाद में वे गऊ घाट पर आकर रहने लगे। सूरदास के पिता रामदास भी एक गायक थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके उन्हें कृष्ण लीला पद गाने का आदेश दिया था। सूरदास जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है।

सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़े ही मर्म स्पर्शी तरीके से उपयोग किया। सूरदास जी की अक्षय ख्याति का कारण है उनकी रचना सूरसागर। कहा जाता है कि इस महाग्रंथ में 125,000 पदों की रचना की गई थी, मगर खोजने पर भी 5,000 से ज्यादा पद उपलब्ध नहीं हो सके।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे अभिषेक और तापसी, संगीतकार थी तापसी नागराज, आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
1: आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

ये बाजू मेरे आ

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: Awakening with ब्रह्मकुमारीज. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: आज मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाई हूँ.
2: श्योर. मुझे मालूम है आप क्या लाए होंगे.
3: मुरली.
2: ऑफ कोर्स.
3: परमात्मा के महावाक्य, जिस टॉपिक पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, परखने की शक्ति. और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो रिस्पेक्टफुल, इन आर वोकैबुलरी ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारी है, कि सम्मानीय नहीं था. तो आपने डिसाइड किया कि उनके घर फिर कभी नहीं जाना.
2: जी.
3: और आपने एंड में कहा मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, अभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, उनके घर नहीं जाऊंगा फिर
2: जी.
3: से. और आपने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था.
2: जी.
3: तो मेरा गुस्सा होना तो नेचुरल था. तो आपने एंड में कहा लेकिन मैं फिर भी उनके घर नहीं जाऊंगा.
2: बिल्कुल.
3: ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं इस बात के ऊपर. एंड आई जस्ट फाउंड अ मुरली.
2: आपने क्या किया मालूम है?
3: वी जस्ट फिटेड इन.
2: नहीं,
3: so
2: आपने क्या किया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए.
3: हाँ, सही बात.
2: हम दोनों का डिसीजन तो नहीं हो पाया.
3: नहीं.
2: तो लेट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट.
3: वैसे भी आप देखो, हम सब कुछ जो शेयर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पर है ना, जो परमात्मा डायरेक्टली सुनाते हैं.
2: फैसले में ही तो छोटे कोर्ट में डिसाइड होता है ना.
3: ठीक है.
2: तो आज सुप्रीम मतलब सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल.
3: परफेक्ट. तो देखते हैं शिव बाबा, निराकार परमात्मा हमें क्या महावाक्य सुनाते हैं. तो परमात्मा कहते हैं, ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना. परखना जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे,
2: ये परखने की प्रैक्टिस
3: छोटी बात नहीं समझना. कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य परखने की प्रैक्टिस चाहिए. सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी. जैसे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमें परखना है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना है. उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस सोच के फिर परखना है, क्योंकि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ना. फ्यूचर में आएगा ना कॉन्सिक्वेंस.
2: आज
3: हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन. वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देखकर नहीं परख रहे.
2: जैसे मैंने कहा तो ब्लैक को तो ब्लैक ही बोला, मैंने क्या बोला.
3: हाँ, लेकिन भविष्य का उसका कॉन्सिक्वेंस, हमारी शक्ति कम हुई, बार बार अंदर पर चिंतन करते करते हमारी सेहत खराब हुई और हमारा उस आत्मा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्मिक अकाउंट बन गया. तो ये भविष्य का सोचकर फिर परखना है. यथार्थ रूप से मतलब एक्यूरेटली वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे. उनकी बुद्धि एक ही कार्य में और एक रस स्थिति में रहेगी. मतलब जिसके अंदर ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, उनकी फिर परखने की शक्ति भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि टर्बुलेंस है ना यहाँ पे, तो पिक्चर सही नहीं दिखाई देगी. अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते हैं. वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है. जनरली ऑल्सो अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो थोड़े टाइम के बाद हम कहेंगे थक गए.
2: बाबा तो बोल रहे हैं कि ज्यादा डाइवर्सिटीज में, ज्यादा इधर भी हाथ डाल दिया.
3: वो तो मल्टी टास्किंग, कि ज्यादा नहीं सोचना लेकिन व्यर्थ नहीं सोचना. वेस्ट सोचने से भी बुद्धि की शक्ति कम
2: तो
3: हो जाएगी.
2: पिछले एपिसोड में तो वेस्ट ही था.
3: हाँ, सी
2: देखा, मेरी टॉकिंग थी और थिंकिंग थी, दैट वाज ऑल वेस्ट.
3: यस, वेस्ट
2: हो चुका है.
3: नॉट ओनली वेस्ट, नेगेटिव आल्सो.
2: या बट उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना.
3: नेगेटिव
2: ऑल गॉन,
3: बट नेगेटिव भी था ना. नेगेटिव भी था ना. अभी
2: और अभी तक है.
3: अभी तक है. तो इसीलिए उस दिन का कर्मा उस दिन के लिए भी नेगेटिव था और क्योंकि फिनिश नहीं किया तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसका अभी तक वो नेगेटिव चल रहा है. तो प्रेजेंट भी फ्यूचर भी दोनों देखकर बुद्धि में वीकनेस थकावट महसूस होती है तो यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे.
2: सही बात
3: है ना. अगर मन बुद्धि में बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ना सही परखेंगे और ना सही निर्णय ले सकते.
2: निर्णय तक जाएंगे कहाँ?
3: क्यों निर्णय लेंगे ना?
2: चलते रहेगा.
3: निर्णय लेंगे ना? आपने निर्णय लिया मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना. तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था. थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी. कितना भी होशियार होगा, सी दिस लाइन, कितना भी होशियार होगा तो भी थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा.
2: मैंने कहा था ना, एनीबॉडी हु हर्ट्स माय इंटेलिजेंस, अपने आप को
3: इंटेलिजेंट है.
2: हाँ, लेकिन
3: देखो
2: कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर इस तरह का पैटर्न करते रहे, इस तरह की हैबिट हो जाए कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा, इसने चाय नहीं पूछी, इसने मुझे खुद चांदी के गिलास में पानी पिया, मुझे स्टील के गिलास में पिला दिया,
3: तो इतनी व्यर्थ चिंतन अगर चलेगा तो कितनी भी इंटेलिजेंट आत्मा हो लेकिन थकने के कारण, सी मतलब क्वालिटी है हमारी लेकिन थकने के कारण हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति नहीं यूज कर पाएंगे. सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है. इसीलिए विजयी नहीं बन सकते.
2: विजयी ऑन व्हाट?
3: विक्टोरियस ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन माय ओन वीकनेस. थके हुए हैं. हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है. हार खा लिया ना, फिर वही नेगेटिव संस्कार हावी हो गए, फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर दूसरी आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई.
2: मैं हार खाया सिचुएशन से.
3: सिचुएशन से ही तो हार खाए. और उस आत्मा से भी हार खाए, उसके संस्कार से भी हार खाए. जब भी हम डिस्टर्ब हुए तो हम किसी न किसी से हार खाए ना.
2: अगर मैं डिसाइड किया आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा तो मैं हार गया.
3: नहीं, आपने डिसाइड किया आज से बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद में और कई सालों तक उसके बारे में अगर थिंकिंग जैसे अभी चल रही थी नेगेटिव वाली, वो अभी भी चल रही है, तो फिर मेरे संस्कार पावरफुल था ना टू डिस्टर्ब यू, तो हार खाई. तो विजय न होने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई की कमी. जैसे उन्हों की कहते हैं हाथ की सफाई होती है, दुनिया में कहते हैं ना हाथ की सफाई है, तो परमात्मा कहते हैं आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते. जब वो हाथ की सफाई से इतना कुछ कर सकते हैं तो आप बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते हैं. नॉलेजफुल बन गए हो ना, मतलब नॉलेज तो आ गई क्या सही है क्या गलत है. व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, दे ये भी परखने की शक्ति. व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर, इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम. दिस ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रहे हैं. जैसे हम इतनी बार देखते हैं प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट, एक कैटेगरी. एक थॉट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरों तक तो पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलती है?
2: वो हमें. जो भी कुछ पकाते हैं
3: सबसे पहले आपको मिलती है,
2: पहले हमको मिलता है, चारों तरफ उसका एरोमा घर में फैलता है.
3: तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करेगी वो वाइब्रेट होगी, बाहर जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को मिलेगी. तो जितनी बार भी हम एक प्योर पावरफुल अच्छी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. फिर दूसरे टाइप ऑफ थॉट है जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, चाहे वो दूसरे के बारे में है चाहे वो अपने बारे में है. जैसे आपने पिछली बार कहा गिल्ट भी मुझे क्रिएट हुआ, गुस्सा भी मुझे अपने ऊपर भी आया, अपने ऊपर कोसा, तो मतलब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में चला गया. ये जब किया तो अपने आप को भी फील होता है, दूसरे तक भी वाइब्रेशन जाता है. ये हुआ, थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट जब हम नेसेसरी थॉट क्रिएट करें कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज इनसे मिलना है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, नेसेसरी थॉट. एंड फोर्थ टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ. पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, नेगेटिव नकारात्मक चिंतन, नेसेसरी साधारण चिंतन, एंड वेस्ट व्यर्थ चिंतन. वेस्ट चिंतन हम किसको कहेंगे, जहां हम ज्यादातर या तो जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं या जो अभी होने वाला है.
2: लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता हूँ, अभी का थोड़ा ही कुछ.
3: तो मेजोरिटी हम यही कर रहे हैं.
2: आप रूम में खाली बैठेंगे अकेले,
3: हाँ?
2: और टीवी भी ऑन नहीं है या किताब भी नहीं पढ़ रहे और कंप्यूटर फोन कुछ नहीं है,
3: हाँ?
2: तो आप बैठ के सोचेंगे कि मैं अकेला खाली इस वक्त बैठा हूँ, आज तारीख ये है और मैं इस वक्त इतने बजे इस घड़ी पे.
3: अच्छा नहीं तो क्या सोचेंगे,
2: कोई भी थॉट आ जाता है. स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब माया जिंदा थी तो ऐसा हुआ, शूटिंग में ऐसा हुआ,
3: हाँ, मतलब
2: पता नहीं कल का बच्चे का क्या होगा,
3: हाँ,
2: और उधर वो उसका बच्चे का वो है, उसके बच्चों के आज के जमाने का क्या होगा,
3: हाँ,
2: इनकी 30 साल बाद दुनिया कैसी रहेगी.
3: तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों टाइप ऑफ थॉट्स, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, नॉट इन माई कंट्रोल, पावर वेस्ट, एनर्जी
2: नॉट इन माई कंट्रोल.
3: क्या
2: कि पास्ट और फ्यूचर को सोचना नहीं सोचना,
3: क्यों? जैसे आप पे ही नहीं आता है. अभी ये भी थिंकिंग चेंज करनी है कि थॉट आप पे ही आता है, थॉट अपने आप नहीं आ रहा है.
2: मैं थोड़ी बोलता हूँ 1945 में क्या हुआ.
3: अच्छा अगर आ भी जाए, चलो आ गया ना कि हम बैठे साइलेंट हैं.
2: 1960 में ऐसा हुआ था.
3: हाँ इट्स ओके, आ गया. बेसिकली क्या हुआ है, अंदर जो स्टोर करके रखा है मेमोरी बैंक में,
2: सब कुछ स्टोर्ड है जब से वो संभाला.
3: सब कुछ स्टोर्ड है ना,
2: तो कोई भी चीज आती है.
3: अब उसको कितनी देर उस बारे में सोचेंगे,
2: जब तक रियलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ खोया हुआ था.
3: तो वो रियलाइजेशन,
2: मैं एक किताब पढ़ता हूँ सिस्टर, तो 3-4 पैराग्राफ के बाद एक वर्ड कुछ ऐसा आता है उसमें, एक लाइन ऐसी आती है, क्योंकि कोई मेरे साथ रिलेटेड किस्से की बात हुई, कुछ स्कूल आ गया या टीचर का नाम आ गया, तो वहां से कनेक्टेड सीधा थर वहां चला जाता
3: हूँ,
2: और ये आंख वहीं रहती है, किताब हाथ में रहती है, मैं वहां घूमता रहता हूँ. उसके बाद रियलाइज होता है कि मैं अभी तो पेज नंबर लाइन नंबर 7 पे हूँ.
3: हाँ तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मन बुद्धि थक जाएगी.
2: बट बिटवीन द रियलाइजेशन कि अभी तक मैं 7 लाइन ही पढ़ा, और बिटवीन 1st and 7 के बाद फिर से शुरू करने के बीच का गैप वॉज नॉट इन माई कंट्रोल.
3: इट इज इन माई कंट्रोल वेन आई स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टूडे. Never say it's not in my control. We can only say I was not aware. मैंने ध्यान ही नहीं रखा, आज से मैं ध्यान रखूंगा. सपोज हमने एक वर्ड यहाँ पढ़ा, अभी सपोज बातों में ही देखते हैं, अभी हमने मुरली की एक लाइन पढ़ी, ठीक है, और फिर उस लाइन को लेके हम दूसरी बातों पे आ गए. अभी हम आ गए, बट आई एम अवेयर कि हम ये कर रहे हैं. आई एम अवेयर, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हम ये कर रहे हैं. हम मुरली की लाइन से, जो हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहे थे, हम उस लाइन से हटे, उस लाइन से एक लाइन ली, उस लाइन से हम और लाइनें, मतलब और बातें कर रहे हैं. वी आर अवेयर कि हम ये कर रहे हैं, और हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उसको स्टॉप कर वापस इस पर आ सकते हैं.
2: नहीं, मैं तो आपसे बात करते करते कहीं कहीं चला गया.
3: लेकिन हमें ये तो अवेयर है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कुछ और बात
2: कर रहे हैं. ना कि आपको रोक के मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ.
3: वी आर अवेयर ना, तो ये अवेयरनेस है ना. हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है.
2: हाँ तो मैं आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे,
3: हाँ,
2: इस बात के क्वेश्चन का, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा.
3: लेकिन अगर अभी आपको किसी भी क्षण लगे कि नहीं बस अभी वी हैव टू गो बैक टू दैट, तो आप एक क्षण में क्या कहेंगे?
2: बोले ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं.
3: दिस इज इट. ये सब कौन चूज करता है? मतलब हम सोच रहे हैं, हमें दिख गया, हम अवेयर हो गए कि नहीं बहुत ज्यादा बाहर आउट ऑफ इस टॉपिक से चले गए, स्टॉप, वापस. ये हम भी तो कर रहे हैं. यही चीज हम थिंकिंग के साथ कर सकते हैं. कर सकते हैं, नहीं कर सकते. हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा लंबा लंबा चला, फिर सडनली का कितनी एनर्जी वेस्ट. स्टॉप, वापस हो जाएगा. इसको भी हम थॉट मैनेजमेंट कहते हैं. पहले हम अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं थे.
2: मनी मैनेजमेंट आती है मुझे.
3: मनी मैनेजमेंट आती है ना,
2: हाँ.
3: उससे बेटर
2: इधर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, कितना फोन पे बाहर करूं कि इंडिया के बाहर तो इतना हाँ। लगेगा।
3: अच्छा जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या मैनेज करते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा,
2: मिनिमम रुपीज में मैक्सिमम प्रॉफिट,
3: परफेक्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट। कहीं अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जहां से आपको लगे कि उतना रिजल्ट नहीं, इनफैक्ट लॉस हो रहा है,
2: निकाल देते,
3: यही तो करना है। तो यही तो करना है। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप हटा, दूसरे पे शुरू किया, डिफिकल्ट, स्टॉप शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। सपोज आपके घर में कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस ही होता जा रहा है, वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे?
2: बोलेंगे भाई इसको हटा दे, दूसरी जगह लगा
3: दे। देखो लॉस हो रहा है, आप तो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उसी में डालते जा रहे हैं अपने आप को, लॉस हो रहा है, इतनी एनर्जी जा रही है, पावर डिप्लीट ही होती जा रही है, फिर भी तुम उसी बारे में सोच रहे हो।
2: फंड मैनेजमेंट का लॉस मालूम है मुझे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है वेस्ट थॉट्स में ये नहीं मालूम था।
3: लॉस नहीं हो रहा था जब हम व्यर्थ इधर उधर इसका, और फिर उसमें उसको गुस्सा भी कर दिया, उसको गलत भी, फिर हर्ट, फिर
2: आई नेवर थॉट फ्रॉम दैट एंगल,
3: वी नेवर थॉट ना, तो वही तो सीखते हैं ना, दैट इज थॉट मैनेजमेंट ना, कि दिस इज माय वेस्टेज।
2: अब हम किस बात का वेस्ट हो रहे हैं, पैसा तो नहीं जा रहा मेरा,
3: उससे भी वैल्यूएबल चीज जा रही है ना,
2: क्या
3: वो एनर्जी जा रही है जो पैसा कमाती है हमारे लिए, आत्मा की शक्ति। अभी क्या सुना, जितना बुद्धि थक जाएगी उतना उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती जाएगी, थकेगी कैसे, साधारण और व्यर्थ चिंतन टू मच करने से।
2: तो इतना थकने से मेरी मनी मैनेजमेंट में भी
3: वही तो मैंने कहा, जो ये वो शक्ति कम हो रही है जो पैसे को भी कमाती है,
2: तो ये रियल लॉस है, तो डबल लॉस है।
3: हम उस लॉस को कितना बड़ा लॉस समझते हैं ना,
2: तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ,
3: ये लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके कंपैरिजन में। पैसा जाता है, पैसा आता है, शक्ति जाती है वापस कमानी, सेहत जाती है वापस कमानी, रिश्ते जाते हैं वापस कमाने, पैसे के लॉस और प्रॉफिट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये एनर्जी तो उससे कितनी ऊपर है, और ये वो संस्कार है, वो सोच है जो हमारे साथ भी जाएंगे आत्मा की जर्नी पर। वो धन तो जाएगा नहीं साथ में कहीं भी, तो भी इसके प्रॉफिट और लॉस को उतना महत्व नहीं देते ना। यही तो आज सीखने को मिल रहा है कि अपनी थॉट्स की अवेयरनेस, इसको भी हम कहते हैं थॉट मैनेजमेंट, मतलब जैसे SOS कहते हैं ना, तो इसमें भी SOS है, स्टॉप कर देना, उसको ऑब्जर्व करना है कि ये मैं किस बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, और तुरंत स्विच। इवन अगर आ गई, आपने कहा ना थॉट आ जाती है, आ गई, चल रही है, स्टॉप
2: ऑब्जर्व एंड स्विच। शूटिंग में मैं करता हूँ ना,
3: हाँ?
2: जैसे डायरेक्टर बोलता है रोते रोते सीन, रोना रोक के कट करके बैठ जाता हूँ, उसके बाद बोलता गड़बड़ होगी, सॉरी लाइट गड़बड़ होगी, दोबारा शुरू करो,
3: हाँ?
2: फिर लाइट्स ऑन, फिर रोना शुरू सीन।
3: अच्छा, और अगर सपोज वो बोले रोते रोते सीन वो हुआ स्टॉप,
2: हाँ?
3: नेक्स्ट मिनट के बाद नेक्स्ट सीन,
2: हाँ?
3: उसमें आपको बहुत खुश होने
2: का है,
3: कर सकते,
2: हाँ?
3: तो वो कर सकते हैं। तो ये
2: शुरू में तो घर तक रोता हो जाता था,
3: नहीं नहीं, पर स्टॉप करके दूसरे सीन में चेंज कर सकते,
2: अब कर सकता हूँ,
3: कर सकते।
2: लेकिन अर्लियर स्टेजेस में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर तक रोता हो जाता,
3: मतलब
2: था
3: मतलब हम उस रोल में क्या हो गए,
2: खो गए थे,
3: खो गए किसी भी चीज में, इतना नहीं खो जाना।
2: प्रैक्टिस करते करते करते आ गया ना,
3: प्रैक्टिस करते करते आ गया ना,
2: प्रैक्टिस करते करते स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आ गया, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाज डिफिकल्ट इनिशियली,
3: दिस नाउ प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस करते करते ये भी आ जाएगा,
2: स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ऐसे होता है मेरा,
3: अब ऐसे होता है ना, यहाँ भी अब ऐसे ही होगा, ऐसे होगा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, सेम करना है, सेम ये थॉट चल रही है, मैं बहता जा रहा हूँ इसके अंदर, मेरी कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है, स्टॉप, चेंज, स्विच, हो गया। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते, अब आप देखो, आपने कहा अब तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इजिली,
2: शूटिंग में मैं चाय पी रहा हूँ, डायरेक्टर बोले शॉट दे के, आधी छोड़ के शॉट दिया, रोया धोया, इमोशनल लड़ा किया करके कट, बोला ओके, आधी बाकी चाय पीने लगे, दोस्तों से बात करने लगे,
3: सिंपल,
2: इमेजिएट हो जाता है,
3: इमेजिएट हो जाता है ना,
2: पहले पहले नहीं होता था।
3: कोई भी चीज पे प्रैक्टिस की, अभी हर एक अभी नहीं कर पाएगा इजिली, जो आप कह रहे हैं कि रोए फिर स्विच किया फिर खुश हो गए, ये हर एक नहीं कर पाएगा, जिसने प्रैक्टिस किया वो कर लेगा।
2: अच्छा एज ए टीचर आप मुझे समझाओ क्या करना। मुझे एक थॉट आ गया।
3: आप सीन के लिए क्या करते हैं कि अभी रो रहे हैं
2: तो कट बोल दिया डायरेक्टर, हो गया काम खत्म,
3: बस खत्म, फिर
2: मतलब मेरा काम खत्म, दूसरा करूं।
3: तो उतना ही इजी है ना ये भी, उसमें कुछ करना ही नहीं। हमें लगता है हर चीज के लिए पीछे बहुत बड़ी कोई टेक्निक होगी, कोई उसकी प्रोसेस है, कोई उसकी
2: पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी,
3: कुछ नहीं है ना। अभी इसको बोलो कट। सपोज आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, मैं उनके घर गया था, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी, फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहा है। सपोज 5 मिनट बीते, 10 मिनट्स बीते, अब क्या करना है इसको चेंज करने के लिए? कितनी पावर जा रही है, स्टॉप, चेंज, किसी और चीज पर सोचते हैं। कुछ करना ही नहीं, कोई टेक्निक थोड़ी है इसके पीछे, कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है। स्टॉप, ऑब्जर्व कि ये राइट नहीं है, स्विच, चेंज करना है। इवन इफ आई हैव टू डू इट रिपीटेडली इन द बिगिनिंग, कि मैंने किया लेकिन 2 मिनट बाद फिर मुझे वही बात याद आई, फिर स्टॉप, फिर मैंने किया 5 मिनट बाद फिर वही बात याद आई, फिर स्टॉप,
2: रिटेक, कट, रिटेक, कट।
3: प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना इजी। क्योंकि अपनी इकोनॉमी, हम मैनेजमेंट पैसों की इकोनॉमी इतना करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बहते ही जा रहा है। आज की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मन बुद्धि थक जाएगी उसकी फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति यथार्थ नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो परमात्मा कहते व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, मतलब पता तो चल जाता है ना कि कौन सी थॉट वेस्ट है, कौन सी थॉट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उतना पता चल गया। दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो समझने के बाद कर्म में तो स्वतः ही आना चाहिए, समझ लिया क्या वेस्ट है क्या पॉजिटिव है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अब तो मेरी समझ में आ गया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है।
2: ओके,
3: मींस अपने थॉट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेस्ट चल रही है और हमें लगा कि ये राइट चल रहे हैं। उतनी अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि उतनी पता चल जाए, इवन अगर चल रही है लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये कौन सी क्वालिटी की है। ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है, एलिवेटेड है, बहुत प्योर है, बहुत ऑर्डिनरी है। वो चेकिंग हो जानी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। कभी भी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो,
2: जैसे मैंने कहा था ये तो नेचुरल है,
3: ये तो नेचुरल है,
2: तो उसको नहीं है,
3: तो उसको श्रेष्ठ समझ लिया, मतलब राइट समझ लिया।
2: हाँ, तो आई सेड ना मैं व्हाटएवर आई डिड, सही बात है,
3: सही बात है। तो वो कौन सी स्टेज है हमारी जब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को ही राइट समझ लिया, जस्टिफाई कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, हंस बुद्धि,
2: होली हंस बुद्धि,
3: हंस बुद्धि स्वान, जो परख सकता है
2: सच्चे मोती में और नकली मोती,
3: हाँ, मोती में और पत्थर में, कंकर में, वो परख सकता है। वो कंकर कोई नहीं उठा लेगा मोती समझकर। तो परमात्मा ने कहा आपकी बुद्धि भी होली हंस बुद्धि।
2: हमको तो ऐसे बचपन में सिखाते थे, ऐसे ही पता नहीं सच है कि झूठ, बोले दूध और पानी मिक्स कर दो तो हंस सिर्फ दूध दूध दूध दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं।
3: मतलब उसकी विशेषता है ना,
2: हाँ,
3: उसका गुण क्या है
2: कि
3: मिक्सचरिटी में से भी, जहाँ मिक्स्ड भी है कोई चीज उसमें से भी वो ओरिजिनल प्योरिटी वाली चीज को खींच लेता है, इतनी होली हंस बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं उसमें, मतलब हंस में, स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है।
2: ब्यूटिफुल।
3: व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम मोस्टली क्यों वेस्ट करते हैं ना एनर्जी और टाइम, क्योंकि हम रॉन्ग को राइट कहते हैं।
2: आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना पावर आ रहा
3: है, पावर आती है ना, है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, कितनी पावरफुल लाइन है व्यर्थ लेकिन समझते क्या है, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है।
2: राइट
3: इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। मन की शक्ति,
2: समय की शक्ति,
3: वाणी की शक्ति सब चली जाती है। इसका कारण क्या, होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, मतलब श्रेष्ठ और व्यर्थ के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो परमात्मा कहते सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अगर कोई उल्टा है मतलब कुछ रॉन्ग भी है तो उसको और रॉन्ग नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को मैं सुल्टा कैसे करूं ये सोचो। उल्टे को उल्टा है बोलते बोलते हम खुद भी क्या हो जाते हैं,
2: उल्टे
3: ही हो जाते हैं, लेकिन उल्टे को मैं सुल्टा कैसे करूं यही सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, कंपैशन, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, अपनी गुड विशेस, एलिवेटेड फीलिंग से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपनी वेस्टफुल थिंकिंग और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा, पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, ऐसी आत्मा फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगी।
2: थैंक यू सो मच बाबा।
3: सी कि हम कभी भी रॉन्ग को भी जब तक राइट बोलेंगे तब हमारी समय, मन की एनर्जी, वाणी की एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। और होली हंस बुद्धि बन, परख कर फिर अपनी शुभ भावना से अपने भी वेस्ट को खत्म किया, सामने वाली आत्मा के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन किया, तो विजयी आत्मा बन जाएंगे।
2: एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग।
3: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
3: ओम शांति।
2: थैंक यू।
4: While discerning our thoughts, behavior, and choosing our response towards situations and people, we should see the present and also the future. Our present karma of thoughts and behaviors will have a consequence in the future. If we create too many waste and negative thoughts, then our power to discern and power to decide will be weak. If the mind and intellect is stable and concentration is high, then discernment and decision will be accurate. Pure and positive thoughts are thoughts radiating from the original sanskars of the soul, thoughts of love, forgiveness, compassion, and empathy. Negative thoughts are thoughts of ego, anger, hatred, hurt. Necessary thoughts are thoughts related to our normal activities. Waste thoughts are thoughts of the past and future. Thought management saves our energy and time, gives us happiness, health, and harmony. Let us be aware of our thoughts, and if there is a wrong or waste thought, then SOS, stop the thought. Observe the quality and switch to another type of thought.
5: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 9955956

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पड़ोसी, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, उन्नति, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
3: आज तो हम सब ने जम के डिस्कशन की।
4: हाँ हाँ, पढ़ाई की क्लास कम और डिबेट की क्लास ज्यादा लग रही थी।
5: ये हमारे स्कूल में शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई है ना, काफी फायदा है इससे।
6: एक तो हम सबको एक बार फिर से इकट्ठे होने का मौका मिलता है और टीचर के सामने सामने सारा होमवर्क भी हो जाता है।
7: अच्छा है ना, मुझे तो किसी भी काम में कोई अड़चन आए तो तभी की तभी पूछ लेता हूँ।
8: कई बार तो मिस हमें ही आपस में डिस्कशन करके परेशानी का हल ढूंढने को कह देती है।
4: इससे पता है, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके पता चलते हैं।
3: कई बार तो खुद को ही हैरानी होती है कि हमने किसी बात को उस एंगल से देखा क्यों नहीं।
2: पल में ही सब प्रॉब्लम सोल्व जाती, ये सिस्टम हर स्कूल में हो जाए तो अच्छा है।
3: पर आज तो मजा ही आ गया, कोई नए सर आए थे।
5: जैसे ही सर ने लेक्चर देना शुरू किया, मैंने डिस्कशन शुरू कर दी।
4: ओए, मैं क्या कहता हूँ, हर बार जब किसी बोरिंग टॉपिक से बचना हो तो डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए।
5: हाँ हाँ, टाइम कैसे बीता पता ही न चला। बात शुरू कैसे हुई थी याद है?
6: बात शुरू हुई थी भारत में व्यापार से, उन्नति से,
7: और पहुंची कहाँ?
9: भारत की विदेश नीति तक।
4: पर अब पता है ना किस दुविधा में पड़ गए हैं?
3: हाँ पता है,
7: सर ने कहा है एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें हम क्लास में ही एक प्रकार की ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
3: हाँ, पत्रकारों की तरह। हाँ, और टॉपिक होगा भारत की विदेश नीति।
5: हाँ, उन्होंने कहा है कि दो टीमें बनेंगी और वो अपने अपने नजरिया रखेंगी।
4: चलो अभी टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
6: पर कैसे, पहले नेट से जानकारी तो इकट्ठी करें।
7: वो तो कर ही लेंगे, मैं तो ये सोचने को कह रहा हूँ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिलाकर एक प्रोग्राम के रूप में देंगे, मतलब डिस्कशन कैसे दिखाएंगे, कौन क्या बोलेगा।
5: यही तो होमवर्क दिया है सर ने, वो भी कुछ कम नहीं है।
6: कह रहे थे कल ही हम सबसे सुनेंगे हम क्या क्या जानते हैं अपने देश की विदेश पॉलिसी के बारे में।
7: चलो चलो चर्चा शुरू करो, अभी जो जो जानते हैं ऐसा ही बोलते हैं।
8: और बीच बीच में ये कंप्यूटर भैया तो है ही।
3: ये कंप्यूटर तुमने नया लिया है क्या?
2: नहीं, हमारे पड़ोस में एक अंकल है, मुझसे बहुत प्यार करते, बोले कल शाम की क्लास के लिए ले जाकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो।
3: हाँ, अच्छी बनाई थी तुमने, भारतीय राष्ट्रीय जल पशु द फ्रेश वाटर डॉल्फिन।
4: हाँ, ये गंगा नदी में अधिकतर पाई जाती है, पर तुमने बहुत अच्छे तरह से दिखाया कि कैसे गंगा के मैले होने से ये अब विलुप्त होने के कगार पर है।
2: थैंक्स, जैसा कि इसका नाम है, यह साफ ताजे पानी में रह सकती है और अब इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है।
5: पर असली थैंक्स तो उन अंकल का है जिन्होंने अपना कंप्यूटर देकर तुम्हें क्लास में सब दिखाने का मौका दिया।
2: हाँ ये तो है, ये अंकल सबकी मदद करते, सब इनका बहुत आदर करते हैं।
3: और वो देखो दीदी भी आ रही है।
10: क्या बातें चल रही हैं?
2: पूछो मत दीदी।
5: दीदी हमें ना कल एक रोल प्ले।
10: मैं बताती हूँ दीदी।
6: नहीं पता है हमारे सन ने हमें क्या काम दिया।
4: देखो मैंने आज क्या दिखाया सबको। ओहो आगे क्यों आ रहे हो?
7: मैं आ रहा हूँ, तुम पहले आगे आए थे। दीदी देखो मैं बताता हूँ।
10: दीदी मैं।
11: ठहरो ठहरो, एक एक करके आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो।
3: दीदी हमें अपनी शाम की एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमारे देश की विदेश नीति पर चर्चा करनी है, जरा मदद कर दो, इसमें क्या क्या आता है।
5: देखो मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो इस बात पर केंद्रित है कि अपने सब पड़ोसियों से आपसी संबंध किस प्रकार सुधारे जाए, है ना दीदी।
6: अभी पता चल जाएगा, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है तुम्हें।
7: चलो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आजकल ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए।
4: रेडियो,
8: टेलीविजन,
2: अखबारें और
9: दीदी
5: और सबसे आगे इंटरनेट
11: क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग। विदेशी हमारे पड़ोसी ही तो होते हैं। देश के लेवल की बात करने से पहले ये तो बताओ कि तुम अपने घर के पास रहने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हो।
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
5: हाँ, हम हमेशा उनकी मदद करते हैं।
3: मम्मी जब भी कुछ अच्छा बनाती हैं, उनके घर जरूर भेजती हैं।
4: एक बार मेरा इम्तिहान था, अगले दिन लाइट ही चली गई, हमारा इन्वर्टर भी खराब था, तो हमारे पड़ोसियों ने मुझे अपने घर आकर पढ़ने को कहा था। सबने एक कमरे को मेरे लिए खाली कर दिया था, खुद छोटी सी जगह में अपने घर के काम किए थे।
5: कितने अच्छे हैं वो।
4: हाँ, मम्मी कहती है मुश्किल पड़ने पर रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो पड़ोसी ही काम आएंगे।
6: बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मम्मी। एक बार जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पापा टूर पर थे, तो पास वाले अंकल आंटी ही मेरी मम्मी के साथ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे।
11: यानी हमारे पड़ोसी एक प्रकार से हमारा परिवार ही तो हुए।
4: बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनसे हमारा दोस्ती का नाता होता है, जो सबसे मजेदार होता है।
5: उस दिन हमारे ब्लॉक के सब परिवार पिकनिक मनाने गए, बहुत मजा आया।
3: सबसे ज्यादा मजा तो तरह तरह के खाने खाने में आता है। सबका एक ही चीज को बनाने का तरीका फर्क होता है।
11: यानी अनेकता में एकता। हाँ हाँ, पर ये तो एक्टिव तरीके हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के। अब ये बताओ, हम और किन तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं?
9: मतलब
11: क्या न करके उनकी मदद कर सकते हैं?
3: मैं बताऊँ, ज्यादा ऊंचा म्यूजिक न बजा कर।
11: हाँ, ये तो ठीक है। हो सकता है कोई पड़ोस में बीमार हो या किसी का इम्तिहान हो और उन्हें हमारे म्यूजिक से परेशानी हो।
7: एक और बात, इससे नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा।
11: और बताओ,
4: अपने घर के बाहर साफ सफाई रखकर।
11: अगर सब ऐसे ही सोचें तो मोहल्ले भी साफ हो जाएंगे और सब पड़ोसी भी खुश रहेंगे।
5: जो भी सार्वजनिक साधन है, जैसे पार्क या बस स्टैंड या पीने के पानी का नल या लाइब्रेरी या और कोई सुविधा, सबको उसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, ये समझ कर कि औरों को भी उसका प्रयोग करना है।
6: दीदी बस, अब पड़ोसियों की बहुत बातें हो गई, आप तो इधर आ जाओ बस, आज तो हम सब अच्छे फंसे हुए हैं।
7: हाँ, घर के पास के पड़ोसियों की बात बाद में करेंगे, पहले देश के पड़ोसियों की बात बताओ, बहुत काम है। और हमारे पास है ये शाम भर का टाइम और ये कंप्यूटर लैपटॉप।
11: फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कोई भी रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरू कहाँ से होता है?
9: पहले कदम से।
8: तो चलो लेते हैं हम सब अपना पहला कदम।
11: हाँ, साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर लेते हैं, फिर रोल फिक्स कर लेंगे बाद में।
5: काम इतना ज्यादा है कि कदम जैसे रुक से रहे हैं।
4: तो आओ मिलके गाना गाते हैं।

0: बिल्कुल सही। पर दीदी पहले आप ही शुरू करो ना, कुछ बताओ तो सही किस दिशा में चलें।
1: देखो, अच्छे संबंधों की बात की जाए तो एक सशक्त विदेशी नीति अब हमारे देश का ध्येय है।
2: मतलब गोल है?
1: हाँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश का ध्यान व्यापार पर अधिक केंद्रित होना चाहिए बजाय राजनीतिक या भूमि संबंधित प्रस्तावों के।
2: तभी तो क्लास में टॉपिक व्यापार से विदेश पॉलिसी तक पहुंच गया।
1: हमारे प्रधानमंत्री की विदेश पॉलिसी के मुख्य बिंदु हैं पड़ोसियों से अच्छे संबंध। जानते हो क्यों?
0: जिससे सब देशों में शांति और अमन हो।
2: और ये शांति और अमन उनकी उन्नति के कार्यक्रम में भी सहायक होगी।
3: दीदी, पापा बता रहे थे सभी महत्वपूर्ण विश्व में नेताओं ने हमारे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। पर वो इसलिए क्योंकि भारत में उन्हें व्यापार की और अच्छे बाजारों की झलक दिखी है।
0: हाँ, वो तो है।
4: अमेरिका के जॉन कैरी ने तो भारत आने से पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के स्लोगन सबका साथ सबका विकास का प्रयोग किया।
5: और दूसरी तरफ अगर भारत और जापान के संबंध की बात की जाए तो ये हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं।
0: जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।
6: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: बाय ईस्ट हो या वेस्ट,
1: इंडिया इज द बेस्ट।
2: चलो चलो, बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है और रोल बांटने हैं।
3: कल की तैयारी, अभी तो बहुत काम है। अब देखते हैं सर हमें क्या क्या कमेंट्स देते हैं।

जो मेरा बहता। लोतन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

0: यही है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए।
1: लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है?
0: तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तो हमारे दिल में रहती है।

0: जय जय
1: जय जय लाला जी।
0: शाबाश प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तैने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
0: मजूरी? अहले मजूरी है कंजा, क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?
2: इक्का,
0: एक रुपया
2: पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है।
0: अबे क्या बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
2: इसीलिए दुखी है जैसे तुम।
0: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
2: इसीलिए सुखी है जैसे हम।
0: अरे चल चल, देखे सुखी की सूरत।
2: लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, यह है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी, बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे
0: हाय हाय। अब जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर से पते की बात करता है।

अमीरों के महल झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये कृष्ण भजन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसको मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया, ये कृष्ण भजन आज भी हर पवित्र जगह पर, हर घरों में ये दोहराया जाता है। इसलिए कि इसमें वो जज्बात, वो कृष्ण भक्ति मौजूद है और ये राग मालकोस पर आधारित है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाकीजगी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं और साहब गाना खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, बेखुद हो गए थे, उनको थामना, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो राग मालकोस की खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग मालकोस की खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें न मेरा कमाल है। मैंने कहा और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग मालकोस का कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना